आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 3 अगस्त सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सवेरे के 5:56 और 52 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है। सुप्रभात आगरा।

0: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। प्रातः के 6 बजे हैं, अब आप आकाशवाणी से समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान का आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देशभर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
2: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है, और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के ओडिशा दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजाम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। राष्ट्रपति आज कटक में जगतगुरु कृपालू विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। वे कल दक्षिणी ओडिशा में तप्त पानी के पास स्थित माँ कंधुनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी और उसके बाद अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होंगी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू होगी। भारत की अध्यक्षता में ये बैठक लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण के व्यापक विषय पर आधारित है। ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की उम्मीद है। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स संयुक्त सांख्यिकी प्रकाशन के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, सांख्यिकी प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान तथा सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षाकर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना का 4था युद्ध पाठ्यक्रम आज नई दिल्ली में प्रारंभ हो रहा है। 4 सप्ताह का यह पाठ्यक्रम एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र

0: इसका समन्वय कर रहा है। पाठ्यक्रम में तीनों सेनाओं के अधिकारियों के साथ साथ सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों, उद्योग और रणनीतिक विचारकों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पालकी का जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। भगवान महाकाल को चंद्रमौलेश्वर रूप में पारंपरिक पालकी जुलूस में ले जाया जाएगा, जिससे भक्तों को दर्शन का मौका मिलेगा। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कल नई दिल्ली में संपन्न हो गई। मेजबान भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 7 में से 6 स्वर्ण पदक जीते। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विजेता खिलाड़ियों को पदक और पुरस्कार प्रदान किए और उनके प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि 25 राष्ट्रमंडल देशों की भागीदारी वाली खेल प्रतियोगिता की सफल मेजबानी दिल्ली सरकार के लिए गौरव की बात है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। सवेरे के 6:05 हुए हैं। आराध्य के श्री चरणों में निवेदित है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

इस नश्वर संसार में सब कुछ क्षणभंगुर है, अक्षुण यदि कुछ है तो केवल वह जो नश्वर नहीं है।

अर्थात ईश्वर। एक ईश्वर ही सत्य सनातन है। रे मन, अपने भीतर के अंधकार को तू केवल सत्य के प्रकाश से ही दूर कर सकता है। सत्य ही तेरे जीवन का परम तप है।

आकाशवाणी आगरा से इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। शिखर हिमालय जिसका डेरा तन पर भस्म रमाता है, जटाजूट से बहती गंगा, गले में लिपटे रहत भुजंगा और नैनों में ज्वाला है, त्रिभुवन का है स्वामी लेकिन फिर भी भोला भाला है।

0: प्रेम हरि को रूप है त्यों हर प्रेम स्वरूप, एक होए हैं यूं लसे ज्यों सूरज और धूप। इसी के साथ आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न हुआ। इसमें आज आपने पंडित कुमार गंधर्व, अनुराधा पौडवाल, पंडित भीमसेन जोशी और साथियों के स्वर में भक्ति रचनाएं सुनी। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। 6:25 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। चिंतन कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं संत कबीर के विचार।
1: जीवन में हम देखते हैं कि किसी साधारण सी बात को प्रमाण देकर सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वह अधिकांश व्यक्तियों की परिचित होती है। पर यदि कोई असाधारण बात सुनाता या ऐसी घटना का वर्णन करता है जो सामान्यतः लोगों के अनुभव से परे होती है, तो लोग उस पर बिना प्रत्यक्ष प्रमाण के विश्वास करने को तैयार नहीं होते। और वह प्रमाण जब कोई प्रत्यक्ष दर्शी ही प्रस्तुत करे तभी मान्य होता है। लोग इसलिए तो पूछ भी लेते हैं कि क्या आपने स्वयं अपनी आंखों से ये घटना देखी है, और जब व्यक्ति उसका उत्तर हाँ में देता है तो उसकी बात विश्वसनीय मानी जाती है। जब सुधारक धर्म और जातीय मतभेदों को बिना किसी भेदभाव के भगवत साधना से अंगभूत होकर प्रतिपादित करता है तो वह अटूट साधना के रूप में प्रकट होते हैं, और उनमें उपदेशनात्मक भाव और मिथ्याभिमान भी प्रकट नहीं होता। सद्गुरु लुहार की भांति है जो शिष्य के मन रूपी लोहे को साधना रूपी अग्नि में तपाकर इच्छा अनुसार मोड़ लेता है। अथवा सद्गुरु वह सुनार है जो शिष्य को साधना की कसौटी पर कसकर शुद्ध कंचन बना देता है। सद्गुरु कलवार है जिसकी प्रेम रूपी मदरा की भट्टी के पास आकर शिष्य प्रेम रस से छकता है। सद्गुरु सिकलीगर के समान है जो शब्द की मस्कले से शिष्य को दर्पण के समान निर्मल बना देता है। सच्चा उपदेशक बाह्य आचारों एवं आडंबरों की व्यर्थता का प्रतिपादन कर राम रहीम की एकता पर बल देता है। उसकी दृष्टि में ईश्वर प्राप्ति में जाति व धर्म बाधक नहीं, कोई भी व्यक्ति उस प्रभु को प्राप्त कर सकता है, पर उसके लिए आवश्यकता है सत्य प्रेम की। समाज सुधारक यदि स्वच्छ हृदय वाला हो तो वह अखंड और सत्य वक्ता के रूप में सामने आता है, और वह असत्य एवं पाखंड से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करता। वाणी में तीखापन भले ही हो, वह कटु भी हो सकती है, पर जब उसके द्वारा दिए गए तर्क अत्यंत सटीक हों तो विरोधी भी निरुत्तर हो जाते हैं। तर्क शक्ति और बुद्धि की प्रखरता साधक रूप में हृदय का मार्मिक साक्षात्कार कराती है। मानव जीवन की सार्थकता ईश्वर दर्शन में है। भले ही ईश्वर को विभिन्न धर्मों के अनुयायी अलग अलग नामों से पुकारें, पर इससे ईश्वर भिन्न तो नहीं होता। आस्थावान

0: व्यक्ति उसकी महिमा में श्रद्धा रखकर उससे बहुत कुछ प्राप्त करने की सामर्थ्य रखता है। अज्ञान के कारण जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर इस शरीर को ही सब कुछ समझने लगता है और संसार में आसक्त होकर भांति भांति की भोग सामग्री को एकत्रित करने की कामना करने लगता है। ये बात झोपड़ी खड़ी करने के रूपक द्वारा स्पष्ट हो जाती है। झोपड़ी में दो ही वस्तु प्रधान होती हैं, छप्पर और उस छप्पर की आधार रूपी बल्ली। शेष वस्तु खम्भे आदि इन्हीं दो को सहारा देने वाली होती हैं। इसलिए मोह को बल्ली और तृष्णा को छप्पर कहा है।
1: चिंतन कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे संत कबीर के विचार। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया गया। दिन भर की भागदौड़ में कहीं भी रहिए, आकाशवाणी आगरा के संग रहिए और सुनते रहिए मनपसंद मनोरंजक खूबसूरत कार्यक्रम। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आज रात 8 बजे आप सुनेंगे संसद में आज होने वाली कार्यवाही की समीक्षा। रात 9:30 बजे कार्यक्रम होगा पब्लिक स्पीक और रात 10 बजे हम प्रसारित करेंगे संसद में आज होने वाले प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। रात 8:20 पर आप सुनेंगे विधानमंडल समीक्षा और सुबह 9:15 पर होगा कार्यक्रम जिले की हलचल। ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले किए जाएंगे। अब से थोड़ी देर बाद 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान। खेती की बातें कार्यक्रम में 6:45 पर आज हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर आर के कौशिक की वार्ता पशुपालन में ध्यान देने योग्य बातें। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में 7:10 पर लघु वार्ता प्रसारित की जाएगी जोड़ों का दर्द कारण लक्षण और बचाव। वार्ताकार होंगे डॉक्टर एस सी साहू। आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास आप सुनते हैं 7:31 पर। 11 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के कलाकार। ये कार्यक्रम आज प्रसिद्ध फिल्म संगीतकार जयदेव पर केंद्रित होगा। समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत हम प्रसारित करेंगे 11:30 पर। इस कार्यक्रम में आज का विषय है मां का दूध शिशु के लिए अमृत समान। महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा घर संसार दिन में 1:15 पर। इसमें आज हमारी बहनें सुनेंगी चर्चा, विषय रहेगा सावन को आने दो। इसी कार्यक्रम में हमारी बहनें भेंट वार्ता सुनेंगी, विषय रहेगा स्तनपान के प्रति जागरूकता। वार्ताकार होंगी डॉक्टर अन्विता जैन और आपसे भेंट करेंगी दीपाली दुबे। क्रम रहेगा फैशन ब्यूटी रेसिपी टाइम और कुछ तुम कहो कुछ हम। ग्राम्यालोक कार्यक्रम में शाम 6 बजे हमारे किसान भाई चर्चा सुनेंगे खेत का पानी खेत में गांव का पानी गांव में। इसी कार्यक्रम में डॉक्टर चंद्रभान सिंह की वार्ता प्रसारित की जाएगी धान की फसल कीट रोग एवं खरपतवार। इसके अलावा आप सुन सकेंगे मंडी भाव मौसम की जानकारी और लोकगीत भी सुनवाए जाएंगे। मजदूर मंडल कार्यक्रम में शाम 6:30 आप सुनेंगे चर्चा स्तनपान कितना आवश्यक। क्रम रहेगा सेहतनामा कुछ घरेलू नुस्खे बताए जाएंगे। आज का प्रश्न होगा और कार्यक्रम होगा आज की पाती। विविधा कार्यक्रम में शाम 7:10 पर सुश्री अंकिता तिवारी की वार्ता प्रसारित की जाएगी हिंदी कविता का शाश्वत सूर्योदय मैथिली शरणगुप्त। कार्यक्रम मेरी माटी मेरा

देश आप सुनेंगे शाम 7:31 पर। युवाणी कार्यक्रम में शाम 5:30 हमारे युवा श्रोता सुनेंगे चर्चा, विषय रहेगा ईशम पोर्टल, क्रम रहेगा आज का सवाल इतिहास के पन्नों से। इसी कार्यक्रम में सजल रायजादा की वार्ता प्रसारित की जाएगी, दृष्टि बाधितों के लिए शिक्षा की राह आसान करती ब्रेल लिपि। सदाबहार फिल्मी गाने हम आपको सुनवाएंगे गीतांजलि कार्यक्रम में 8:45 पर और सुर सरिता कार्यक्रम में 10:00। पुराने फिल्मी गीतों का आनंद आप ले सकेंगे गीत मंजूषा कार्यक्रम में 9:25 पर। लोक संगीत के कार्यक्रम में 10:15 हम आपको सुनवाएंगे राम गोपाल शर्मा मधुर और साथियों के गाए ब्रज लोकगीत। कार्यक्रम संबंधी सूचनाएं समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का आज का ये प्रसंग।

राजा जनक के यज्ञ में धनुष भंग हो चुका है। परशुराम वहां का दृश्य देख क्रोधित हैं। उनके वचनानुसार जिसने शिव का यह धनुष तोड़ा है वो सहस्रबाहु के समान उनका दुश्मन है। परशुराम निरे मुनि और बाल ब्रह्मचारी ही नहीं अत्यंत क्रोधी हैं और विश्व भर में क्षत्रिय कुलनाशक के रूप में विख्यात हैं। अपने भुजबल से उन्होंने कई बार क्षत्रिय वंश का नाश करके पृथ्वी ब्राह्मणों को दे डाली है। क्रोध की चरम सीमा स्वरूप उन्होंने लक्ष्मण को अपना विश्व विख्यात फरसा दिखाया, किंतु लक्ष्मण कौतुकवश खेल ही खेल में मुनि के कुपित वचन सुनते जा रहे हैं। मुनि को भृगुवंशी समझ और यज्ञोपवीत देखकर सब कुछ सहते जा रहे हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। गायक कलाकार थे रविंद्र साठे और श्रीकांत पारगांवकर। संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया गया। आकाशवाणी आगरा से प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर आर के कौशिक की वार्ता, पशुपालन में ध्यान देने योग्य बातें।
1: किसान भाइयों, खेतीबाड़ी के साथ किया जाने वाला पशुपालन का कार्य गांवों में व्यवसाय का रूप धारण कर चुका है। यह कहना गलत नहीं होगा कि आज गांवों में ग्रामीणों की अतिरिक्त आय के रूप में डेयरी व्यवसाय अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इसके चलते ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति ही सुदृढ़ नहीं हो रही है, वरन प्रदेश बदेश की आर्थिक संपदा के साथ भारत की श्वेत क्रांति का सपना साकार हो चला है। परंतु आज भी गाँव में पशुपालक उचित ढंग से पशुओं के स्वास्थ्य, खिलाई पिलाई व प्रबंध न होने के कारण इससे भरपूर लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। अतः पशुपालकों को आर्थिक सामाजिक उत्थान एवं अधिक दुग्ध उत्पादन के लिए कुछ बातों की ओर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे गाय व भैंस को गर्भावस्था में पौष्टिक एवं संतुलित आहार अवश्य देना चाहिए। गाय व भैंस को जीवन निर्वाह आहार के अलावा गर्भित अवस्था में 1 से 1.5 किलोग्राम अतिरिक्त संतुलित आहार देना आवश्यक है। दूध देने की अवस्था में गाय को 3 किलोग्राम दूध पर 1 किलोग्राम व भैंस को 2.5 किलोग्राम दूध पर 1 किलोग्राम संतुलित आहार देना चाहिए। संतुलित आहार का अर्थ है कि ऐसा आहार जिसमें दलहनी व गैर दलहनी रातव के उचित समावेश के अलावा हरा चारा, खनिज लवण, नमक व खल आदि का सही अनुपात में तालमेल होना चाहिए। 100 किलोग्राम संतुलित रातव बनाने के लिए 31 किलोग्राम अनाज गेहूं, जौ, मक्का, जई, ज्वार, बाजरा आदि कोई भी हो सकता है। 32 किलोग्राम खल सरसों, मूंगफली, कपास, तिल आदि कोई भी जो सस्ती हो। 33 किलोग्राम भूसी गेहूं की भूसी, चने व दाल का छिलका, धान की भूसी जो सस्ती हो। 2 किलोग्राम खनिज लवण विटामिन से युक्त हों तथा 1 किलोग्राम नमक को मिलाकर बना सकते हैं। पशु को बयाते समय स्वच्छ व सूखी जगह पर ही रखें। लवारों को पैदा होते समय उनके नथनों और मुंह को अच्छी तरह साफ करें ताकि उन्हें सांस लेने में आसानी हो। अगर किसी कारणवश वह सांस नहीं ले पा रहे हैं तो उनकी छाती को दोनों तरफ से बार बार दबाएं। इस प्रकार से उनकी श्वास क्रिया शुरू हो जाएगी। गाय व भैंस के बयाने के बाद लवारे को उसकी माँ का दूध खीस लवारे की इच्छा अनुसार पेट भर पीने को दें। बच्चे के लिए यह अमृत के समान है। यह लवारे के पेट की सफाई के साथ ही साथ उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है। लवारों के पैदा होने के बाद उनकी नाभि एक स्वच्छ धागे से ऊपर से 2 इंच नीचे बांधकर 1 इंच छोड़ते हुए नए जीवाणु रहित कैंची या ब्लेड से काट दें तथा उस पर टिंचर आयोडीन या सेवलॉन या डिटॉल नियमित रूप से 3-4 दिन तक लगाते रहें। इससे नाभि पकने का डर नहीं रहता है। बयाने के बाद लवारे को नाल

0: से तेल ना पिलाएं और ना ही अन्य पशु का दूध या तरल पदार्थ पिलाएं, यह हानिकारक रहता है। नाल द्वारा पिलाने पर तेल या दूध उसके फेफड़ों में जाने का खतरा रहता है, जिससे प्रायः बच्चे की मृत्यु हो जाती है। दुधारू पशु का बच्चा मर जाने या अन्य कारणवश दूध न देने की अवस्था में पशुपालक प्राय इंजेक्शन का सहारा लेते हैं, जो कि बहुत हानिकारक होता है। जैसे जब इंजेक्शन का प्रयोग होता है तो गाय भैंस गर्भित नहीं होती है, यदि गर्भित हो भी जाए तो पलटने अर्थात गर्भ न ठहरने का भय बना रहता है, इससे मादा बांझ भी हो सकती है। इंजेक्शन बंद होने के बाद पशु यदि गर्भित हो भी जाए तो उसके फूल योनि से कुछ हिस्सा बाहर निकलने की शिकायत हो जाती है, यह खतरा भैंस को बयाते समय तक बना रहता है। बयाने के बाद बेली निकलने की संभावना अधिक हो जाती है, यदि पशु का समय से उपचार नहीं किया तो बांझपन की समस्या आ सकती है। यह भी देखने में आया है कि इंजेक्शन लगने के बाद दूध में ट्यूब आता है, जिससे दूध का रंग हल्का गुलाबी हो जाता है, या उसमें ट्यूब की फुदकियाँ टुकड़े भी देखने को मिलती हैं। यही प्रक्रिया योनि में भी होती है। कभी कभी पशु के गर्म होने के समय स्राव में खून की फुदकियाँ टुकड़े देखी जा सकती हैं, जो गर्भ ठहरने में बाधक होती हैं। इंजेक्शन द्वारा निकाला हुआ दूध यदि गर्भित महिलाएं या बच्चे पीते हैं तो उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लड़कियां कम उम्र में वयस्क हो जाती हैं और लड़कों पर उल्टा प्रभाव देखने में आया है, जिससे सामाजिक बुराइयां अधिक पैदा हो सकती हैं। इसका प्रभाव समाज में देखने को मिल रहा है। अतः इंजेक्शन का प्रयोग किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए। प्राय गलत धारणा है कि खीस पिलाने से लबारों के पेट में पटेरे हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पटेरे तो हर पशु व लवारे के पेट में हो सकते हैं, चाहे वह किसी भी आय, लिंग या नस्ल का हो। पटेरों की कम संख्या भी प्रतिकूल असर डालती है। यह स्वास्थ्य खराब करने, अनेक बीमारियों को जन्म देने के अलावा दुग्ध उत्पादन पर भी बुरा असर डालते हैं। यह पशुओं के सबसे बड़े शत्रु हैं। पशु जो कुछ भी पौष्टिक आहार खाता है उसे चट कर जाते हैं। इनसे प्रजनन शक्ति भी छीण होती है। क्रम से पीड़ित पशु के मुख्य लक्षण पशु में भूख की कमी, शरीर की चमड़ी में खुरदरापन, चमक की कमी, प्रजनन शक्ति का ह्रास, पेट को पीटने पर थप थप की आवाज़ करना, पहले बदबू और दस्त होना तथा आँखों से कीचड़ आना आदि प्रमुख हैं। पटेरों के बचाव हित लवारों व बड़े पशुओं को समय समय पर शरीर भार के अनुसार क्रमनाशी दवाओं को देते रहना चाहिए, जो बाजारों में विभिन्न नामों से मिलती हैं। असंतुलित आहार के कारण, शरीर में खनिज तत्वों की कमी के कारण गाय भैंस समय पर रितमयी नहीं होती। कैल्शियम की कमी से दूध में गिरावट, कमजोरी व अनेक बीमारियों जैसे दुग्ध ज्वर भी आ जाती है। इस कारण पशु दीवाल व मिट्टी चाटने लगते हैं तथा कभी कभी मूत्र भी पीने लगते हैं। अतः खनिज तत्वों की पूर्ति हेतु बाजार में उपलब्ध खनिज लवण मिश्रण को 20-60 ग्राम तक मात्रा प्रतिदिन पशु के आकार के हिसाब से देनी चाहिए। यह बाजार में 25 से लेकर 75 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से विभिन्न नामों से उपलब्ध हैं। खनिज लवण मिश्रण के प्रतिदिन सेवन से खनिज तत्वों की पूर्ति के साथ पशु चारा अच्छी तरह खाता है, शरीर पर चमक आती है, पशु समय से रितमयी होता है तथा दूध की वृद्धि होती है। प्रतिदिन 3 बार दिन में स्वच्छ व ताजा पानी पशुओं को पिलाना चाहिए। गड्ढे या तालाब का पानी कभी न पिलाएं। संक्रामक रोगों से बचाव के टीके समय पर अवश्य लगवाएं। खुरपका, मुंहपका, लंगड़िया, घुर्रका, जहरवाद आदि के टीके फरवरी से जून तक अवश्य लगवाएं। एक टीका पशु को 6 माह तक लगवाने से बीमारी से सुरक्षा होती है।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर आर के कौशिक की वार्ता। विषय था पशुपालन में ध्यान देने योग्य बातें। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया गया। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, आपको एक बार फिर याद दिला दें, स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में 7:10 पर हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर एस सी साहू की लघु वार्ता। विषय रहेगा जोड़ों का दर्द, कारण लक्षण

0: और बचाओ। सुगम संगीत के कार्यक्रम में दोपहर 1:45 पर आज हम आपको सुनवाएंगे सरदार जसवंत सिंह की गाई गजलें। कार्यक्रम होगा कुछ बातें कुछ गीत 11:30 पर। इसमें आज का विषय है माँ का दूध शिशु के लिए अमृत समान। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। सवेरे के 6:55 होने को हैं। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् यथा भारतं विकसित भारत दिशि अग्रेसरति तथा देशस्य युवानः शारीरिक रूपेण सुदृढ़ाः मानसिक रूपेण सबलाः आत्मविश्वासेन च परिपूर्णाः भवितुमर्हन्ति। ह्यः नवदिल्ल्यां विकसित भारत संकल्पाभियानस्यान्तर्गतं नशा मुक्त युवाभियानस्य दृश्य श्रव्य अन्तर्जालीय माध्यमेन शुभारम्भावसरे भाषमाणः प्रधानमन्त्री अवदत् यत् युवानः सर्वदा मादकद्रव्येभ्यः दूरं तिष्ठेयुः अथ स्वस्थजीवनचर्यां च अङ्गीकुर्युः। असौ एतदपि अवदत् यत् अस्य अभियानस्य शुभारम्भेण मादकद्रव्यदुरुपयोगस्य विरुद्धं शतसप्ताहकात्मकस्य राष्ट्रव्यापिनः जनभागीदारी इत्यस्य अभियानस्य आरम्भः जातः।
2: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है। क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो। यही इस अभियान का उद्देश्य है।
1: अस्मिन् कार्यक्रमे देशस्य 28,000 स्थानेभ्यः 1 कोट्यधिकाः युवानः भागं गृहीतवन्तः। अत्र माय भारत इत्येतस्य राष्ट्रिय सेवा योजनायाः च स्वयंसेवकाः, महाविद्यालय विद्यालय विश्वविद्यालयानां प्रतिनिधयः, युवकमण्डलानाम् अशासकीय सङ्घटनानां च तथा आध्यात्मिक संस्थानां सदस्याश्च भागं गृहीतवन्तः। केन्द्रीय युव कार्य क्रीडा मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया अवदत् यत् मादक द्रव्य मुक्त भारतस्य स्वप्नं केवलं जनसहभागितया यूनां नेतृत्वेन च पूर्णा भवितुमर्हति। विकसित भारत संकल्पाभियानस्यान्तर्गतं नशा मुक्त युवाभियानस्य राष्ट्रीय शुभारम्भानन्तरं असौ फरीदाबाद स्थिते अमृत चिकित्सालये आयोजिते एकस्मिन् कार्यक्रमे एतदवदत्। डॉक्टर मांडविया एतत् शतसप्ताहकात्मकम् अभियानं यूनः राष्ट्र निर्माणे प्रवर्तयितुं राष्ट्रव्यापी जनान्दोलनम् इति वर्णितवान्। बिहार गुजरात मध्य प्रदेशानां च त्रयाणां विधानसभा क्षेत्राणां उपनिर्वाचनानां कृते अद्य मतगणनायै सर्वाः व्यवस्थाः कृताः सन्ति। बिहारस्य बांकीपुरे, गुजरातस्य मंजलपुरे, मध्यप्रदेशस्य दतिया आसने च मतदानं गतमासस्य 30 दिनांके जातम्। अद्य प्रातः 8 वादने मतानां गणना आरभ्यते। प्रथमं पोस्टलिति मतपत्राणां गणना भविष्यति। तदनन्तरं प्रातः 8:30 वादने मतदानयंत्रेषु अभिलेखितानां मतानां गणना भविष्यति। निर्वाचनायोगेन त्रिषु राज्येषु सुगम गणनां सुनिश्चेतुं दृढ सुरक्षा व्यवस्था कृतास्ति। मध्यप्रदेशे दतिया विधानसभा क्षेत्रस्य गणना प्रशासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालये भविष्यति, यत्र 20 गणना पट्टिकाः स्थापिताः सन्ति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मू अद्य ओडिशा राज्यस्य 3 दिवसीयायां यात्रायां भविष्यति।

0: अत्रावधौ राष्ट्रपतिः गंजम जनपदस्य कटक भुवनेश्वर ब्रह्मपुर तप्तापानी स्थलेषु शैक्षणिक सांस्कृतिक आधिकारिक कार्यक्रमेषु भागं ग्रहीष्यति। अद्य राष्ट्रपतिः कटकनगरे जगद्गुरु कृपालु विश्वविद्यालयस्य उद्घाटनं करिष्यति। एकादश दिनात्मकानां स्पर्धानां समापनानन्तरं ह्यः ग्लास्गो नगरे भव्य समारोहेण राष्ट्रमंडल क्रीडा सम्पन्ना। भारतमेकोनचत्वारिंशत् पदकैः सह पदकतालिकायां चतुर्थ स्थानम् अधिगतवत्। एतेषु त्रयोदश स्वर्णपदकानि, सप्तदश रजतपदकानि, नव कांस्यपदकानि च सम्मिलितानि सन्ति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान का आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देशभर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
2: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। राष्ट्रपति आज कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी करेंगी। वे कल दक्षिणी ओडिशा में तप्तपानी के पास स्थित मां कंधुनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी और उसके बाद अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होंगी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू होगी। भारत की अध्यक्षता में यह बैठक लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण के व्यापक विषय पर आधारित है। ब्रिक्स के सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की उम्मीद है। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स संयुक्त सांख्यिकी प्रकाशन के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, सांख्यिकी प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान तथा सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। मतगणना सवेरे 8 बजे शुरू होगी। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षाकर्मियों समेत 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना का 4th युद्ध पाठ्यक्रम आज नई दिल्ली में प्रारंभ हो रहा है। 4 सप्ताह का ये पाठ्यक्रम एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र इसका समन्वय कर रहा है। पाठ्यक्रम में तीनों सेनाओं के अधिकारियों के साथ साथ सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों, उद्योग और रणनीतिक विचारकों के प्रतिनिधि भी शामिल रहेंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पालकी का जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। भगवान महाकाल को चंद्रमौलेश्वर रूप में पारंपरिक पालकी जुलूस में ले जाया जाएगा, जिससे भक्तों को दर्शन का अवसर मिलेगा।

0: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर 7:10 हुए हैं। कार्यक्रम प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर SC साहू की वार्ता। विषय है जोड़ों का दर्द, कारण, लक्षण और बचाव।
1: आज हमारी बातचीत का विषय है जोड़ों का दर्द, कारण, लक्षण और बचाव। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर SC साहू, जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं और पूर्व प्राचार्य हैं SN मेडिकल कॉलेज आगरा के। तो डॉक्टर साहू, आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि जोड़ों का दर्द आखिर क्या कारण होता है?
2: जोड़ों के दर्द में सबसे मुख्य चीज जो होती है उसमें सूजन आ जाती है उसके टिश्यू में। हम शुरू में आपको ये बता दें कि जोड़ जो है वो कई तरह के टिश्यू से बना होता है
1: जी।
2: हड्डी होती है, हड्डी के ऊपर झिल्ली होती है, झिल्ली के ऊपर उसकी कवरिंग होती है, तब स्किन आती है
1: जी।
2: किसी की जगह के किसी भी टिश्यू में अगर सूजन आती है, चाहे वो खाल पे हो चाहे वो हड्डी में हो, वो सब जोड़ों के मूवमेंट पे दर्द करते हैं
1: जी।
2: अगर हमारे जोड़ों की दशा स्किन से लेकर हड्डी तक सब कुछ नॉर्मल है तो हमारे को कोई दर्द नहीं होगा
1: जी।
2: अगर हम जोड़ों के दर्द के मतलब केवल जो जोड़ों में ही होता है उसको लेके चलते हैं तो हड्डियों का घिसना, हड्डियों का वरम आना, हड्डियों का बढ़ना और उसकी जो कवरिंग होती जिसको हम लोग साइनोइड मेम्ब्रेन बोलते हैं, अंदर की झिल्ली
1: जी,
2: उसमें सूजन आना, उसके अंदर पानी का ज्यादा इकट्ठा होना और उसकी चाल का कम होना। अगर किसी भी जगह की चाल कम हो जाती है तो काम करते हुए अगर उस रेंज के बाहर हम मूवमेंट करते हैं तो दर्द होने लगता है।
1: अच्छा अच्छा।
2: मुख्य कारण इसमें बीमारी के अगर देखा जाए तो बीमारी जो है वो आर्थराइटिस करके आती है। आर्थराइटिस का मतलब होता है जोड़, आइटिस का मतलब होता है सूजन, जो बिना किसी इन्फेक्शन के, बिना किसी सेप्टिक के जो सूजन आ जाती है, वो किसी भी वजह से हो, वो सब आर्थराइटिस कहलाती है। और उस सब में दर्द मुख्यतः इसी बात पर होता है जब उस पर चाल की जाती है या उसको हिलाया जाता है या उस पर वजन दिया जाता है।
1: डॉक्टर साहब, ये समस्या जो आपने बताई आर्थराइट्स वाली या जोड़ों के दर्द की जो समस्या है, अक्सर इस मौसम में, सर्दियों के मौसम में ये प्रॉब्लम लोगों को ज्यादा होती है, इसका क्या कारण हो सकता है?
2: हाँ, ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि ये सारे ही जोड़ों के दर्द सर्दियां आते ही शुरू हो जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप अपने हाथ में बर्फ लें और बर्फ हटाएंगे तो आपको हाथ अपने सफेद नजर आएंगे
1: जी।
2: अगर आप उसी को आग के सामने ताप रहे होंगे तो आपका हाथ लाल नजर आता है। इसके मतलब गर्मियों में खून की चाल उस जगह बढ़ जाती है और सर्दियों में खून की चाल रिलेटिवली कम हो जाती है, जिसकी वजह से टिश्यू को पूरा ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता है और वो अंडर सप्लाई की वजह से उसमें कार्य करने की क्षमता घट जाती है
1: जी।
2: इसी वजह से कहा जाता है जाड़ों में ढक के रखें, हवा से बचें और सिकाई करते हैं। किसी भी जोड़ों के दर्द में अगर उसमें इन्फेक्शन नहीं है, सबसे पहले सिकाई ही बताई जाती है और सिकाई करने से जाड़े का इफेक्ट खत्म हो जाता है और उसका दर्द कम हो जाता है।
1: यानी कहने का मतलब यह है कि सर्दियों में अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो सर्दी से बचाव बहुत जरूरी है।
2: सर्दी से बचाव के बिना आप जाड़ों में ठीक रह ही नहीं सकते
1: जी।
2: और अगर किसी वजह से बचाव पूरा नहीं हो पाता है तो आपको हर हालत में सिकाई करनी पड़ेगी और ये उसका ही एक बचाव का भी तरीका है।
1: तो सबसे बेहतर यह है कि अगर हमारे श्रोता जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, अगर उनको या उनके किसी परिचित को, मित्र को ये तकलीफ है तो सर्दी से बचाव बहुत ही जरूरी है। तो डॉक्टर साहब, आपने हमारे श्रोताओं को जोड़ों के दर्द के बारे में, आर्थराइट्स के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे लघु भेंट वार्ता, जोड़ों का दर्द, कारण, लक्षण और बचाव। वार्ताकार थे डॉक्टर SC साहू, आपसे भेंट कर रहे थे नीरज जैन। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं सोमवे स्वर में ये देशभक्ति परक गीत।

0: आकाशवाणी आगरा से इस समय आप सुन रहे हैं समवेश्वर में देशभक्ति पर अंकित। 7:18 हुए हैं। थोड़ी देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे, प्रतीक्षा कीजिए।
1: महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
2: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
1: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
2: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
1: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
2: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। निल्सन मंडेला।
1: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
4: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।
3: शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
5: आकाशवाणी गोरखपुर।

0: से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का किया शुभारंभ, कहा नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। आज से शुरू हो रहा है राज्य विधानमंडल का मानसून सत्र, कल अनुपूरक बजट पेश करेगी प्रदेश सरकार। भारत की अध्यक्षता में आज से लखनऊ में शुरू हो रही है ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों NSO प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक। और सावन के पहले सोमवार पर शिव मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार ने किए हैं व्यापक प्रबंध। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
1: ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक मां की मुस्कान छीन लेता है और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है, राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि सामाजिक बदनामी के डर से मादक पदार्थों के सेवन के मामले छिपाना नहीं है।
1: हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाए नहीं, जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें।
0: प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय से कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुईं। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि प्रत्येक युवा समाज में सकारात्मक परिवर्तन का वाहक बन सकता है और जन जागरूकता के माध्यम से नशा मुक्त भारत के संकल्प को जन आंदोलन का स्वरूप दिया जा सकता है। लखनऊ के गुलजार उपवन में राजयोग प्रशिक्षण केंद्र ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी हिस्सा लिया। श्री सिंह ने कहा कि यह अभियान जन भागीदारी के माध्यम से युवा शक्ति को सकारात्मक दिशा देने का प्रयास है।
2: लेकिन उपचारित व्यवहार केवल कानून से नहीं होता, संस्कारों से होता है और जब संस्कारों की बात आती है तो ब्रह्म कुमारी जी का योगदान संस्कार का अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ब्रह्म कुमारी ने दशकों से बिना किसी भेदभाव के समाज में

0: जागृति नैतिक मूल्य और आध्यात्मिक चेतना का दीप जलाया।
1: देश भर के लगभग 10,000 से अधिक स्थानों पर कल एक साथ कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें माय भारत स्वयंसेवक, एनएसएस के वॉलंटियर्स, युवा क्लब, शिक्षण संस्थाएं, गैर सरकारी संगठन और 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठन शामिल हुए। राज्य विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र के दौरान कल प्रदेश सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में कल विधान भवन में आयोजित सर्वदलीय बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता पक्ष व विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों से जनहित से जुड़े हर मुद्दे को सदन में रखने तथा स्वस्थ चर्चा कर विकास को और गति प्रदान करने में सरकार का सहयोग करने की अपील की। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने अपने संबोधन में सदन के सुचारू संचालन के लिए सभी सदस्यों का सहयोग मांगा। वहीं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि राज्य सरकार सबके सहयोग से सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों NSO प्रमुखों की बैठक आज लखनऊ में शुरू हो रही है। यह बैठक कल भी जारी रहेगी। इसमें ब्राजील, रूस, चीन, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
2: NSO के प्रमुखों की बैठक भारत की अध्यक्षता में आयोजित होगी। इस बैठक में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिणी अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। इस वर्ष भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। वहीं सांख्यिकी ट्रैक का विषय परिवर्तन के प्रेरक के रूप में गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी रखा गया है। इसका उद्देश्य बेहतर गुणवत्ता वाले आंकड़ों, नवाचार, प्रभावी डेटा प्रसार और जन केंद्रित सांख्यिकीय व्यवस्था को बढ़ावा देना है, ताकि साक्ष्य आधारित, समावेशी और टिकाऊ विकास को मजबूती मिल सके। बैठक में सांख्यिकी उत्पादों को मजबूत करने, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालियों में सुधार, डेटा की पहुंच बढ़ाने और आर्थिक व क्षेत्रीय सांख्यिकी को सुदृढ़ बनाने पर चर्चा होगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर साझा किए गए उस भ्रामक वीडियो का खंडन किया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि जंतर मंतर पर पुनः धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि वायरल वीडियो पुराना है, जिसे भ्रामक संदर्भ के साथ साझा कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। आज पवित्र सावन का पहला सोमवार है। इस अवसर पर प्रदेश भर के शिवालयों में तड़के से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। एक रिपोर्ट।
3: सावन के पहले सोमवार पर पवित्र नदियों से जल भरकर प्रमुख शिवालयों में जलाभिषेक करने पहुंचे कांवड़ियों के लिए प्रशासन की तरफ से विशेष इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने कई जगहों पर रूट डायवर्जन किया है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ और भगवान राम की नगरी अयोध्या में श्रद्धालु श्रद्धा और भक्ति के माहौल में जलाभिषेक कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ धाम में सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए हैं। उससे जुड़े मार्गों पर 289 CCTV कैमरों के साथ 44 अतिरिक्त कैमरे लगाए गए हैं। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
1: हापुड़, चित्रकूट, अमरोहा, भदोही, बिजनौर और सहारनपुर में भी कांवड़ यात्रा को देखते हुए पुलिस प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। संभल और अमरोहा में सभी विद्यालयों को बंद कर दिया गया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का किया शुभारंभ। कहा, नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। आज से शुरू हो रहा है राज्य विधानमंडल का मानसून सत्र। कल अनुपूरक बजट पेश करेगी प्रदेश सरकार। भारत की अध्यक्षता में आज से लखनऊ में शुरू हो रहे

है ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों एनएसओ प्रमुखों की दो दिवसीय बैठक और सावन के पहले सोमवार पर शिव मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार ने किए हैं व्यापक प्रबंध। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। समय मिला लीजिए, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:32 हुए हैं। इस समय आप सुनते हैं आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास। आसपास सुनने वाले सभी श्रोताओं को विशेष कुमार शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हम सभी जानते हैं कि माँ और बच्चे का एक बहुत ही गहरा संबंध होता है। अगर बच्चे के जीवन में हम ये देखें कि माँ का क्या महत्व है, तो हमें ये सोचने पर विवश होना पड़ता है कि बिना माँ के बच्चे का जीवन बिल्कुल अधूरा है। लेकिन जब बात नवजात शिशु की आती है तो वहां मां का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है, और उससे कहीं ज्यादा महत्व है नवजात शिशु को स्तनपान कराना। जी हां, स्तनपान शिशु के स्वास्थ्य और जीवन रक्षा सुनिश्चित करने के लिए सबसे ज्यादा एक उत्तम तरीका है। स्तनपान शिशुओं के लिए एक आदर्श भोजन की तरह है। ये बहुत ही सुरक्षित है, स्वच्छ है, और कहते हैं कि जो माँ का दूध होता है वो एंटीबॉडी से भरपूर होता है। माँ का दूध बच्चे को बचपन में होने वाली बहुत सारी छोटी छोटी बीमारियों से रक्षा करने में सहायक होता है। स्तनपान बच्चे को जीवन के पहले कुछ महीने के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। चिकित्सकों का तो ये भी कहना है कि जन्म लेने के बाद 6 महीने तक बच्चे को केवल और केवल माँ का दूध दिया जाना चाहिए, क्योंकि माँ के दूध में सभी प्रकार के पोषक तत्व तो होते हैं। इसमें विटामिन होते हैं, कैलोरी होती है और कई तरह के इसमें प्रतिरोधक जो बीमारियों से रक्षा करते हैं वो ऐसे तत्व तो होते हैं। पहले वर्ष के दूसरे भाग में बच्चे की जो पोषण संबंधी आवश्यकताएं हैं उनका लगभग आधा या उससे अधिक हिस्सा और दूसरे वर्ष में 1/3 हिस्सा मां का दूध ही पूरा कर देता है। देखने में यह भी आया है कि जो बच्चे स्तनपान करते हैं या मां जिन बच्चों को भरपूर दूध पिलाती हैं, ऐसे बच्चों का अगर बुद्धि परीक्षण किया जाए

इनका प्रदर्शन जो है वो बेहतर होता है उन बच्चों के मुकाबले जिन बच्चों ने माँ का दूध कम पिया है। जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं वो मोटापे की संभावना से भी बचे रहते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं तो आजकल बहुत ज़्यादा लोगों में जो मधुमेह यानी डायबिटीज़ देखने को मिलता है, लेकिन जब माँ का दूध पीते हैं, स्तनपान करते हैं, तो आने वाले समय में या जब बड़े होते हैं तब डायबिटीज जैसे रोग का भी खतरा बहुत कम होता है। इसके अलावा ये केवल बच्चों के ही स्वास्थ्य के लिए उत्तम नहीं है, बल्कि स्तनपान महिलाओं के लिए भी यानी माँ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित है, और इतना सुरक्षित है कि जो गर्भाशय के कैंसर हैं, स्तन कैंसर हैं, अंडाशय के कैंसर हैं, ये इस तरह के जो कैंसर होते हैं इनमें बहुत कमी आती है यदि माँ अपने बच्चे को लगातार निरंतर और समुचित तरीके से अगर स्तनपान कराते हैं। तो बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि समय पर स्तनपान कराना ही चाहिए, और ये केवल बच्चे के लिए तो ज़रूरी है ही, ये प्रत्येक माँ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब माँ स्तनपान कराती है तो एक बच्चे और माँ के बीच में एक भावनात्मक संबंध कायम होता है, और जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसको समझ में आने लगता है कि मेरे जीवन में माँ का क्या महत्व है। माँ का हमारे जीवन में शुरू से लेकर और अंत तक महत्व होता है। ये अलग बात है कि जीवन भर कोई भी माँ हमारा साथ नहीं दे पाती है, लेकिन जब हमारा जन्म होता है उस समय बिना माँ के हमारा जीवन बहुत ही अधूरा होता है। स्तनपान कराने के संबंध में कुछ फायदे तो हमने आपको बता ही दिए, इसके अलावा कुछ भ्रांतियां ऐसी होती हैं जो महिलाओं को स्तनपान करने से रोकती हैं, लेकिन ये सिर्फ भ्रांतियां हैं। जैसे स्तनपान कराएंगे तो हमारे शरीर की बनावट में कुछ गिरावट आ जाएगी, या हम अच्छे नहीं लगेंगे, हम सुंदर नहीं दिखेंगे, लेकिन आप ये सोचिए कि वैसे तो इसका कोई प्रभाव पड़ता नहीं है इस तरह का, लेकिन अगर मान लिया कि आपके मन में ये धारणा बैठ गई है तो आप ये सोचिए कि आपके लिए आपके शरीर से ज़्यादा क्या बच्चा नहीं हो सकता। आपका बच्चा आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और क्योंकि आपने बच्चे को जन्म दिया है तो ये हमारा दायित्व बनता है कि बच्चे का भरपूर पोषण हो, उसका पालन हो समुचित तरीके से दे, और जैसा कि हमने कहा है कि माँ का दूध एक सर्वोत्तम आहार है बच्चे के लिए, तो इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए और अपने नवजात शिशु को आरंभ के लगभग 6 महीने तक माँ को दूध पिलाना ही चाहिए, और ये बच्चे का अधिकार भी है और माँ का दायित्व है।

0: आकाशवाणी आगरा से इस समय आप सुन रहे हैं आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास अपने रेडियो साथी विशेष कुमार शर्मा के साथ। एक छोटा सा अंतराल और उसके बाद फिर सूचनाएं।
1: सूरज की खिलती पहली किरण के साथ आकाशवाणी अपने एक और नए अंदाज में दे रही है आवाज। DTH यानी डायरेक्ट टू होम सेवा पर आप सभी का स्वागत है।
2: गाता एक राम
3: भक्ति संगीत, प्रादेशिक संगीत, विविध भारती FM के कार्यक्रम, प्रादेशिक समाचार और देश विदेश के समाचारों का भरपूर आनंद DTH सेवा के संग।
1: देश के किसी भी कोने में रहते हो आप, अपने ही राज्य से उस कोने में भी DTH के माध्यम से जुड़ सकते हैं आप।
3: बस DTH सेवा का उठाए लाभ।
1: आपकी हर सांस के साथ साथ DTH सेवा 24 घंटे रहे आपके पास।
3: डिजिटल क्वालिटी का ऐसा सुंदर प्रसारण और कहां, DTH सेवा है जहां।
0: दिन भर की भागदौड़ में कहीं भी रहिए, आकाशवाणी आगरा के संग रहिए और सुनते रहिए मनपसंद मनोरंजक खूबसूरत कार्यक्रम। इस समय आप सुन रहे हैं आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास अपने रेडियो हमसफर विशेष कुमार शर्मा के साथ। और अब लेकर हाजिर हैं कुछ आज की आसपास की खास सूचनाएं आपके लिए। आज सावन का पहला सोमवार है और आज के दिन शिव मंदिरों और शिव मंदिरों से जुड़े मार्गों पर श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ रहती है। आगरा में राजेश्वर मंदिर मेले पर यहाँ आयोजन किया जाता है और इसे देखते हुए प्रशासन ने पूरे जनपद में अलर्ट घोषित किया है। प्रमुख मंदिरों में पुलिस के साथ PAC भी रहेगी, यातायात व्यवस्था में भी बदलाव रहेगा।

शहर के अंदर और बाहर कल शाम से 3 अगस्त को यानी आज मेला की समाप्ति तक रूट डायवर्जन भी लागू रहेगा। भारी वाहन शहर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे और नो एंट्री पास भी पूरी तरह से निरस्त रहेंगे। डीसीपी ट्रैफिक ने सभी वाहन चालकों और नागरिकों से धैर्य बनाए रखने, डायवर्जन रूट वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करने की भी अपील की है। कांवड़ियों की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था सुगम बनाने में पुलिस का सहयोग करने का आग्रह भी किया है। यातायात पुलिस ने ट्रैफिक कंट्रोल रूम का हेल्पलाइन नंबर आप नोट कर लीजिए 9554457886 ये जारी किया है। फोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 955-445-7886। जो बाहरी क्षेत्र के मार्ग हैं उन पर भी रूट डायवर्जन रहेगा और ये इस प्रकार है। हाथरस से आगरा की ओर आने वाले भारी वाहनों को हाथरस और सादाबाद से डायवर्ट कर सिकंदरा राव और मथुरा की ओर भेजा जाएगा। मथुरा और फिरोजाबाद से आने वाले सभी वाहनों को NH-19 से निर्बाध रूप से निकाला जाएगा। फिरोजाबाद से जयपुर जाने वाले भारी वाहन रुनकता से दक्षिणी बाईपास का प्रयोग करेंगे। अलीगढ़ से आने वाले वाहन खंदौली चौराहे से मुड़ी चौराहे होते हुए NH-19 से गुजारे जाएंगे। भरतपुर या फतेहपुर सीकरी से आने वाले भारी वाहन महुअर से दक्षिणी बाईपास का उपयोग करेंगे। यमुना एक्सप्रेसवे से आगरा की ओर आने वाले वाहन खंदौली पर न उतरकर कुबेरपुर से होकर आएंगे। जलेसर एटा से आगरा आने वाले वाहन मुड़ी चौराहे से एतमादपुर होकर NH-19 से आगे बढ़ेंगे। हाथरस और जलेसर की ओर जाने वाले भारी वाहन भी NH-19 से टूंडला या मुड़ी चौराहे से होकर गुजारे जाएंगे। ग्वालियर या जयपुर से अलीगढ़ जाने वाले भारी वाहन गांव बाद से दक्षिणी बाईपास और कुबेरपुर कट से यमुना एक्सप्रेसवे का उपयोग करेंगे। फतेहाबाद रोड और शमशाबाद से आने वाले भारी वाहन रिंग रोड और गुतला अंडरपास से गुजारे जाएंगे। शहर में NH-19 पर चलने वाले भारी वाहन आगरा महानगर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। शहर के सभी प्रवेश द्वारों पर बैरियर लगाकर डायवर्जन लागू रहेगा। रोहता नगर चौराहा, रामबाग और वाटरवर्क चौराहे पर कई स्थानों पर प्रवेश वर्जित रहेगा। कांवड़ियों के मार्ग पर भारी वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसमें रामबाग चौराहे से एतमाउद्दौला तिराहा और यमुना किनारा मार्ग शामिल है। आगरा किला, अमर सिंह गेट और क्लब चौराहे जैसे क्षेत्र भी प्रभावित रहेंगे। सोमवार के लिए प्रमुख शिव मंदिरों के आसपास यातायात पुलिस के विशेष प्रबंध हैं। राजराजेश्वर मंदिर, रावली महादेव मंदिर के आसपास यातायात नियंत्रित रहेगा। मनकामेश्वर महादेव मंदिर और पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर भी इस व्यवस्था में शामिल है। राजराजेश्वर मंदिर के पास शास्त्रीपुर चौराहे से राजपुर चुंगी तक भारी मध्यम वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। रावली मंदिर के पास साईं का तकिया चौराहे से बड़े वाहन नहीं आ सकेंगे। लाल बहादुर शास्त्री चौराहे से शमशाबाद रोड पर राजपुर चुंगी की ओर भारी और मध्यम वाहन नहीं जाएंगे। हल्के चार पहिया वाहन शमशाबाद रोड पर गोल मार्केट राजपुर चुंगी तक ही जा सकेंगे। शमशाबाद जाने वाले वाहन फतेहाबाद रोड से तोरा चौकी, एकता चौकी होकर या फिर इनर रिंग रोड गुतला अंडरपास यानी जवाहर पुल से होकर जा सकेंगे। राजपुर चुंगी से कहरई मोड़ तक सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। शमशाबाद से आगरा आने वाले हल्के वाहन एकता चौकी, तोरा चौकी से फतेहाबाद रोड होते हुए जा सकेंगे। तो ये आगरा में इस समय पहला सावन का सोमवार होने की वजह से यातायात परिवर्तित किया गया है और आप जब भी घर से वाहन निकलें तो आप इस बात का ध्यान रखें कि कहां होकर हमको गुजरना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप जाम में फंस सकते हैं या फिर आपको देरी हो सकती है। तो पहले से ही ये आप तय कर लें कि हमको कहां जाना है और वहां पहुंचने के लिए किस मार्ग से होकर हमको गुजरना है। प्रदेश में विभिन्न विभागों की समूह ग की भर्तियों के लिए अर्हकारी प्रारंभ

प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 2026 का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 3 अगस्त से 1 सितंबर तक रहेंगे, जबकि शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन 8 सितंबर तक किए जा सकेंगे। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से इसका विज्ञापन जारी करते हुए बताया गया है कि पीईटी से पहले अभ्यर्थी वन टाइम रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें। ओटीआर के बाद ही वे पीईटी 2026 के आवेदन कर सकेंगे। इससे अभ्यर्थियों को एक ही सूचना बार बार नहीं देनी होगी। अभ्यर्थी पीईटी के आवेदन से पहले ओटीआर में आवश्यक संशोधन भी कर सकते हैं, क्योंकि पीईटी पंजीकरण नंबर जारी होने के बाद ओटीआर और पीईटी आवेदन में संशोधन नहीं हो सकता है। कर्मचारी चयन आयोग ने स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी परीक्षा 2025 का संशोधित परिणाम जारी कर दिया है। स्किल टेस्ट के मूल्यांकन में त्रुटियों की शिकायतों के बाद 19 जून को स्थगित की गई अनंतिम आवंटन सूची की समीक्षा पूरी होने पर नई सूची जारी की गई है। संशोधित परिणाम में ग्रेड सी के 232 और ग्रेड डी के 1483 कुल 1715 अभ्यर्थियों का अनंतिम आवंटन किया गया है। उत्तर मध्य रेलवे में ग्रुप डी के 1183 पदों पर भर्ती के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी प्रयागराज ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राष्ट्रव्यापी कंप्यूटर आधारित परीक्षा 3 से 25 अगस्त तक 16 परीक्षा दिवसों में 48 पालियों में आयोजित की जाएगी। आरआरबी प्रयागराज के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 28 केन्द्र बनाए गए हैं। इनमें प्रयागराज, कानपुर, अलीगढ़, आगरा, झांसी और मुरादाबाद के अलावा उत्तराखंड के रुड़की और देहरादून के केंद्र शामिल हैं। छावनी परिषद के स्कूलों में जल्द ही बड़ा शैक्षणिक बदलाव होने जा रहा है। रक्षा संपदा महानिदेशालय ने सभी छावनी परिषदों को पत्र भेजकर छावनी बोर्ड के स्वामित्व वाले स्कूलों में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध करने की योजना से अवगत कराया है। स्मार्ट क्लास, डिजिटल लर्निंग और शिक्षकों के प्रशिक्षण जैसी आधुनिक सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। वर्तमान में छावनी बोर्ड के स्कूल संबंधित राज्य शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं, जिससे पाठ्यक्रम, परीक्षा और मूल्यांकन प्रणाली में अंतर है। नई व्यवस्था में सभी स्कूलों में एक समान शैक्षणिक ढांचा लागू हो जाएगा। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद अब विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा का एक नया विकल्प डॉ. भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय में उपलब्ध होने जा रहा है। खंडारी परिसर में संचालित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में अब एमई यानी मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसके लिए 3 अगस्त से प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो रही है। विशेष बात यह है कि शुरुआत में 5 प्रमुख इंजीनियरिंग ब्रांच में विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। आईईईटी के प्रभारी के अनुसार एमई पाठ्यक्रम के अंतर्गत कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ाई शुरू की जाएगी। प्रत्येक ब्रांच में 20-20 सीटें निर्धारित की गई हैं। खाटू श्याम धाम जाना आगरा के श्रद्धालुओं के लिए आसान हो जाएगा। रेलवे ने गाड़ी संख्या 04161 और 04162 प्रयागराज सीकर प्रयागराज साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इससे आगरा कैंट के रिंगस जंक्शन तक सीधी ट्रेन उपलब्ध हो जाएगी। ये ट्रेन 10 अगस्त से 30 नवंबर तक प्रयागराज से प्रत्येक सोमवार और 11 अगस्त से 1 दिसंबर तक सीकर से प्रत्येक मंगलवार को चलेगी। यूपी बोर्ड ने जन्म तिथि को लेकर बेसिक शिक्षा निदेशक को महत्वपूर्ण सुझाव भेजा है। सचिव की ओर से भेजे गए सुझाव के अनुसार जन्म तिथि के अंकन में परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान अध्यापक उस अभिलेख का उल्लेख नहीं करते हैं जिसके आधार पर बच्चों के प्रवेश के समय उनकी जन्म तिथि का अंकन किया जाता है। यूपी बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से मुख्यालय पर जन्मतिथि संशोधन संबंधी प्रकरण प्राप्त होते रहते हैं। सही जन्मतिथि के साक्ष्य रूप में प्राथमिक उच्च प्राथमिक कक्षाओं की सत्यापित टीसी संलग्न की जाती है। बहुत से प्रकरणों में यह देखा जाता है कि बच्चे की आयु प्रवेश के समय आरटीई 2009 में निर्धारित आयु से कम होती है और उसके अनुसार कक्षा 1 में प्रवेश की आयु 6 वर्ष निश्चित की गई है,
क्योंकि यूपी

बोर्ड की ओर से जारी प्रमाण पत्र में जन्मतिथि तथा नाम का अंकन अति महत्वपूर्ण होता है, इसलिए सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि टीसी के प्रति हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पद का नाम स्पष्ट लिखा हो। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं संपूर्ण आनंद संस्कृत विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को ऑनलाइन छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए आवेदन शनिवार से शुरू हो गए हैं। खास बात यह है कि इस साल विद्यार्थियों के खाते में 31 अक्टूबर तक या इससे पहले सेमेस्टर की छात्रवृत्ति की धनराशि भेज दी जाएगी। ईकेवाईसी से चूके घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के पास एक और मौका है। गैस वितरण कंपनियों ने लोगों से 16 अगस्त तक ये काम पूरा करने की अपील की है। कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय तक केवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को आगे चलकर व्यावसायिक दरों पर गैस सिलेंडर लेने जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। कंपनियों के अनुसार घरेलू उपभोक्ता अपने मोबाइल फोन के माध्यम से भी घर बैठे ई केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके लिए संबंधित गैस कंपनी का आधिकारिक मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। हालांकि संबंधित एजेंसी पर जाकर भी प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पीएफ निकासी में बड़ी राहत देने का फैसला किया है। संगठन का कहना है कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद नए पीएफ निकासी दावों का निपटारा उसी दिन या अधिकतम 24 से 48 घंटे के भीतर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही ईपीएफओ जल्द ही यूपीआई के जरिए सीधे बैंक खाते में पीएफ की राशि भेजने की सुविधा भी शुरू करेगा। और अब आसपास के अंत में आइए सुनते हैं खोए हुए व्यक्तियों के बारे में सूचनाएं। प्राप्त सूचना के अनुसार भूरी देवी, पत्नी राकेश, निवासी ग्राम शाला पीलूखेड़ा, थाना सैया, जनपद आगरा। भूरी देवी की उम्र 34 वर्ष है और भूरी देवी दिनांक 10 जून 2026 से अपने गांव पीलूखेड़ा से लापता है। भूरी देवी का रंग गेहुआ है, कद लगभग 5 फीट है। भूरी देवी के बारे में यदि कोई जानकारी या सूचना आपको मिले तो आप थाना प्रभारी, थाना सैया, जनपद आगरा को सूचित कर सकते हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार सुभाष सिंह, पुत्र बदन सिंह, निवासी जयरामबाग, दयालबाग, थाना न्यू आगरा, जनपद आगरा। सुभाष दिनांक 2 अप्रैल 2026 को घर से बिना बताए कहीं चला गया है। सुभाष की उम्र लगभग 40 वर्ष है, कद 168 सेंटीमीटर, शरीर की बनावट सामान्य है, रंग गेहुआ है, बाल काले हैं। घर से जाते समय काले रंग की पैंट और सफेद रंग की शर्ट पहनी हुई थी। सुभाष के बारे में यदि कोई जानकारी या सूचना मिले तो आप थाना प्रभारी, थाना न्यू आगरा, जनपद आगरा को सूचित कर सकते हैं। एक अन्य सूचना के अनुसार रोहित, पुत्र शिवदत्त, निवासी नंगला गंगाराम, जनपद आगरा। रोहित दिनांक 29 मई 2026 से अपने गांव नंगला गंगाराम से लापता है। रोहित की उम्र 34 वर्ष है, कद लगभग 5 फीट 5 इंच, रंग सांवला है, शरीर इकहरा है, चेहरा लंबा है, बाल खिचड़ी अधपके हैं और घटना के समय रोहित ने गहरे नीले रंग की टी शर्ट और जींस पहनी हुई थी। रोहित के बारे में यदि कोई जानकारी या सूचना आपको मिले तो आप थाना प्रभारी, थाना लोहा मंडी, जनपद आगरा को सूचित कर सकते हैं। और इसके साथ ही आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास समाप्त करने की विशेष कुमार शर्मा को अनुमति दीजिए। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। 8 बजे हैं, अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प के लिए 100 सप्ताह का नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। कहा, विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज से लखनऊ में शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोग मारे गए और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देशभर में हर रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
3: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम को कटक के पास बनारा में जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति भुवनेश्वर से ब्रह्मपुर तक एक विशेष ट्रेन से यात्रा करेंगी और फिर सड़क मार्ग से गंजाम जिले के तप्तपानी जाएंगी, जहां वो मां कांधुनी देवी मंदिर और शिव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। वो रात में गोलाबंधा स्थित आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज में रुकेंगी। भुवनेश्वर और कटक में पुलिस की लगभग 40 प्लाटून तैनात करके सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान निर्धारित स्थलों के ऊपर नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना शुरू हो गई है। पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जा रही है, उसके बाद 8:30 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में दर्ज वोटों की गिनती शुरू होगी। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। लोकसभा में आज सर्वोच्च न्यायालय, न्यायाधीशों की संख्या, संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होने की संभावना है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस विधेयक को पेश कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश कर सकती हैं। इसका उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े सबूतों के लिए कानून बनाना और इसे आजकल के डिजिटल

0: बैंकिंग तौर तरीकों के अनुरूप बनाना है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में आज सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स के सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है।
2: इस वर्ष भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। ब्रिक्स सांख्यिकी ट्रैक के अंतर्गत भारत ने परिवर्तन के प्रेरक के रूप में गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी इस विषय को अपनाया है। इसका उद्देश्य ब्रिक्स के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान एवं सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बैठक में सांख्यिकी उत्पादों को मजबूत करने, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालियों में सुधार, डेटा की पहुंच बढ़ाने और आर्थिक व क्षेत्रीय सांख्यिकी को सुदृढ़ बनाने पर चर्चा होगी। इसके साथ ही विकसित होते डेटा पारिस्थितिकी तंत्र में एआई की तैयारी विषय पर 2 विशेष सह कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत आज होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। इस हमले की योजना पहले से बनाई गई थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन को लेकर कोई समझौता हो सकता है। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर भी समझौता किया जाएगा। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर एक आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षा कर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। 9 लोग मौके पर ही मारे गए, जबकि 5 और लोगों की मौत की पुष्टि काबल अस्पताल में हुई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पाल की जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार को निकाले जाने की परंपरा है। भगवान महाकाल को चंद्रमौलेश्वर रूप में पारंपरिक पाल की जुलूस में ले जाया जाएगा, जिससे भक्तों को दर्शन का अवसर मिलेगा।
3: मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर से आज श्रावण मास की पहली सवारी निकलेगी। इस दौरान भगवान महाकाल चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में पालकी में विराजमान होकर नगर भ्रमण करेंगे और श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। दोपहर 3:30 बजे सभा मंडप में पूजन होगा, जबकि शाम 4 बजे सवारी मंदिर से रवाना होगी। सवारी गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार और कहारवाड़ी होते हुए रामघाट पहुंचेगी। यहां शिप्रा नदी के जल से भगवान महाकाल का अभिषेक और आरती की जाएगी। इसके बाद सवारी अलग अलग रास्तों से होते हुए शाम 7 बजे मंदिर लौटेगी। महाकाल मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में एक भव्य समारोह में संपन्न हो गए।

0: चौथे स्थान पर रहा। खेल मंत्रालय के सचिव हरि रंजन ने कहा है कि देश के खिलाड़ियों ने अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया।
1: 2026 के ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में कई खेलों की विधाओं में कटौती होने के बावजूद भी देश की टीम ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है कि पहले से और हमारी अपेक्षाओं से कई गुना ज्यादा, तो ये हम सबके लिए एक बहुत सुखद संकेत है कि शायद वो जो एक टर्निंग पॉइंट स्पोर्ट्स की दिशा में देश में आना चाहिए उसका समय आ गया है। और 2030 में हम अगला कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में अहमदाबाद शहर में आयोजित करने वाले हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ही सुखद संयोग है और प्रतिष्ठा का विषय भी है।
0: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर नशे के खिलाफ 100 सप्ताह के अभियान, राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन और मानसून से जुड़ी खबरें सबसे ऊपर छाई हुई हैं। हिंदुस्तान का पहला शीर्ष समाचार है, नशे के खिलाफ देश ने 100 सप्ताह की जंग छेड़ी। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को सुर्खी बनाया है, ड्रग्स दुश्मन देशों की साजिश। नवभारत टाइम्स और दैनिक जागरण ने भी प्रधानमंत्री की कही इसी बात को शीर्ष समाचार बनाया है, जबकि जनसत्ता ने अमेरिका ईरान युद्ध के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वक्तव्य को अपना शीर्ष समाचार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान पर हमले रोकें बशर्ते शीघ्र हो करार। दैनिक भास्कर ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की उपलब्धि के समाचार को शीर्षक दिया है, इस बार हमारे 54% गोल्ड बॉक्सिंग में आए, कुल मेडल में से 69% सिर्फ 3 खेलों में जीते। दैनिक ट्रिब्यून ने अपने संपादकीय लेख को शीर्षक दिया है, हादसों के हाईवे पत्र सड़क दुर्घटनाओं की गंभीरता को रेखांकित करते हुए सवाल करता है कि जब वैकल्पिक ईंधन और वाहनों की प्रदूषण जांच सरकार की प्राथमिकता है तो ऐसा ही अभियान सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए क्यों नहीं चलाया जाता। पत्र का कहना है कि बीते गुरुवार को लोकसभा में सड़क दुर्घटनाओं के जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए वो डराने वाले हैं। कश्मीर में हथियारों से लैस 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी के समाचार को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए इसे सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी बताया है। पुलवामा जिले में एक आतंकी से हैंड ग्रेनेड, राष्ट्र विरोधी पोस्टर और अन्य प्रतिबंधित सामग्री बरामद होने की खबर को पत्र ने बॉक्स में प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, बारामूला में आतंकियों का मददगार गिरफ्तार।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, डिजिटल नागरिक की सुरक्षा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प के लिए 100 सप्ताह का नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया, कहा विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज लखनऊ में शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोगों की मौत। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches 100-week-long Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan, says Viksit Bharat requires physically healthy, mentally robust and highly confident younger generation. Counting of votes begins for by-elections to 3 assembly constituencies in Bihar, Gujarat and Madhya Pradesh. Meeting of heads of national statistical offices of BRICS countries starts.

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 100 हफ्तों तक जारी रहने वाले नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का आगाज किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए जिस्मानी तौर पर सेहतमंद, जहनी तौर पर मजबूत और एतमाद से भरपूर नौजवान नस्ल जरूरी है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश के 3 असेंबली हलकों के जिमनी चुनाव के वोटों की गिनती शुरू हो गई है। ब्रिक्स मुल्कों के आदादोशुमार के कौमी दफातर के

0: सरबराहान का इजलास आज लखनऊ में शुरू हो रहा है। अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ नए मुदाकरात आज होंगे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में अमन रैली के दौरान खुदकुश हमले में 14 अफराद हलाक हो गए और अहमदाबाद ने ग्लासगो में इख्तितामी तकरीब के दौरान 2030 दौलत मुशतरका खेलों की मेजबानी के हकूक बाजाबता तौर पर हासिल किए। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल वसीले से आगाज किया। अपने खिताब में वजीर आजम ने कहा कि विकसित भारत बनने के लिए बुनियादी तौर पर जरूरी है कि मुल्क के नौजवानों को जिस्मानी तौर पर चुस्त दुरुस्त, दिमागी तौर पर मजबूत और पूरे एतमाद होना चाहिए और नौजवानों को हमेशा नशीले मादों से दूर रहना चाहिए और एक सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाना चाहिए।
1: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है, क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, दूर हो, यही इस अभियान का उद्देश्य है।
0: मुनश्यात की रोकथाम से मुतालिक 100 हफ्ते की मुलगीर मुहिम के खाके का जिक्र करते हुए जनाब मोदी ने तफसील से बताया कि आने वाले हर इतवार को फन, सकाफत, खेल और ध्यान पर मबनी मखसूस सरगर्मियां मुनक़िद की जाएंगी ताकि नए शुरका की मुसलसल दिलचस्पी बरकरार रहे और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल होते रहें। उन्होंने कहा कि आइंदा 100 इतवार नशे से पूरी तरह पाक भारत की समत में मुकम्मल तौर पर 100 मजबूत कदम बन जाएंगे।
1: आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम होंगे, 100 मजबूत स्टेप्स।
0: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश के 3 असेंबली हलकों में जिमनी चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू हो गई है, जिसके लिए मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। बिहार में बांकीपुर हलके, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दातिया हलके में गुज़श्ता महीने की 30 तारीख को वोट डाले गए थे। वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे शुरू हुई। सबसे पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती की जा रही है। चुनाव कमीशन ने तीनों रियासतों में वोटों की गिनती के अमल को खुशअसलूबी से यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। ब्रिक्स मुल्कों ब्राजील, रूस, भारत, चीन, जनूबी अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात के आदाद व शुमार के कौमी दफातर एनएसओ के सरबराहान का इजलास आज से कल तक लखनऊ में भारत की सदारत में मुनक़िद होगा। तफसील हमारे नामनिगार से।
2: भारत की ब्रिक्स सदारत मरकजी मौजूद इस्तेहकाम, इख्तिराक, तआवुन और पायदारी की तश्कील से इबारत है। ब्रिक्स के आदाद व शुमार के शोबे में भारत ने मेयारी आदाद व शुमार तब्दीली का मुहर्रिक का मौजू इख्तियार किया है, जो आदाद व शुमार के आला मेयार, इख्तिरा, मालूमात की मौसर तरसील और आवाम पर मरकूज शुमारियाती निज़ाम के लिए भारत के पुख्ता अज़्म की अक्कासी करता है। इस इजलास का मकसद ब्रिक्स के क्लीदी आदाद व शुमार को मजीद मजबूत बनाना, कौमी शुमारियाती निज़ाम में इख्तेरा और इस्लाहात को फरोग देना, आदाद व शुमार की इशात और आदाद व शुमार तक रसाई को बेहतर बनाना, नीज माशी और मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक आदाद व शुमार को मजीद मुस्तहकम करना है। इसका मकसद आदाद व शुमार से मुतालिक मालूमात की इशात, शुमारियाती निज़ाम में इख्तेरा, नीज मालूमात और बेहतरीन तरीक़ेकार के तबादले के शोबों में बाहमी तआवुन को मजीद मजबूत करना भी है। इजलास के साथ 2 निस्प रोजा जिमनी प्रोग्राम भी मुनक़िद किए जाएंगे, जिनमें इंतजामी आदाद व शुमार की सलाहियतों से भरपूर इस्तेफादा और तरक्की पजीर डेटा इको निज़ाम में मसनू जहानत AI के लिए तैयारी जैसे मौजूद पर भी तबादले ख्याल किया जाएगा। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का आज से उड़ीसा का 3 रोजा दौरा शुरू हो रहा है। अपने क्याम के दौरान सदर जमहूरिया कटक में करीपालू जगतगुरु यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह करेंगी और कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंज

0: पंजम जिलों के तप्तापानी में तालीमी, सकाफती और दीगर सरकारी प्रोग्रामों में शिरकत करेंगी। पेश एक रिपोर्ट।
1: सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा की अपनी आबाई रियासत के 3 रोजा दौरे के सिलसिले में आज से पहर भुवनेश्वर पहुंचेंगी। बाद में शाम को वो कटक के नजदीक बनारा में जगत गुरु कृपालु यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह करेंगी। वो कल भुवनेश्वर से बहरामपुर तक एक खसूसी ट्रेन से सफर करेंगी और बाद में गंजम जिले में तप्तापानी के लिए सड़क से रवाना होंगी, जहां वो माँ कंधुनी देवी मंदिर और शिव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। मोहतरमा मुर्मू गोला बांधा में फौज के एयर डिफेंस कॉलेज में रात कयाम करेंगी। भुवनेश्वर और कटक में पुलिस की 40 पलटनों की तैनाती के साथ सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। सदर जमहूरिया के दौरे के दौरान सिक्योरिटी के जबरदस्त इंतजाम को यकीनी बनाने के लिए बहरामपुर रेलवे स्टेशन, सदर जमहूरिया के सफर के रास्ते, तप्तापानी मंदिर कॉम्प्लेक्स, फौज के एयर डिफेंस कॉलेज और दीगर मकामात को नो फ्लाई जोन करार दिया गया है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: लोकसभा में आज सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद से मुतालिक तरमीम बिल 2026 पेश किया जाएगा। तवक्को है कि कानून और इंसाफ के मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल इस बिल को पेश करेंगे, ताकि भारत के चीफ जस्टिस को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट में जजों की मौजूदा तादाद 33 से 37 तक बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद से मुतालिक एक्ट 1956 में मजीद तरमीम की जा सके। इम्कान है कि वजीर खजाना निर्मला सीतारमन बैंकर बुक्स एविडेंस बिल 2026 पेश करेंगी। आदाद शुमार और प्रोग्रामों पर अमल दरामद के वजीर राव इंदरजीत सिंह इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट 2026 पेश करेंगे। इसी दौरान राज्यसभा में बहुत छोटी छोटी और औसत दर्जे की सनतों की तरक्की का तरमीमी बिल 2026 आज पेश किया जाएगा। बहुत छोटी छोटी और औसत दर्जे की सनतों के मरकजी वजीर जीतराम मांझी बिल पेश कर सकते हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सालिसी करने वाले ममालिक के जरिए ईरान के साथ आज मुजाकरात होने वाले हैं। एयरफोर्स वन में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए जनाब ट्रंप ने तस्दीक की कि दोनों मुल्कों के दरमियान राबते और बातचीत के जराये सरगर्म हैं। सर ट्रंप ने बताया कि सऊदी अरब, मुत्तहद अरब अमारात, कतर और ईरान की सिफारती कोशिशों के नतीजे में उन्होंने इस बड़े हमले को रोकने का फैसला किया, जो पहले मनसूबाबंदी का हिस्सा था। उन्होंने मजीद कहा कि आबनाए हुरमुस के इंतजाम और इंसराम के हवाले से एक मुआहदा तय पाने का इम्कान है, जबकि ईरान के जौहरी हथियारों से दस्तबरदार होने के बारे में भी एक मुफाहमतनामे तक पहुंचने की तवक्को है। इसराइली मीडिया की खबरों के मुताबिक खित्ते के सालिसी करने वाले ममालिक गुज़श्ता माह दस्तखत किए गए मुफाहमतनामे को दोबारा फ़ाल करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इस अहम समंदरी गुदरगाह को 60 दिन तक बगैर किसी फीस के खुला रखा जा सके। उधर ईरानी सरकारी मीडिया ने भी इशारा दिया है कि ईरान और ओमान के दरमियान उस समंदरी राहदारी के इंतजाम के लिए मुश्तरक तरीक़ेकार से मुतालिक मुज़ाकरात अपने आखिरी मरहले में हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में कल अमन रैली के दौरान एक पुलिस स्टेशन पर हुए खुदकुश हमले में सिक्योरिटी के 5 अहलकारों समेत कम से कम 14 अफराद हलाक और दर्जनों लोग जख्मी हो गए। खुदकुश बम धमाके का वाकया उस वक्त पेश आया जब सवाद पुरअमन रैली सवाद जिले में कबल कस्बे के पुलिस स्टेशन से गुजर रही थी। किसी ग्रुप या फर्द ने फौरी तौर पर इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पवित्र सावन महीने की पहली पीर के मौके पर आज भगवान महाकालेश्वर की श्रवण यात्रा निकाली जाएगी। चंद्रमावलेश्वर के रूप में भगवान महाकाल की रिवायती पालकी निकाली जाएगी, जिससे अकीदतमंदों को उनके दर्शन का मौका मिलेगा।

शाम 4 बजे जुलूस निकाले जाने से कबल महाकालेश्वर मंदिर में खुसूसी पूजा अर्चना की जाएगी। जुलूस रामघाट पहुंचने से पहले गुदरी चौक बख्शी बाजार से होकर गुजरेगा, जहां भगवान महाकाल को शिव

0: द्वारा दरिया के पवित्र पानी के साथ अभिषेक और आरती पेश की जाएगी। ये जुलूस शाम मंदिर लौट आएगा। मंदिर इंतजामिया ने अकीदतमंदों के लिए वसी तर इंतजाम किए हैं। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, ज़ैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अंडमान व निकोबार जजायर, ओडिशा, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और झारखंड में भी कल तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। कर्नाटक, केरला, माहे, कोंकण, गोवा, वस्ती महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और शिमाल मशरकी भारत के बाज़ इलाकों में इसी तरह के हालात रहने का इम्कान है। मौसमियात की एजेंसी ने साहिली आंध्र प्रदेश, केरला, माहे, लक्षद्वीप, कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और अंडमान और निकोबार जजायर में कल तक गरज चमक और तेज हवाओं के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई की है। ग्लासगो में मुनक़िदा दौलत मुश्तरका खेलों के इख्तिताम के साथ ही अहमदाबाद में 2030 में मुनक़िद होने वाले दौलत मुश्तरका खेलों की उल्टी गिनती बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो गई है। पेश एक रिपोर्ट।
1: इख्तितामी तकरीब में भारत ने कदीम फलसफे, जदीद फनून और अपनी शानदार सकाफती रिवायात का हसीन इम्तिजाज पेश करते हुए दुनिया भर के मुल्कों को अहमदाबाद आने की पुरजोश दावत दी। इसी तकरीब के जरिए 2030 में मुनक़िद होने वाले दौलत मुश्तरका खेलों के 7 साल एडिशन की तैयारियों का बाज़ाब्ता आगाज भी हो गया। बरतानिया के शाह चार्ल्स स्वयं के नुमाइंदे प्रिंस एडवर्ड्स ड्यूक ऑफ एडिनबरा ने ग्लासगो में दौलत मुश्तरका खेलों के इख्तिताम का बाज़ाब्ता ऐलान किया और तमाम शरीक ममालिक और खित्तों के खिलाड़ियों को अहमदाबाद आने की दावत दी। 11 रोज तक जारी रहने वाले सख्त मुकाबलों के बाद भारतीय खिलाड़ी 39 तमगों के साथ ग्लासगो से वतन वापस लौटे। नई दिल्ली से मुइनुद्दीन खान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
2: शुक्रिया अमर। कौमी राजधानी दिल्ली से शाइब होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों की सुर्खी है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुनशियात के खात्मे के लिए मुल्क गिर मुहिम का आगाज करते हुए कहा कि नौजवान नस्ल को नशीले मादों से दूर रहना चाहिए और सेहतमंद तर्ज जिंदगी इख्तियार करना चाहिए। मगरबी एशिया बहरान के तनाजुर में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का डोनाल्ड ट्रंप से राबता, खित्ते में जारी कशीदगी रोकने के लिए मुजाकरात पर दिया जोर, इस खबर को इनकलाब ने सफ़े अव्वल पर शाये किया है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 असेंबली हलकों में हुए जिमनी चुनाव के वोटों की गिनती आज, सभी तैयारियां मुकम्मल, इस खबर को आज के अखबारों ने नुमाया किया है। रोजनामा इनकलाब की खबर है, उत्तर प्रदेश असेंबली का मानसून इजलास आज से, कई अहम बिलों को पेश किए जाने की उम्मीद।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 100 हफ्तों तक जारी रहने वाले नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का आगाज किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए जिस्मानी तौर पर सेहतमंद, जहनी तौर पर मजबूत और एतमाद से भरपूर नौजवान नस्ल जरूरी है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश के 3 असेंबली हलकों के जिमनी चुनाव के वोटों की गिनती शुरू हो गई है। ब्रिक्स मुल्कों के आदादोशुमार के कौमी दफातर के सरबराहान का इजलास आज लखनऊ में शुरू हो रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ नए मुजाकरात आज होंगे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में अमन रैली के दौरान खुदकुश हमले में 14 अफराद हलाक हो गए और अहमदाबाद ने ग्लासगो में इख्तितामी तकरीब के दौरान 2030 दौलत मुश्तरका खेलों की मेजबानी के हकूक बाज़ाब्ता तौर पर हासिल किए। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर 8:45 और 35 सेकेंड हुए हैं। आइए सुनते हैं सदाबहार फिल्मी गाने। कार्यक्रम है गीतांजलि और मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो साथी विशेष कुमार शर्मा। स्वीकार कीजिए प्यार भरा नमस्कार।

तो सावन का महीना चल रहा है और आज सोमवार है। ये सावन का पहला सोमवार है और जैसा कि हम सभी मानते हैं और मान्यता है कि सावन के महीने में शिव जी के लिए, भगवान शंकर के लिए, ये सावन का महीना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और क्योंकि शिव जी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो जो शिव के भक्त हैं उनके लिए तो भगवान शिव हमेशा से बहुत ही आराध्य रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। तो भगवान शिव की एक आराधना करते हुए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आइए सुनते हैं सबसे पहले एक शिव भजन।

आप सुन रहे थे नागमणि फिल्म का शिव भजन। इसे गाया था सुरेश वाडेकर और साथियों ने, रचना महेंद्र दहलवी की थी, धुन बनाई थी अन्नू मलिक ने। गीतांजलि कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं नदीम श्रवण की तर्ज पर समीर की गीत रचना। फिल्म का नाम है साजन का घर। आवाजें हैं साधना सरगम और कुमार शानू की।

0: ये आवाजें थी साधना सरगम और कुमार शानू की, फिल्म का नाम था साजन का घर। गीतकार थे समीर, संगीतकार नदीम श्रवण।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
3: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
2: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: गीतांजलि कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं चांदनी फिल्म का एक गीत। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, संगीतकार हैं शिव हरी, गायक कलाकार हैं आशा भोसले और विनोद राठौर।

चांदनी। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और विनोद राठौर की आवाजों में। गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने, तर्ज बनाई थी शिव हरि ने। अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसे अलका याग्निक ने गाया है। गीत रानी मलिक का है, संगीत अनूप अनिल का। फिल्म का नाम है हम दीवाने प्यार।

आकाशवाणी आगरा से इस समय आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि अपने रेडियो साथी विशेष कुमार शर्मा के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला सदाबहार गीत। संगीतकार हैं राम लक्ष्मण, गीतकार देव कोहली, फिल्म का नाम है अनमोल, गीत को गाया है लता मंगेशकर ने।

इश्कर की आवाज में ये था अनमोल फिल्म का गीत। गीतकार थे देव कोहली, संगीतकार राम लक्ष्मण। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं राहुल देव बर्मन की तर्ज पर योगेश का लिखा गीत। फिल्म का नाम है शौकीन, आवाज किशोर कुमार की।

0: किशोर कुमार के गाए फिल्म शौकीन के इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि समाप्त करने की विशेष कुमार शर्मा को अनुमति दीजिए। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 9:15 हुए हैं, अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए बिजनौर और श्रावस्ती जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बिजनौर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अतुल गर्ग का।
2: नरेंद्र मोदी ने अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की ग्रामीण महिलाओं के हौसले और आत्मनिर्भरता की जमकर सराहना की। बिजनौर जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के संयुक्त सहयोग से विदुर प्रेरणा ब्रांड की शुरुआत की गई है। इस स्थानीय ब्रांड ने जिले की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल दी है। इस पहल के तहत जिले के स्वयं सहायता समूहों की लगभग 2,40,000 महिलाएं सीधे तौर पर जुड़कर काम कर रही हैं। इन समूहों द्वारा उच्च गुणवत्ता के अचार, पापड़, साबुन, झाड़ू, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक वाहन भी उत्पाद किए जा रहे हैं। विद्युत स्टोर के माध्यम से इन उत्पादों को देशव्यापी बाजार मुहैया कराया जा रहा है, जिसमें बिजनौर के स्थानीय उत्पादों को वोकल फॉर लोकल के तहत नई पहचान मिली है। मुख्य विकास अधिकारी रणविजय सिंह ने बताया,
3: हमारी जो एसएचजी की महिलाएं जो इससे जुड़ी हुई हैं, जो या हर्बल टी प्रोडक्शन का कार्य कर रही हैं, उनके लिए बहुत उत्साहवर्धक है। साथ ही साथ नेशनल लेवल पर इसकी डिमांड बढ़ेगी, उसके अकॉर्डिंग

0: हम लोग जो इनकी प्रोडक्शन यूनिट है उसको भी विस्तार देने की सोच रहे हैं, और उसके साथ ही साथ इसको हम पूरे जनपद में कई जो हमारी सीएलएफ है उसके अंतर्गत इस यूनिट्स को बढ़ावा देंगे कि पूरे जनपद में कई यूनिट्स में इसका प्रोडक्शन हो डिमांड के अनुसार। कैसे एक अच्छा प्रोडक्शन यूनिट हर ब्लॉक में कम से कम एक तैयार कर पाए, इसी पर विचार चल रहा है।
1: स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जारी किए गए नवीनतम आंकड़े काफी उत्साहजनक हैं। इन आंकड़ों के अनुसार आयरन फॉलिक एसिड सिरप सप्लीमेंट कवरेज में बिजनौर जनपद ने पूरे प्रदेश में 85% कवरेज के साथ पहला स्थान हासिल किया है। बिजनौर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में गंभीर लापरवाही बरतने पर मोहम्मदपुर देवमल ब्लॉक की 27 आशा कार्यकर्ताओं को सेवा समाप्ति की संस्तुति की गई है। वहीं 5 आशा संगनियों का मानदेय रोकते हुए अंतिम नोटिस जारी किया गया है। अधिकारियों ने कड़ी चेतावनी दी है कि राष्ट्रीय जन कल्याणकारी कार्यक्रमों में किसी भी स्तर पर अनदेखी और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनपद बिजनौर में गिरते भूजल स्तर को सुधारने और वर्षा जल को सहेजने के लिए जिला प्रशासन ने एक बड़े महाअभियान की शुरुआत की है। कैच द रेन राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत जिले के सभी 11 विकास खंडों में एक साथ 157 तालाबों में खुदाई का कार्य शुरू किया गया। बिजनौर में जल सुरक्षा सुनिश्चित करने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए पानी बचाने के उद्देश्य से प्रशासन ने यह बड़ा कदम उठाया है। जिले में अब तक 409 अमृत सरोवरों का निर्माण पूरा हो चुका है और कुल 562 भूमियों को चिन्हित किया गया है। मुख्य विकास अधिकारी रणविजय सिंह ने बताया कि तालाब भूगर्भ जल को प्राकृतिक रूप से रिचार्ज करने का सबसे प्रभावी माध्यम है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा अभियान चलाया गया। जिले में बड़े पैमाने पर बृहद पौधारोपण किया जा रहा है। बिजनौर जिले में पर्यावरण को निर्मल बनाने के संकल्प के साथ एक दिन में 75 लाख पौधे रोपे गए। विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत श्रमिकों द्वारा इस अभियान के लिए 75 लाख से अधिक गड्ढों की खुदाई पहले ही पूरी कर ली गई थी। जिले भर में शिक्षक से लेकर श्रमिकों और आम नागरिकों ने इस महाअभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बिजनौर की एक विशेष फास्ट ट्रैक अदालत ने करीब 14 साल पुराने बहुचर्चित प्रबल अग्रवाल हत्याकांड में अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। अदालत ने मामले में सभी 7 आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास यानी उम्र कैद की सजा सुनाई है। यह मामला दिसंबर 2012 का है, जब बिजनौर में एक समारोह के दौरान 18 वर्षीय प्रबल अग्रवाल की बेनामी से पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी और साक्षियों को छुपाने के लिए उनके शव को गंगा नदी में फेंक दिया गया था। 13.5 साल चली इस अदालती कार्रवाई के दौरान 305 पेशी हुई और 17 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अदालत ने दोषियों पर भारी जुर्माना भी लगाया है, जिसका 90% हिस्सा पीड़ित को दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में मुहर्रम की 10वीं तारीख यानी यौम ए अशूरा का पर्व शांतिपूर्वक और अकीकत के साथ संपन्न हो गया है। इस अवसर पर जिले के विभिन्न कस्बों और शहरी क्षेत्रों में पारंपरिक ताजिए और मातमी जुलूस निकाले गए। मुख्य जुलूस बिजनौर शहर के मुख्य बाजारों और पारंपरिक रास्तों से होता हुआ गुजरा, जिसमें अकीकतमंदों ने काले लिबास पहनकर हजरत इमाम हुसैन और कर्बला के 72 शहीदों की शहादत को याद किया। सुरक्षा और शांति व्यवस्था के मद्देनजर जिला प्रशासन और पुलिस बल मुस्तैद नजर आए। संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल और पीएसी की तैनाती की गई थी। जुलूस के सुचारू संचालन के लिए शहर में ट्रैफिक डायवर्जन भी लागू किया गया था।
2: बिजनौर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं श्रावस्ती जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अम्मार रिजवी का।
3: श्रावस्ती में वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग करने के लिए उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत जनपद के लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन भिंगा पहुंचे, जहां पर जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग, मुख्य विकास अधिकारी शाहिद अहमद की अगुवाई कर उनका स्वागत किया। तत्पश्चात ऑफिसर्स कॉलोनी ग्राउंड राजकीय पुस्तकालय भिंगा के समीप पहुंचकर वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 कार्यक्रम में अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष दद्दन मिश्रा, विधायक रामफेरन पांडे ने पीपल पाकड़ व बरगद का पौधारोपण कर किया। इसके अलावा जिलाधिकारी ने पीपल का और मुख्य विकास अधिकारी शाहिद अहमद ने आम के पौधे का रोपण कर लोगों को पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। इस अवसर पर अध्यक्ष ने कहा कि पेड़ पौधों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है।
4: बृहत वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 का यह तीसरा चरण, तो माँ के नाम पर पौधा लगाने का ध्येय हमारा है कि जिस तरह से माँ हमारी पूजनीय है, स्तुति है, उसी तरह से हम उसके नाम पर पौधा लगाएंगे। तो पौधा लगाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है पौधे को बचा करके और आगे पुष्पित फलित करने तक हम उसको ले जाएंगे।
3: श्रावस्ती जनपद में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित इलाज मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री सड़क दुर्घटना कैशलेस उपचार योजना पीएम राहत प्रभावी रूप से लागू की गई, जिसकी समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कच्छ में जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि दुर्घटना

0: कोरोना के बाद का पहला घंटा यानी गोल्डन आवर मरीज की जान बचाने के लिए बेहद अहम है। इस योजना के तहत बिना किसी स्वास्थ्य बीमा के भी घायल व्यक्ति को 7 दिनों तक 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज किया जाएगा। जिलाधिकारी ने नागरिकों से गुड सेमेट्रिन बनकर घायलों की निसंकोच मदद करने हेतु अपील की। उन्होंने कहा कि इसके लिए मददगारों को कानूनी सुरक्षा के साथ राहवीर योजना के तहत 25,000 की प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के श्रावस्ती पहुंचते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय विधायक ने उनका भव्य और जोरदार स्वागत किया। सीएम योगी ने श्रावस्ती को 83 परियोजनाओं की सौगात दी, जिसकी कुल लागत 396 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमारी सरकार ने 9 लाख नौजवानों को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरी दी है। देश के सबसे पिछड़े 100 जिलों में कभी श्रावस्ती भी गिना जाता था, लेकिन आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP जैसी योजनाओं से श्रावस्ती विकास के पायदान पर तेजी से आगे बढ़ रहा है।
1: विकास के पायदान पर आगे बढ़ने के लिए श्रावस्ती की लंबी छलांग के लिए मैं श्रावस्ती को बधाई भी देता हूँ।
0: श्रावस्ती में जिला समन्वयक कौशल विकास मिशन श्रावस्ती VK गुप्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से दिव्यांग रोजगार अभियान 3.0 का 3 अगस्त से 10 अगस्त 2026 तक अभियान चलाया जाएगा। दिव्यांग रोजगार अभियान के अंतर्गत 1 सप्ताह के अंदर जनपद स्तर पर संचालित औद्योगिक इकाई एवं अन्य अधिष्ठानों की रिक्तियों की सपेक्षा जनपद व जनपद के बाहर दिव्यांग को सेवायोजित कराया जाएगा। जो भी दिव्यांग रोजगार व स्वरोजगार से जुड़ना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन कार्यक्रम राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भिनगा श्रावस्ती से संपर्क कर सरकार द्वारा संचालित स्वरोजगार की योजना से जुड़ सकते हैं। श्रावस्ती जनपद में बाढ़ से प्रभावित खतरे को देखते हुए पर्याप्त सुरक्षा बलों का व्यवस्थापन किया जा चुका है। राहत उपयुक्त कार्यालय से प्राप्त निर्देशों के क्रम अपर जिलाधिकारी ललित कुमार ने SDRF और फ्लड PSC के जवानों के साथ बैठक कर तैयारी की समीक्षा की। अपर जिलाधिकारी ललित कुमार ने बताया कि जनपद में 1 टीम SDRF तथा 1.5 सेक्शन फ्लड PSC प्रशिक्षित अनुभवी जवान बाढ़ आपदा से बचाव के लिए तैनात किए गए हैं। इनके पास 6 मोटरबोट एवं अन्य बचाव उपकरण मौजूद हैं। जनपद वासियों को बाढ़ के समय रेस्क्यू करने के लिए पूर्व वर्ष की भांति नावों का भी प्रबंध किया जा रहा है। जनपद में गोताखोर चिन्हित हैं, 128 नाविक और 68 नाव गांव में उपलब्ध की गई हैं, जिनमें आवश्यकता अनुसार परिस्थिति के अनुरूप कार्य किया जा सकेगा।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

आपने ट्यून किया है अपना पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी आगरा। इसे आप मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर सुनते हैं। 9:25 हुए हैं। इस समय आप सुनते हैं गीत पुरानी फिल्मों से। कार्यक्रम है गीत मंजूषा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। फिल्म का नाम है कुमारा बाप। आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार राजेश रोशन।

किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों के स्वर में आप सुन रहे थे मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत। इसे संगीतबद्ध किया था राजेश रोशन ने। फिल्म का नाम था कुंवारा बाब। मेला फिल्म का एक गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। आवाजें हैं मुकेश शमशाद बेगम और साथियों की, गीत शकील बदायूनी का, संगीत नौशाद का।

खेतों से पर्वत पर आकर, खेतों से पर्वत पर आकर जीवन जोत गाले, जीवन जोत गाले। दुनिया है दो दिल का मेला, कुछ रोले कुछ गाले।

मुकेश शमशाद बेगम और साथियों के स्वर में आप सुन रहे थे शकील बदायूनी की गीत रचना, धुन बनाई थी नौशाद ने, फिल्म का नाम था मेला। बहु बेगम फिल्म का एक गीत आइए सुनते हैं। गीत रचना साहिर की है, संगीत रोशन का, आवाजें हैं लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों की।

बहू बेगम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, आशा भोसले और सखियों की आवाजों में। गीत लिखा था साहिर ने, धुन बनाई थी रोशन ने। यह है कार्यक्रम का अगला गीत, नौशाद की तर्ज है, शकील बदायूनी के बोल, फिल्म का नाम बैजू बावरा, आवाजें हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर।

नौशाद की धुन पर शकील बदायूनी के बोल आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। फिल्म का नाम था बैजू बावरा। आइए अब सुनते हैं राम गांगुली की तर्ज पर बहजाद लखनवी की गीत रचना। फिल्म का नाम है आग, आवाज शमशाद बेगम की।

गीत मंजूषा कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं प्रदीप का लिखा गीत। संगीत दिया है सरस्वती देवी और रामचंद्र ने। फिल्म का नाम है बंधन, आवाज लीला चिटनिस की।

लीला चिटनिस की आवाज में प्रदीप का लिखा गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था बंधन। संगीत दिया था सरस्वती देवी और रामचंद्र ने। इसके साथ ही गीत मंजूषा कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, लोक संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं राम गोपाल शर्मा मधुर।

लोक संगीत के कार्यक्रम में इस समय आप सुन रहे हैं राम गोपाल शर्मा मधुर और साथियों के गाए ब्रज लोक गीत। आइए सुनते हैं एक और लोक भजन, कलाकार एक बार फिर राम गोपाल शर्मा मधुर और साथी।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं ये ब्रज लोक गीत, कलाकार एक बार फिर राम गोपाल शर्मा मथुर और साथी।

लोक संगीत के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राम गोपाल शर्मा मधुर और साथियों के गाए ब्रज लोक गीत। लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, 10 बजे हैं। अब प्रस्तुत है सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरसरिता। सभी सुनने वालों को विशेष कुमार शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। आइए शुरुआत करते हैं सुरसरिता कार्यक्रम के इस सदाबहार गीत से। फिल्म का नाम है याराना, आवाजें हैं किशोर कुमार और साथियों की।

याराना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। गीतकार थे अनजान, संगीतकार राजेश रोशन। लक्ष्मीकांत प्यारीलाल की तर्ज पर आइए सुनते हैं सुर सरिता कार्यक्रम का अगला सदाबहार गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी, आवाजें हैं मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और साथियों की। फिल्म का नाम है आप आए बाहर आई।

आप आए बाहर आई। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और साथियों के स्वर में। गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: सुर सरिता कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं शैली शैलेंद्र की गीत रचना, संगीतकार हैं राम लक्ष्मण।

0: एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
1: सुर सरिता कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं शैली शैलेंद्र की गीत रचना। संगीतकार हैं राम लक्ष्मण। फिल्म का नाम है दिल की बाजी। आवाजें हैं लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की।

0: दिल की बाजी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर और एस वी बाला सुब्रमण्यम का गाया हुआ। गीत के बोल लिखे थे शैली शैलेंद्र ने, धुन बनाई थी राम लक्ष्मण ने।
1: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
2: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
1: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: सुर सविता कार्यक्रम में अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, उसे हमने फिल्म 1942 लव स्टोरी से लिया है। कुमार शानू और कविता कृष्णामूर्ति की आवाजें हैं, गीत जावेद अख्तर का, संगीत राहुल देव बर्मन का।

कुमार शानू और कविता कृष्णामूर्ति की आवाजों में आप सुन रहे थे जावेद अख्तर की गीत रचना, धुन बनाई थी राहुल देव बर्मन ने, फिल्म का नाम था 1942 ए लव स्टोरी। सुरसरिता कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं बेताब फिल्म का एक गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार आरडी बर्मन, गायक कलाकार हैं शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर।

ये दो आवाजें थीं शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम था बेताब। इसके साथ ही सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरसरिता समाप्त करने की विशेष कुमार शर्मा को अनुमति दीजिए। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित भीमसेन जोशी का ख्याल गायन। प्रस्तुत है आपका गाया राग रामकली।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। ख्याल गायन में आज कलाकार थे पंडित भीम सेन जोशी और राग था रामकली। सुबह के 11 बज चुके हैं, अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम आज के कलाकार।

और आज हम बात करेंगे हिंदी फिल्म संगीत के उस अनमोल रत्न की, जिनका नाम लेते ही सुरों की सादगी, गहराई और आत्मीयता याद आ जाती है। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं महान संगीतकार जयदेव की। फिल्मी संगीत में कई संगीतकार आए जिन्होंने एक से बढ़कर एक धुनें बनाई, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो भीड़ से अलग अपनी पहचान बनाते हैं। जयदेव उन्हीं विरले संगीतकारों में से एक थे। उन्होंने कभी लोकप्रियता की दौड़ नहीं लगाई, बल्कि संगीत की गुणवत्ता को अपना सबसे बड़ा लक्ष्य बनाया। तो अब आइए सुनते हैं इनके संगीत से भरा हुआ एक प्यारा सा नगमा।

0: बचपन से ही संगीत के प्रति उनका लगाव इतना गहरा था कि एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने फिल्मों में जो अभिनेता बनने की भी कोशिश की, लेकिन किस्मत उन्हें कैमरे के सामने नहीं बल्कि संगीत की दुनिया में ले आई। उन्होंने महान संगीतकार उस्ताद अली अकबर खान से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली। यही वजह थी शायद कि उनकी धुनों में भारतीय संस्कृति, भारतीय शास्त्रीय संगीत की मिठास, लोकगीत की सादगी और भावनाओं की गहराई साफ महसूस होती है। जयदेव के लंबे समय तक एक महान संगीतकार जो है सचिन देव वर्मन यानी एसजी वर्मन के सहायक के रूप में भी काम करने का नाम आता है। इसी दौरान उन्होंने संगीत की बारीकियों को बहुत करीब से सीखा, बहुत करीब से जाना और बाद में उन्हें स्वतंत्र संगीतकार के रूप में काम करने का अवसर भी मिला, तो उन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बना ली। तो आइए अब सुनते हैं उन्हीं के संगीत का एक और नगमा।
1: दीवाना शहर में,
2: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।

दोस्तों, कार्यक्रम आज के कलाकार में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं संगीतकार जयदेव की। 3 अगस्त यानी आज ही के दिन 1919 को केन्या के नैरोबी में जन्मे जयदेव का बचपन भारत में ही बीता था।

श्रोताओं, अगर जयदेव की फिल्मों की बात करें तो हम दोनों, मुझे जीने दो, रेशमा और शेरा, गमन, घरौंदा, आलाप और अनकही जैसी फिल्मों का संगीत आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में बसता है। फिल्म हम दोनों के गीत अभी ना

रेशमा और शेरा, गमन, घरौंदा, आलाप और अनकही जैसी फिल्मों का संगीत आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में बसता है। फिल्म हम दोनों के गीत अभी ना जाओ छोड़कर और मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया और अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम आज भी सदाबहार गीतों की सूची में शामिल है। इन गीतों की सबसे खूबी यही है कि इन्हें सुनते हुए ऐसा लगता है जैसे संगीत सीधे दिल से निकलकर दिल तक पहुंच रहा हो और ऐसे ही एक प्यारा सा नगमा पहुंच रहा है आप तक इन्हीं के संगीत का दिया हुआ।

कभी अनावश्यक शोर नहीं होता था। कम वाद्य यंत्रों के साथ भी वे ऐसा जादू रच देते थे कि श्रोता गीत में पूरी तरह खो जाते थे, और यही कारण है कि उनकी संगीत समय के साथ पुराना नहीं हुआ बल्कि और भी अधिक मूल्यवान हो गया और भी अधिक दिलों में बसने लगा। जयदेव को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है और उनके संगीत कौशल का प्रमाण भी। और भी बातें होंगी, अभी के लिए सुनते हैं उन्हीं का एक और गीत जो उन्हीं का संगीत दिया हुआ है, जिसमें

श्रोताओं, जयदेव नए और प्रतिभाशाली गायकों को अवसर देने के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने कई ऐसी आवाजों को मंच दिया जो आगे चलकर भारतीय संगीत जगत की पहचान बनी। उनकी सोच हमेशा यही रही कि अगर गीत अच्छा है, अगर धुन सच्ची है और गायक भाव के साथ गा रहा है, तो वह गीत जरूर लोगों के दिलों तक पहुंचेगा। और बात करें उनके संगीत रचना की, तो उनकी संगीत रचना में

जनवरी 1987 उस दिन के जयदेव जी इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनकी बनाई धुनें आज भी हमारे बीच जीवित हैं। जब कोई सच्चा संगीत प्रेमी उनके गीत सुनता है, उसे एहसास होता है कि अच्छा संगीत कभी पुराना नहीं होता। तो आइए आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम सुनते हैं जयदेव की कुछ अमर रचनाएं, जिन्होंने हिंदी फिल्म संगीत को एक नई ऊंचाई दी। हर गीत अपने साथ एक कहानी, एक भावना और एक खूबसूरत एहसास लेकर आता है।

मैं हूं आपकी रेडियो साथी, फिलहाल इजाजत चाहती हूं और सुनते रहिए सुरों का ये खूबसूरत सफर जयदेव की यादगार संगीत के साथ। नमस्कार।

श्रोताओं, आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। आप सुन रहे हैं कुछ बातें कुछ गीत और मैं हूं आपकी अपनी रेडियो साथी। दोस्तों, आज यानी 3 अगस्त और यहां पे 1 अगस्त से शुरू हुआ है विश्व स्तनपान सप्ताह। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक जो हर साल मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है लोगों को यह बताना कि माँ का दूध सिर्फ भोजन नहीं बल्कि नवजात शिशु के लिए प्रकृति का सबसे अनमोल उपहार है। कहते हैं माँ की गोद बच्चे की पहली दुनिया होती है और माँ का दूध उसका पहला अमृत। यही अमृत बच्चे को जीवन की सबसे मजबूत शुरुआत देता है। जन्म के तुरंत बाद जो गाढ़ा पीला दूध निकलता है उसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है। इसे बच्चे का पहला टीका भी माना जाता है क्योंकि इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो नवजात को कई तरह के संक्रमणों को बचाने में मदद करता है। इसलिए जन्म के पहले घंटे के भीतर ही बच्चे को स्तनपान कराना बहुत आवश्यक माना जाता है। अब आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में आपका फिर से स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं माँ का दूध शिशु के लिए अमृत समान। श्रोताओं, विशेषज्ञों की सलाह है कि जन्म से लेकर 6 महीने तक शिशु को केवल माँ का दूध ही दिया जाए और इस दौरान पानी, शहद, घुट्टी या कोई अन्य आहार देने की आवश्यकता नहीं होती है। माँ का दूध ही बच्चे की प्यास भी बुझाता है और सभी पोषण संबंधी जरूरतें भी पूरी करता है। माँ के दूध में प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले तत्व बिल्कुल सही मात्रा में मौजूद होते हैं। यही कारण है कि स्तनपान करने वाले बच्चों में कई बीमारियां, उनका खतरा अपने आप कम हो जाता है और उनका शरीर और मानसिक रूप से भी बेहतर विकास होता है। लेकिन क्या केवल बच्चे को ही इसका लाभ मिलता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके साथ साथ स्तनपान कराने वाली माँ के लिए भी ये उतना ही लाभकारी है। इससे प्रसव के बाद शरीर को सामान्य स्थिति में आने में मदद मिलती है, कई बीमारियों का जोखिम भी कम हो जाता है और माँ और शिशु के बीच भावनात्मक जुड़ाव भी गहरा हो जाता है। तो अब आइए माँ की ममता भरा एक और गीत सुनते हैं।

श्रोताओं, आज की तेज रफ्तार जिंदगी में कई बार कामकाजी माताओं को स्तनपान जारी रखने में कठिनाइयां आती हैं। ऐसे समय में परिवार, कार्यस्थल और समाज का सहयोग बेहद जरूरी है। अगर घर के सदस्य और कार्यस्थल पर वाले जो सदस्य हैं वो सब माँ का साथ दें तो वह अपने बच्चे को बेहतर पोषण दे सकती है। आखिर स्वस्थ बच्चे ही तो स्वस्थ समाज और मजबूत भविष्य की नींव होते हैं। विश्व स्तनपान सप्ताह में हमें यही संदेश मिलता है कि स्तनपान केवल माँ की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है। जागरूकता, सहयोग और सही जानकारी के माध्यम से हम हर बच्चे को जीवन के स्वस्थ शुरुआत दे सकते हैं। तो आइए इस विश्व स्तनपान सप्ताह पर हम सभी यह संकल्प लें कि माँ और शिशु के स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएंगे और स्तनपान के प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ावा देंगे। तो इसी सुंदर संदेश के साथ अब समय है एक ऐसे गीत का जो माँ के स्नेह, ममता और उसके निस्वार्थ प्रेम को सलाम करता है।

नमस्कार श्रोताओं, एक बार फिर से स्वागत है समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत का। आप सुन रहे हैं और अब हम बात करने वाले हैं जल ही जीवन है पे। आज विडंबना है कि जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, उसी जल को बचाने की सबसे ज्यादा जरूरत है हमें आज। बारिश हर साल होती है, लेकिन उसका अधिकांश पानी जो है वो नदियों में बह जाता है, समुद्र तक चला जाता है। अगर हम इस वर्षा जल को सहेज लें तो न केवल भूजल का स्तर बढ़ेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पानी की कमी काफ़ी हद तक दूर हो सकती है। इसी सोच का नाम है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी वर्षा जल संचयन। इस टॉपिक पे और भी करेंगे बात इस प्यारे से गाने के बाद।

श्रोताओं, महात्मा गांधी का एक प्रसिद्ध विचार है, प्रकृति हर मनुष्य की आवश्यकता पूरी कर सकती है लेकिन किसी के लालच के नहीं। यह कथन हमें याद दिलाता है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण केवल सरकार का ही नहीं बल्कि हम सब की साझा जिम्मेदारी है। दोस्तों, जरा सोचिए, बारिश की हर बूंद अगर जमीन में समा जाए तो सूखे कुएं फिर से भर सकते हैं, खेतों में हरियाली लौट सकती है और पानी के लिए होने वाला संघर्ष काफी कम हो सकता है। आज देश के कई गांव और शहर वर्षा जल संचयन को अपनाकर मिसाल बन चुके हैं। स्कूलों, सरकारी भवनों और घरों की छत पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं, जिससे लाखों लीटर पानी हर साल बचाया जा रहा है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते थे, यदि हम आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य देना है हमें, तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण आज से ही करना होगा। और यह केवल एक संदेश ही नहीं बल्कि हम सभी के लिए संकल्प है। पानी बचाने के लिए बड़े बड़े प्रयास तो जरूरी नहीं, ऐसा तो नहीं है कि हमें बड़े बड़े प्रयास ही करने पड़े, पर छोटी छोटी आदतों से भी हम बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जैसे घर की छत का वर्षा जल टैंक या सोखता गड्ढे में पहुंचाना, बेवजह बहते नालों को तुरंत बंद करना और पेड़ लगाना, जल स्रोतों को स्वच्छ रखना, अपने आसपास के लोगों को जल संरक्षण के लिए प्रेरित करना। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अब आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: शब्द
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
4: और अजीत का भी नमस्कार। कोका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है।
3: वो लिखते हैं, रेडियो उद्घोषक और श्रोता का रिश्ता आवाज से शुरू होकर विश्वास, आत्मीयता और दिलों के जुड़ाव तक पहुंचता है। इसी आत्मीयता को हम उमंग कार्यक्रम में देख सकते हैं। यही जुड़ाव बना रहे।
4: जी हाँ श्रोताओं, यही जुड़ाव बना रहे, हमारी भी यही इच्छा है। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
3: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी सुनवाई जाती है। इसी कड़ी में श्रोता संवाद में सर अजीत जी और प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल जी से मनोदर्पण विषय पर बातचीत सुनी और पसंद आई।
4: आगे आपने लिखा है, कार्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी सराहनीय लगी। इस जानकारी को सुनकर विद्यार्थी, शिक्षक एवं अभिभावक निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे। श्रोता संवाद में मानसिक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण जानकारी सुनवाने के लिए हम प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल जी एवं सर अजीत जी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
3: एक निवेदन भी करते हैं कि ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित करें। किसी कारणवश ये कार्यक्रम श्रोता सुनने से वंचित रह गए हों तो वो भी इस कार्यक्रम को सुन सकें और कार्यक्रम सुनकर लाभ भी उठा सकें। एक बार पुनः आभार, शुक्रिया, धन्यवाद।
4: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका और आदित्य जंघेल के साथ साथ अंजलि जंघेल जी का। आप लिखते हैं कि रेडियो की पहचान उसकी आवाज नहीं बल्कि श्रोताओं के दिलों से उनका जुड़ा।

0: है। और अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से, देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, पुष्कर, लेहान जिज्ञासा, विराट तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
1: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव लिखते हैं,
0: नियत स्टेशन से अगर हम उमंग कार्यक्रम नहीं भी सुन पाते हैं तो किसी न किसी स्टेशन से जरूर सुन लेते हैं
1: जी,
0: क्योंकि ये आसपास के किसी न किसी स्टेशन से अलग अलग समयों में प्रसारित होता रहता है।
1: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
0: तो श्रोताओ, हमारा पहला प्रश्न था, भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार या सम्मान क्या है?
1: इसका उत्तर है साथियों, भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार या सम्मान है दादा साहब फाल्के पुरस्कार।
0: अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, गांधी जी के निजी सचिव का नाम क्या था?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, श्री महादेव देसाई महात्मा गांधी जी के निजी सचिव थे। वे महान देशभक्त और गांधी जी के अनुयायी थे।
0: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था श्रोताओं कि बिजली बल्ब के आविष्कारक थॉमस एडिसन अपने प्रयोगों में लगभग कितनी बार असफल हुए थे?
1: इसका उत्तर है लगभग 10,000 बार
0: जी। और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। श्रोताओं, हमने आपसे पूछा था अंग्रेजी शासन के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज किस नाम से जाना जाता है?
1: अंग्रेजी शासन के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या IAS के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसे कहते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा।
0: और श्रोताओं, अब सुनिए हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, अपनी किस पुस्तक में APJ अब्दुल कलाम जी ने अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में लिखा है?
1: साथियों, पुस्तक का नाम है विंग्स ऑफ फायर। इस पुस्तक में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार उनके शिक्षक ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।
0: तो श्रोताओ, ये थे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था?
0: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर भी यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
0: YouTube में जाकर टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। आपको वहाँ सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करके सुनिए।
1: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पुस्तक भी डाउनलोड कर सकते हैं।
0: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर जैसा कि आप जानते हैं, और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। श्रोताओ, संदेश जरूर भेजिएगा
1: जी। आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, इससे आपको CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी।
0: तो आइए सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। श्रोताओ, हमारा पहला कार्यक्रम है मेरी माँ।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है। ये पाठ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी और शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी की जेल डायरी का एक अंश है, जिसमें उन्होंने अपने चरित्र निर्माण में अपनी माताजी की भूमिका को सराहा है।
0: मेरी माँ, मेरी

0: सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
1: राम प्रसाद बिस्मिल के मुख से निकली इन पंक्तियों से भला कौन परिचित नहीं होगा। ये वो गीत है जिसे

0: लगभग पूरा भारत गाता था।
1: सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।
0: इस गीत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशवासियों की रग रग में क्रांति की ज्वाला भर दी थी। इस गीत को गाते गाते न जाने कितने स्वाधीनता सेनानी हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए।
2: उनका नाम था राम प्रसाद, लेकिन बिस्मिल के उपनाम से वो बहुत प्रसिद्ध हुए। इसी उपनाम से उन्होंने बहुत सी देशभक्ति की कविताएं और गजलें लिखी। बिस्मिल का अर्थ होता है बेचैन या घायल। राम प्रसाद बिस्मिल एक लेखक, कवि और क्रांतिकारी थे, जिनका जीवन हमेशा देश के असंख्य युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।
0: वो कहते थे,
3: मेरा रिश्ता क्रांति और कलम दोनों से है।
2: बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के एक गांव में मुरलीधर और मूलमती के यहां हुआ था।
4: सरिया खेलते हैं किसन रामा दूसरे पिसन।
2: वो बचपन से ही बहुत नटखट प्रवृत्ति के थे। उनका मन पढ़ाई में कम और खेल कूद में ज्यादा लगता था। उन्हें तैराकी, कुश्ती जैसे खेल बहुत पसंद थे।
0: अपने बचपन और शिक्षा के बारे में बताते हुए उन्होंने अपनी आत्मकथा मेरे निज दिनों की छटा में लिखा है।
3: जब मैं कोई 7 वर्ष का हुआ तो पिताजी ने स्वयं ही मुझे हिंदी अक्षरों का बोध कराया और फिर एक मौलवी साहब के मकतब में उर्दू पढ़ने के लिए मुझे भेज दिया गया। वहां से मैंने 4th जमात पास की।
2: समय का पहिया चलता गया। उनके पिताजी पर स्वाधीनता संग्राम का बहुत प्रभाव था और शायद इसलिए वो अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे, लेकिन उनकी माता के हस्तक्षेप के कारण उन्हें अंग्रेजी पढ़ने के लिए मिशन स्कूल भेज दिया गया।
0: बिस्मिल के जीवन में यदि हम गहराई से झांकें, तो पता चलता है कि वो अपनी माता से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने जीवन में अपनी माता की भूमिका को बहुत अहम माना है। वो मानते हैं कि उनके व्यक्तित्व के निर्माण में उनकी माता का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वो लिखते हैं,
3: 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। उस समय वे नितांत अशिक्षित ग्रामीण कन्या के समान थी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष के बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक उनमें खुद ही पैदा हुआ। मोहल्ले की सखी सहेली जो भी घर पर आया करती थी, उनमें जो शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्षर बोध करती। परिश्रम के फल से थोड़े ही दिनों के बाद वे देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी।
2: साथियों, उन दिनों समाज द्वारा स्त्री शिक्षा पर बिल्कुल जोर नहीं दिया जाता था। इसके बावजूद इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिस्मिल की माताजी आज भी सब महिलाओं और कन्याओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा और आदर्श हैं।
3: माँ तो माँ होती है बस। वैसे मेरी माता मेरे धर्म कार्यों और शिक्षादी में बड़ी सहायता करती थी। वे प्रातः 4 बजे ही मुझे जगा दिया करती थी। मैं नित्य प्रति नियम पूर्वक हवन किया करता था और यहीं से मेरी रुचि अध्यात्म और सत्य निष्ठा के प्रति बढ़ी। सच कहता हूं, यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो शायद मैं भी साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता और सत्य के प्रति मेरा इतना अधिक अनुराग न होता।
0: अपनी सत्य निष्ठा के बारे में उन्होंने

0: अपनी आत्मकथा में वर्णन किया है।
1: एक बार पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वो मुझसे करा लें। आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया, ये तो धर्म के विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मामला खारिज हो जाएगा, लेकिन मुझ पर कोई प्रभाव ना हुआ और ना ही मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में मैं हमेशा सत्य का आचरण करता था और चाहे कुछ हो जाए मैं सत्य बात कह देता था।
2: तो ऐसी थी सत्यवादिता राम प्रसाद बिस्मिल की, और इस शिक्षा की नींव डाली थी उनकी माता जी ने।
0: पराधीन भारत में अपनी पीढ़ी के कई

0: तो ऐसी थी सत्यवादिता राम प्रसाद बिस्मिल की, और इस शिक्षा की नींव डाली थी उनकी माता जी ने।
1: पराधीन भारत में अपनी पीढ़ी के कई युवाओं की तरह राम प्रसाद बिस्मिल भी अंग्रेजी शासन के अत्याचारों से परेशान थे। माता की शिक्षा, श्रेष्ठ गुरुजनों की प्रेरणा और अनेकानेक देश प्रेम और अध्यात्म से ओतप्रोत साहित्य के अध्ययन ने उनके मन में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भर दी थी।
0: उन्होंने बहुत कम उम्र में ही अपना जीवन देश की आजादी की लड़ाई में समर्पित करने का फैसला कर लिया। आठवीं कक्षा तक अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद राम प्रसाद बिस्मिल बहुत कम उम्र में ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बन गए थे।
1: अगस्त 1925 को हुए काकोरी रेल कांड में वो अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए। जेल में ही उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी और अंग्रेजों से छिपकर उसके अंशों को जेल से बाहर भेजते रहे।
0: उनकी आत्मकथा का शीर्षक था मेरे निज जीवन की छटा। आत्मकथा को उनके मित्रों ने प्रकाशित करवा दिया।
1: गोरखपुर जेल में लिखी गई आत्मकथा में उन्होंने अपनी माता को बड़े ही मार्मिक शब्दों में संबोधित किया है।
2: जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला। इस जन्म में तो क्या, मैं अनेक जन्मों में भी प्रयत्न करूं तो तुमसे ऋण नहीं हो सकता। मां, तुम्हारी ही दया से तो मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी मां, पर मुझे विश्वास है तुम ये सब समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलिवेदी की भेंट कर गया और तुम्हारी कोख कलंकित न की। अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा तुम्हारा बेटा। मां, जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा ना, तो उसके किसी पन्ने पर तुम्हारा नाम भी

काकोरी रेल कांड में उन पर मुकदमा चला और उनके साथ तीन और क्रांतिकारी साथियों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। 19 दिसंबर 1927 को उन्हें गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई।

शंकरा। राग शंकरा की उत्पत्ति बिलावल थाट से हुई है। इसके आरोह में ऋषभ और मध्यम अर्थात रे और म तथा अवरोह में केवल मध्यम यानी म वर्जित स्वर है। परंतु राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए ऋषभ अर्थात रे का प्रयोग कर्ण स्वर के रूप में किया जाता है। आरोह में 5 और अवरोह में 6 स्वर प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व शाड़व है। इसका वादी स्वर गंधार यानी ग है और संवादी स्वर निषाद अर्थात नी है। इसका गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। राग शंकरा के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार है। सबसे पहले

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम मेरी माँ, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम राग शंकरा।
1: इस कार्यक्रम में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध राग शंकरा के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। इसके स्वर विस्तार, आरोह अवरोह, गायन समय और स्वर मालिका के बारे में भी बताया गया है।

राग शंकरा की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है, इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग शंकरा की स्वर मालिका की स्थाई।

शंकरा की स्वर मालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वर मालिका पर आधारित एक रचना। बोल है हम आशा का दीप जलाएं। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम राग शंकरा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
0: सौम्या मलिक,
1: जगबंधु और मुकुल के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो साथी अंजलि और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा फिल्मी संगीत कार्यक्रम नए तराने। आज के इस सफर में सुनेंगे सुपरहिट गीत जिन्होंने संगीत प्रेमियों के दिल में खास जगह बनाई। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले गीत से, जो है फिल्म जब वी मेट से, जिसे शुरू से सजाया है मोहित चौहान ने, शब्दों में पिरोया है इरशाद कामिल ने और संगीत से सजाया है प्रीतम ने।

साल 2007 में आई फिल्म जब वी मेट सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि इसने युवाओं की सोच और रिश्तों को भी नए अंदाज में पेश किया था। फिल्म का गीत आज भी रोमांटिक प्लेलिस्ट का अहम हिस्सा है। मोहित चौहान की सादगी भरी आवाज और प्रीतम का मधुर संगीत इस गीत को और भी सुरीला बना देता है। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत जो हमने लिया है फिल्म कल होना हो से, और जिसमें सुर हैं सोनू निगम के, संगीत है शंकर एहसान लॉय का और शब्द हैं जावेद अख्तर के।

दोस्तों, कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं। कल हो ना हो, ऐसा ही एक गीत है जो जिंदगी को हर पल जीने का संदेश देता है। सोनू निगम की भावपूर्ण आवाज और जावेद अख्तर के शब्द आज भी हर पीढ़ी के दिल में बसते हैं। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जो है फिल्म ओम शांति ओम से। आवाज है केके की, धुन है विशाल शेखर की और शब्द हैं विशाल ददलानी के।

अगर के सबसे यादगार गीतों की बात हो तो इस गीत को सबसे पहले लिया जाएगा। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण पर फिल्माया गया यह गीत पहली नज़र के प्यार की मासूमियत को बेहद खूबसूरती से बयां करता है। अब आइए सुनते हैं अगला गीत जो हमने लिया है फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी से। आवाज़ें हैं आतिफ असलम की और अलीशा चिनॉय की और संगीत है प्रीतम का, शब्द हैं आशीष पंडित के।

2009 में रिलीज हुई यह फिल्म, इसका गीत आज भी युवाओं की पहली पसंद बना हुआ है। आतिफ असलम की मखमली आवाज़ और प्रीतम का खूबसूरत संगीत इसे आज भी फ्रेश महसूस कराता है। कॉलेज फेस्ट से लेकर रेडियो तक इस गीत की लोकप्रियता बरकरार बनी हुई है। हमारा अगला गीत है फिल्म कॉकटेल से, आवाजें हैं नीरज श्रीधर, कविता सेठ की, शब्द है इरशाद कामिल के और धुन दी है प्रीतम ने।

अभी आपने सुना फिल्म कॉकटेल से ये गाना। आवाजें थी नीरज श्रीधर और कविता सेठ की, शब्द थे शाहिद कामिल के, संगीत था प्रीतम का। अब आइए कार्यक्रम का आखिरी गाना सुनते हैं फिल्म सैयारा से फहीम अब्दुल्ला की आवाज में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट पेपर लीक को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर गतिरोध के कारण आज बाधित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे। श्री राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया और कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी और हंगामा जारी रहने के कारण सभापति ने सदन को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। उधर लोकसभा की कार्यवाही भी बार बार बाधित हुई। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को पहले दोपहर 12 बजे तक और फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। लोकसभा अध्यक्ष ने कुछ विपक्षी सदस्यों द्वारा जानबूझकर किए जा रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त की और सदन की कार्यवाही जारी रखने का आग्रह किया, लेकिन गतिरोध जारी रहने पर सदन को पहले 12 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
1: विपक्ष से कई सदस्यों ने अपोज करने का नोटिस दिया है, अभी मैं उनके नाम भी पढ़ा हूँ। आप उनको मौका देंगे नहीं देंगे, आप सोचिएगा। इस तरह ये प्लेकार्ड लेके आना, पहली बार कई बार बोल चुके हैं, इट इज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द पार्लियामेंट, यू कैन नॉट डू दिस। अगर आप इसी तरह चलते हैं तो कैसे आगे चलेगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से 3 दिन की ओडिशा यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। विधानसभा की 3 सीटों पर 30 जुलाई को संपन्न हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी नीरज कुमार से आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के सत्येंद्र पटेल अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भीखा भाई रबारी और मध्यप्रदेश के दतिया में कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह भाजपा के आशुतोष तिवारी से आगे चल रहे हैं। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। कर्नाटक में आज शाम लोकभवन में 20 नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। डीके शिवकुमार ने 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके अलावा 13 मंत्रियों ने भी शपथ ली थी। आज 20 मंत्रियों के शामिल होने पर मंत्रिमंडल की अधिकतम क्षमता 34 हो जाएगी। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मानवाधिकार समूहों का आरोप है कि हताहतों की संख्या काफी बढ़ गई है। इस इलाके की मानवाधिकार परिषद की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 80 तक

0: Federation of India Assistant Secretary in the case. The court had reserved the order for today after completion of the final arguments in the case lodged by 6 women wrestlers. In Odisha, the flood situation is steadily improving with water receding in all major rivers and their tributaries, including the Mahanadi. The Hirakud Dam authorities have reduced flood water discharge after a decline in reservoir inflow. Pakistani armed forces' brutal attack on peaceful protesters continues in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Violent clashes were reported between protesters and security forces, with the Human Rights Council of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir alleging a significant rise in casualties. According to the human rights group, over 80 people were killed in the firing on protesters by security forces. Negotiations between the United States and Iran are scheduled to take place today through intermediaries. Speaking to reporters on board Air Force One, U.S. President Donald Trump confirmed that discussion channels were active. He revealed that diplomatic engagements involving Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Qatar and Iran led him to halt what was originally planned as a massive attack. President Trump further indicated that an agreement could be reached regarding the management of the Strait of Hormuz. And with that, we end this news bulletin.
1: ब्रिक्स ममालिक के एनएसओ चीफ्स की मीटिंग आज लखनऊ में मुनक़िद हो रही है। ये मीटिंग कल भी जारी रहेगी। हिंदुस्तान की सदारत में लखनऊ में मुनक़िद इस मीटिंग में ब्राजील, रूस, चीन, ईरान, यूएई समेत 11 ब्रिक्स ममालिक के नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। इस साल की ब्रिक्स सदारत का मौजू सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। मीटिंग में शुमारियात प्रोडक्शन को मजबूत करने, कौमी शुमारियात निजाम में इसलाह, डेटा की पहुंच बढ़ाने और इक्तिसादी और मंतकाई शुमारियात को मुस्तहकम बनाने पर गौर खोस होगा। इसके साथ ही प्रशासनिक डेटा की क्षमता और विकसित होते डेटा पारिस्थितिकी तंत्र में एआई की तैयारी मौजू पर दो खसूसी को प्रोग्राम भी मुनक़िद किए जाएंगे। रियासती असेंबली का मानसून इजलास आज से शुरू हो गया। सेशन की शुरुआत से कबल वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने सहाफियों से कहा कि यह सेशन हमारे लिए बेहद खसूसी सेशन है। गरीब, किसान, नौजवान, खवातीन, उनसे जुड़े मुद्दे पर बहस करने, जायजा लेने और नतायज तक पहुंचने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म मुकन्ना होती है। हर अवामी नुमाइंदा अपने हल्के की दिक्कत रख सकता है। समाजवादी पार्टी के लीडर शिवपाल सिंह ने सहाफियों से कहा कि हुकूमत ने कम मुद्दत का सेशन बुलाया है, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवामी मफाद के मुद्दों से बचना चाहती है। दरियसना पार्लिमानी अमूर के वजीर सुरेश खन्ना ने कहा कि इस इख्तलाफ के पास कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत कानून मुत्तफिक तरीके से हर पहलू पर काम कर रही है। यूपी असेंबली में आज ताजियती पेशकश के बाद ऐवान को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। यूनेस्को की आलमी वर्षा कमेटी ने सारनाथ को मंजूरी देकर मजहबी सयाहों को तोहफा दिया है। मंजूरी का मामला 28 सालों से जेर गौर था। भगवान बुद्ध की जाय मकाम सारनाथ को यूनेस्को की आलमी वर्षा फेहरिस्त में शामिल करने से सारनाथ मुल्क का 45वां और उत्तर प्रदेश का 4था आलमी वर्षा मकाम बन गया है। जनूबी कोरिया के बुसान शहर में मुनद यूनेस्को की आलमी वर्षा कमेटी ने 48वें सेशन में 25 जुलाई 2026 को यह ऐलान किया। इससे कबल उत्तर प्रदेश के ताजमहल, आगरे किला और फतेहपुर सीकरी आलमी वर्षा फेहरिस्त में शामिल किए गए थे। आज सावन का पहला सोमवार है। कांवड़ यात्रा और शिव मंदिरों में अकीदतमंदों की भीड़ के मद्देनजर पूरी रियासत में हिफाजत के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। सुबह से ही अकीदतमंदों की भीड़ शिव मंदिरों के बाहर जमा है। लखनऊ समेत कई जिला में हो रही बारिश के बावजूद अकीदतमंदों के जज्बे में कोई कमी नहीं है। अकीदतमंद लाइन लगाकर दर्शन पूजन कर रहे हैं। हापुड़, चित्रकूट, वाराणसी, बाराबंकी के मशहूर लोधेश्वर महादेव मंदिर, अयोध्या, मेरठ, फरुखाबाद, शामली, बरेली, महोबा, गौतमबुद्ध नगर समेत दीगर जिला में भी अकीदत भगवान शिव पर जलाभिषेक कर दुआ कर रहे हैं। साथ ही गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा, फूल, दूध और दीगर अशिया चढ़ा रहे हैं। अमरोहा में श्रावण मास में पड़ने वाले हर दुशंबे और हफ्ते को दर्जा 1 से दर्जा 8 तक तातील का ऐलान किया गया है। दरियसना संभल में आज कांवड़ियों की भीड़ के मद्देनजर सभी स्कूलों में आज तातील का ऐलान किया गया है।
2: सावन के पहले सोमवार पर पवित्र नदियों से जल भरकर प्रमुख शिवालयों में जलाभिषेक करने पहुंचे कांवड़ियों के लिए प्रशासन की तरफ से विशेष इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने कई जगहों पर रूट डायवर्जन किया है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ और भगवान राम की नगरी अयोध्या में श्रद्धालु श्रद्धा और भक्ति के माहौल में जलाभिषेक कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ।

0: ग्राम में सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए हैं। उससे जुड़े मार्गों पर 289 सीसीटीवी कैमरों के साथ 44 अतिरिक्त कैमरे लगाए गए हैं।
1: दौलते मुश्तरका खेल का ग्लासगो में एक अजीम तकरीब में अख्तिताम पजीर हो गया। अख्तितामी तकरीब में वंदे मातरम के तराने के साथ हिंदुस्तान की सकाफती तनु और रिवायत का मजाहरा किया गया। जलसे में 100वीं दौलते मुश्तरका खेलों की मेजबानी के लिए हिंदुस्तान को परचम और कमान सौंपी गई। 2030 के दौलते मुश्तरका खेल अहमदाबाद में होंगे। वाजिर है कि हिंदुस्तान ने ग्लासगो दौलते मुश्तरका खेलों में 13 सोने, 17 चांदी और 9 कांसे के तमगे हासिल किए और मेडल टेबल में 4थे मकाम पर रहा। उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के जरिए मुनक़िद किए जाने वाले पेट 2026 की दरख्वास्त का अमल आज से शुरू हो गया है। कमीशन के मुताबिक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और दरख्वास्त का अमल 1 सितंबर 2026 तक चलेगा। दरख्वास्त में तरमीम और फीस जमा करने की आखिरी तारीख 8 सितंबर 2026 मुकर्रर की गई है। दरख्वास्त से कबल वन टाइम रजिस्ट्रेशन लाजमी है।

0: के बख्शा थाना हलके के कुलहना मऊ में देर रात पेश आए एक सड़क हादसे में दो अफराद जां बहक हो गए जबकि तीन दीगर जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार कार एक खड़े ट्रक में जा लड़ी। कार में सवार सभी पांच अकीदतमंद काशी विश्वनाथ से दर्शन करके वापस लौट रहे थे। सभी उन्नाव के बाशिंदे थे। जख्मियों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है जबकि पुलिस ने लाशों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नष्ट किया जाएगा।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, अब समय हो रहा है महिला श्रोताओं का कार्यक्रम घर संसार का।

घर संसार कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी बहनों को प्रगति का प्यार भरा नमस्कार। रिमझिम गिरती बारिश की बूंदें, हवाओं में मिट्टी की सौंधी सी खुशबू और मन में एक अजीब सी उमंग। जी हाँ बहनों, आप समझ ही गई होंगी कि हम बात कर रहे हैं शिव की आराधना के सावन मास की। सावन आते ही जैसे पूरी धरती हरा घूंघट ओढ़ लेती है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। यूं तो साल में 12 महीने आते हैं, लेकिन बहनों सावन की तो बात ही अलग है। यह सिर्फ एक मौसम नहीं बल्कि हमारी भावनाओं, आस्था और खुशियों का प्रतीक है। जब सावन की बात होती है तो सबसे पहले हमारे मन में भगवान शिव का ध्यान आता है। रुद्राभिषेक, सावन के सोमवार के व्रत, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव की गूंज हर मंदिर में सुनाई देती है। बहनों पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था। सृष्टि को बचाने के लिए महादेव ने समुद्र मंथन से निकले विष का पान किया था। इसी ताप को शांत करने के लिए उन पर सभी देवताओं ने जल चढ़ाया और तभी से शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। बेलपत्र और दूध भी चढ़ाया जाता है। सावन का महीना केवल भक्ति का ही नहीं, त्योहार और रिश्ते जोड़ने का भी महीना है। सावन आते ही हरियाली तीज की रंगत जमती है। हाथों में मेहंदी रची जाती है, बागों में झूले पड़ते हैं, चूड़ियों की खनक सुनाई देती है, घेवर और फैनी की मिठास घर घर पहुँचती है। मैनू कहते हैं कि माता पार्वती ने शिव को पति रूप में पाने के लिए इसी महा कठोर तपस्या की थी। कुछ भक्तगण कांवर यात्रा भी करते हैं। बहनों मुझे पूरी उम्मीद है बल्कि भरोसा है कि भगवान शिव की आराधना के इस सावन मास में आप झूला भी झूलेंगी, भक्ति भाव से सराबोर भी रहेंगी और भाई बहन का प्रिय त्यौहार रक्षाबंधन भी पूरे प्रेम से मनाएंगी। तो आइए अब सुनवाते हैं आपको सावन का ही एक गीत।

0: शोर।
1: अरे बाबा, शोर नहीं, शोर, शोर, शोर।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: बहनों, स्तनपान शिशु और माता दोनों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यह सर्वोत्तम पोषण, रोग प्रतिरोधक क्षमता और गहरा भावना

0: भावनात्मक रिश्ता प्रदान करता है। इसके बारे में हम आपको और जानकारी आज की वार्ता के माध्यम से देंगे, जिसका शीर्षक है स्तनपान के प्रति जागरूकता, जिसमें कि दीपाली दुबे आपको डॉक्टर अन्विता जैन से बातचीत कर और ढेर सारी जानकारी इसके बारे में प्रदान करेंगी। तो आइए सुनते हैं वार्ता स्तनपान के प्रति जागरूकता।
1: श्रोताओं, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय के साथ उपस्थित हुए हैं और अवसर है विश्व स्तनपान सप्ताह, जो हम 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मना रहे हैं। और इसका उद्देश्य है कामकाजी महिलाओं को स्तनपान संबंधी जो भी बातें हैं, स्तनपान संबंधी अधिकार है, उसके प्रति जो भी जागरूकता है, उस विषय को हम बहुत अच्छी तरह से विस्तार से जानेंगे। और इसके लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अन्विता। तो सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में स्वागत है।
2: थैंक यू।
1: डॉक्टर साहब कहते हैं कि एक स्त्री संपूर्ण तभी होती है जब वो माँ बनती है, और जब वो सर्वप्रथम माँ बनती है तो बच्चे को लेकर बहुत भावुक होती है, उसकी देखभाल को लेकर, उसके अच्छे खान पान को लेकर। और हमारी जो बहनें पहली बार मां बन रही हैं, तो स्तनपान प्रक्रिया से वो बिल्कुल ही अनभिज्ञ होती हैं। तो ऐसे में आप उनका मार्गदर्शन कैसे करती हैं?
2: सबसे पहले जो माँ बनती है उसके लिए ऑब्वियस है कि वो स्त्री जो है वो बहुत ज्यादा चिंतित होगी, उसमें वो काफी ज्यादा एंशियस होगी। तो हम ट्राई करते हैं कि डिलीवरी से पहले ही जैसे थोड़ा बहुत काउंसलिंग करे, उन्हें बताए, उन्हें कॉन्फिडेंस दे कि वो ही अपने बच्चे का सबसे अच्छे से ख्याल रख सकती है। बच्चा पैदा होने के बाद में उनके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो वो आराम से बच्चे को हैंडल करके दूध पिला पाएंगी। और जैसे उन्हें बताए कि क्या क्या फायदे होते हैं, जिससे उनका जो आत्मविश्वास है, जो उनके अंदर डाउट्स है वो क्लियर हो। जैसे जो तन पान होता है, जो ब्रेस्ट मिल्क होता है, वो ही सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है बच्चे के लिए। तो उन्हें बताया कि वो ही सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, वही सब चीजों का काम करेगा, वही खाना है, वही पानी है, वही एंटीबायोटिक है, वही दवाई है, तो उससे उनको हेल्प करे। और पैदा होने के बाद में भी जैसे हम ट्राई करते हैं कि जो वहां पे नर्सेज होती है या फिर हम एज अ डॉक्टर की उनको बच्चे को पकड़ना सिखाए, फिर जैसे बच्चे को कैसे स्तन पे लगाना है वो सिखाए, तो उसके लिए फिर धीरे धीरे जब वो सीख जाती है तब हम ट्राई करते हैं कि उनको डिस्चार्ज करे एंड उसके बाद में उनको रेगुलर फॉलोअप में बुलाते जाए, जिससे उन्हें लगे कि हाँ उनका बच्चा जो है वो अच्छे से ग्रो कर रहा है, उनके बच्चे का वजन अच्छे से बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे करके फिर वो सीख जाते हैं।
1: कहने का मतलब ये बहुत आसान प्रक्रिया है और थोड़ी सी जागरूकता और सूझबूझ रखने से आसानी से एक माँ जो है अपने बच्चे का पालन और स्तनपान को अच्छे से करा सकती है। और देखिये डॉक्टर साहब, WHO के अनुसार अगर हम माने तो नवजात शिशु के लिए जो पीला गाढ़ा चिपचिपा युक्त जो दूध होता है वो सर्वोत्तम आहार माना जाता है। तो आपको क्या लगता है कि आज महिलाएं इसके बारे में जागरूक हैं?
2: तो जो पहला पीला गाढ़ा दूध होता है उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, जो सबसे पहले जब डिलीवरी होती है तब आता है, तो उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है और जो विटामिन ए की मात्रा होती है वो भी नॉर्मल दूध से सबसे ज्यादा उसमें होती है। वो बच्चे के लिए एज एंटी एलर्जी एंड एज एंटीबायोटिक जो है वो काम करता है। एंड बेबी का पैदा होने के बाद में जो पूरा गट सिस्टम होता है, जो पेट होता है, उन सबको साफ करने में भी हेल्प करता है, तो वो ओवरऑल मैच्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो वो जैसे बहुत लोग उसको फेंक देते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि वो अशुद्ध है, तो वो एक मिथ है, तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो पिलाना ही चाहिए बच्चे को।
1: और इसके लिए डॉक्टर से परामर्श लेना बहुत जरूरी है।
2: पहले तो देखते थे कि जो फादर्स होते थे वो भी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते थे, तो आजकल हमने देखा है कि यूजुअली दोनों पेरेंट्स जो है वो बच्चे के साथ में आते हैं, एंड अगर आप उनके ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी को भी समझाओ तो वो समझ जाते।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि समय बहुत तेजी से बदला है, बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने आई हैं, और आज जो महिलाएं हैं वो कामकाजी हैं, तो कामकाजी होने के नाते उनका जो है खान पान जो है संतुलित नहीं है, उनकी दिनचर्या संतुलित नहीं है, ऐसे में स्तनपान की प्रक्रिया को पूर्ण कर पाना उनके लिए टेंशन का काम हो सकता है, तो वो अन्य विकल्प का सहारा लेती हैं, जैसे मैंने ऊपर का दूध है, तो आप इसको कितना सही मानते हैं?
2: तो ऊपर का दूध मतलब हम बोलते हैं कि ये आर्टिफिशियल फीडिंग है, तो आर्टिफिशियल जैसे अब गाय का दूध हो गया या भैंस का दूध हो गया, तो ये इतना ज्यादा सही होता नहीं है बच्चे के लिए, क्योंकि ये सबसे पहले तो माँ और बच्चे के बॉन्डिंग में इंटरफेयर करता है। तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि माँ बोलती है कि मुझे दूध ही नहीं आ रहा, तो जब बच्चा जो है वो सक करता है तब माँ का दूध जो है वो

0: ऑटोमेटिक बढ़ता है और इससे दोनों को फायदे होते हैं, बच्चे को भी फायदे होते हैं और माँ को भी फायदे होते हैं। जो हम आर्टिफिशियल फीडिंग या फिर ऊपरी दूध बोलते हैं वो अगर देंगे तो उससे बच्चे का जो आईक्यू है वो डेवलप नहीं होता। जो ओबेसिटी आजकल हम देख रहे हैं बच्चों में, उसके चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। या फिर कुछ बच्चे जो होते हैं वो कुपोषित रह जाते हैं, मतलब माल नरिश्ड बच्चे रह जाते हैं। बहुत सारे बच्चे आते हैं ओपीडी में कि उनके दस्त ही रुक नहीं रहे, उनको वो कंटिन्यू मतलब दस्त होते रहते हैं, वो पचा नहीं पाते, वो मुश्किल होता है दूध पचाना। जो माँ का दूध होता है वो बच्चे के लिए पचाना भी इजी होता है, उसमें प्रोटीन भी उसको एडिक्वेट मिल जाता है। और मैंने जैसे बताया कि इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है, तो निमोनिया के चांसेस या फिर बार बार बच्चे का बीमार पड़ना, इंक्रीज हॉस्पिटल स्टे, उससे इवेंचुअली पेरेंट्स पे इकोनॉमिक बर्डन का बढ़ना, ये सब एक विशेष साइकिल है। तो इसमें सब फंस जाते हैं। जो आपने बोला कामकाजी महिलाएं हैं, तो जैसे आजकल बोलते हैं हम एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क, वो भी एक्सक्लूसिव फीडिंग में, मतलब दूध को निकाल के रखना और फिर बाद में उसको फीड करना।
1: तो किस तरह से निकाला जा सकता है?
0: तो या तो हाथ से हम सो बोलते हैं निकालने के लिए, या तो आजकल ब्रेस्ट पंप अवेलेबल हो गए हैं जो कि मैनुअल भी है, जो काफी इकोनॉमिक भी है, एंड या फिर मशीन वाले ब्रेस्ट पंप जो है वो भी अवेलेबल है। तो उससे दूध को निकाल के हम बोलते हैं कि जैसे कटोरी चम्मच से बच्चे को पिलाओ, तो उससे थोड़ा टाइम मिल जाता है माओं को। जैसे अगर वो 5-6 घंटे के लिए बाहर जा रही हैं तो वो निकाल के तब बच्चे को फीड कर सकते हैं।
1: अच्छा, तो दूध की गुणवत्ता पर कोई असर नहीं होता है?
0: कोई असर नहीं होता है। दूध जो है वो रूम टेम्परेचर पे ही 4 से 6 घंटे तक एकदम सही रहता है, और अगर फ्रिज में रख दो तो 1 दिन तक दूध जो है वो ठीक रहता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
1: अच्छा, एक अच्छा मतलब अच्छे तरीके से बच्चे को पर्याप्त मात्रा में उसको भोजन मिल पाए दूध के रूप में, तो उसके लिए माँ के खान पान पर क्या विशेष उसको ध्यान देना चाहिए?
0: तो ऐसा बोलते हैं कि जब माँ ब्रेस्ट फीडिंग करती है तब जो नॉर्मल कैलोरी है उससे 500 से 600 कैलोरीज ज्यादा माँ जो है उसको लेना है। लेकिन बहुत लोग आते हैं बोल के कि हमारे इसने तो कहा कि चावल नहीं खाना, हमारे इसने तो कहा कि दाल नहीं खाना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ को जो चाहिए, जो नॉर्मल बैलेंस डाइट होती है, जो नॉर्मल पौष्टिक खाना होता है,
1: जिसमें दलिया मैं समझ रही हूँ कि तो बहुत अच्छा
0: दलिया
1: है।
0: रोटी सब्जी उसको जो खाना है, मतलब उसका हैप्पी रहना बहुत जरूरी है, जो कि अगेन एक अलग ही टॉपिक में चले जाते हैं फिर हम, कि फिर वो डिप्रेशन में चली जाती है। ऑलरेडी उसके ऊपर इतना प्रेशर
1: प्रेशर होता है कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है,
0: तो ऐसा कुछ नहीं है, उसको जो खाना है आराम से खाओ।
1: अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि स्तनपान को लेकर जो यंग जनरेशन है वो भी टेंशन में रहती है कि कहीं जो है ना हमारी फिटनेस पर इस पर असर पड़ रहा है या हमारी बॉडी शेप बिगड़ रही है, इसमें आप क्या कहना चाहती हैं?
0: तो जब माँ फीड करती है तो उसका खुद का भी फायदा है, ठीक है। तो हम बोलते हैं बेनिफिट्स की माँ को क्या फायदे हैं, तो माँ का जो नॉर्मल जो वेट लॉस होता है प्रेगनेंसी के बाद उसमें हेल्प करता है, जो ब्लीडिंग होती है वो कम हो जाती है। दूसरा, जो फीड करने के बाद में रिलैक्सिंग हार्मोन सेक्रीट होते हैं जिससे उसकी जो नींद है वो पूरी हो जाती है, क्योंकि हर 2-3 घंटे में उठ के दूध पिलाना होता है, तो वो 2-3 घंटे में वो हार्मोन्स हेल्प करते हैं कि वो पूरी तरीके से रिलैक्स करे। दूसरा, जो ओवरी या फिर ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस है
1: जी
0: वो कम हो जाते हैं। तो इसका फायदा ही है, इसका कोई नुकसान नहीं है ओवरऑल फिटनेस।
1: अच्छा, कुछ माँ को शिकायत होती है उनका दूध पर्याप्त आ नहीं रहा है, तो उसके लिए कोई घरेलू उपाय है जैसे दादी नानी सुझाती हैं, आप क्या सुझाती हैं फिर अब?
0: तो अगर नहीं आ रहा है तो उसके लिए भी दवाइयां जो है वो अवेलेबल है मार्केट में, जो हेल्प करती है दूध बढ़ाने के लिए। एंड दूसरा, अपने खुद के डाइट पे और अपने मतलब जो मेंटल हेल्थ होता है माओं का, उसके ऊपर हम बोलते हैं कि थोड़ा ख्याल रखो। अगर पूरे घर का जो एनवायरमेंट होगा वो सपोर्टिव होगा, अगर माँ को इनफ रेस्ट मिलेगा, उसको प्रॉपर डाइट मिलेगी, तो फिर दूध जो है वो ऑटोमेटिकली आने लगता है, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है, ये कोई आर्टिफिशियल प्रोसेस नहीं है। कुछ सिचुएशंस में दूध नहीं आता, जैसे अगर बच्चा अगर आईसीयू में चला गया है, माँ से सेपरेट है, फिर अगर माँ बहुत ज्यादा क्रिटिकल
1: मतलब गैप हो गया है बच्चे को पीने में,
0: या फिर माँ बहुत ज्यादा क्रिटिकली बीमार है, माँ ही आईसीयू में है, तो उसमें फिर हम दूसरे उपाय जो है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, आखिर में हम आपसे ये कहेंगे कि आप स्तनपान कराने वाली माओं को क्या संदेश देना चाहते हैं?
0: तो आखिर में मैं इतना ही बोलूंगी कि ये जो है ये एक मतलब ब्यूटीफुल प्रोसेस है, तो इसे अच्छे से एंजॉय कीजिए, एकदम रिलैक्स माइंड से कीजिए। तो

0: दोनों का फायदा होगा, आपके बच्चे का भी फायदा होगा, आपका बच्चा इंटेलिजेंट बनेगा, वो बहुत सारी इन्फेक्शन से बचेगा, एंड माँ का भी फायदा होगा क्योंकि माँ को भी मैंने बताया अनेक फायदे होते हैं, एंड सोसाइटी का भी फायदा होगा। तो इन सबको ध्यान रखते हुए ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो करनी चाहिए।
1: तो आशा है बहनों, आज की इस जानकारी जो हमने आपको दिलवाई स्तनपान के बारे में, आपकी इस बारे में समझ बढ़ी होगी। तो हमारी जो बहनें पहली बार मां बनने जा रही हैं, वो इस जानकारी से लाभ उठाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने इस स्टूडियो में अपना बहुत कीमती वक्त हमारे साथ बिताया। धन्यवाद
2: बहनों। अभी आपने वार्ता सुनी स्तनपान के प्रति जागरूकता। मैनो अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। देखिए, मैं आपको कुछ पंक्तियाँ सुना रही हूँ जिनको सुनकर आप समझ जाएंगे कि ये किस कवि की हैं। सखी वे मुझसे कुछ कह कर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में, हम ही भेज देती हैं रण में क्षत्रिय धर्म के नाते, क्षत्रिय धर्म के नाते सखी वे मुझसे कह कर जाते। बहनों, ये मर्म स्पर्शी पंक्तियाँ किसी और की नहीं बल्कि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की हैं। मैथिली शरण गुप्त का जन्म आज ही के दिन यानी 3 अगस्त 1886 को झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त स्वयं भी बहुत अच्छे कवि थे। बचपन से कविता गुप्त जी की सांसों में बसी थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से गुप्त जी ने सरस्वती पत्रिका में लिखना शुरू किया और हिंदी खड़ी बोली को काव्य की मुख्य भाषा बनाया। उनकी कविताओं में देश प्रेम, राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय चेतना कूट कूट कर भरी थी। उनकी प्रसिद्ध रचना भारत भारती से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी। साहित्य के क्षेत्र में 1954 में उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिला। उनका महाकाव्य साकेत, जो कि विश्व प्रसिद्ध है, और यशोधरा, पंचवटी, जयद्रथ व्रत, पंचवटी, जय भारत आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पहली कविता हेमंत से साहित्यिक जीवन शुरू करने वाले गुप्त जी ने 12 दिसंबर 1964 को अपना शरीर त्याग दिया। गुप्त जी भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन अपनी रचनाओं से वह आज भी हमारे दिलों में बसे हुए हैं। तो बहनों, अब आपको फिर से एक बार हम सुनवाते हैं सावन के महीने का गीत।

0: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
1: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
0: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: बहनों, अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। सेगमेंट का नाम है फैशन ब्यूटी, जिसमें कि हम आज आपको बताएंगे आरामदायक ट्राउजर के बारे में। बहनों, फैशन का मतलब केवल अच्छा दिखना ही नहीं है, बल्कि सहज महसूस करना भी है। कुछ दशक पहले लोग तंग कपड़े पहनना ही फैशन मानते थे, पर आज की पीढ़ी कंफर्ट और स्टाइल दोनों एक साथ मांगती है। इस तरह की जरूरत को पूरा करने में आरामदायक ट्राउजर सबसे आगे है। चाहे ऑफिस की लंबी मीटिंग हो या दोस्तों के साथ आउटिंग या फिर घर में रिलैक्स करना है, तो एक ट्राउजर दिन भर आपको सुकून देता है। आजकल बाजार में कॉटन, लिनन, जॉगर्स, एथलीजर, स्ट्रेचेबल, फॉर्मल ट्राउजर उपलब्ध हैं, लेकिन आप इन्हें खरीदते समय फैब्रिक फिटिंग, लंबाई और वेस्ट बैंड आदि का ध्यान रखें। हमेशा कॉटन, लिनन, विस्कोस जैसे प्राकृतिक कपड़ों को प्राथमिकता दें। और इसके अलावा ट्राउज़र ना तो ज़्यादा ढीला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा टाइट। वेस्ट बैंड आधा इलास्टिक वाला ज़्यादा ठीक रहता है और उससे कमर की फिटिंग भी अच्छी आती है। लंबाई पैरों के नीचे ना आए, इतनी लंबाई का आप ट्राउज़र खरीदिए। और बहनों, मुझे आपसे ये कहना है कि कंफर्ट कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता, अतः आरामदायक ट्राउज़र को अपनी वार्डरोब का हिस्सा बनाएं। तो आइए लेते हैं अब एक छोटा सा ब्रेक।

मेनू, अब हम चलते हैं अपने आखिरी सेगमेंट में, जिसमें कि हम आज आपको बताएंगे मसालेदार छाछ की रेसिपी। ये गर्मी के मौसम में बहुत ही ठंडक देती है। तो इसकी सामग्री कुछ इस प्रकार है। 1 कप ताज़ा दही, स्वादानुसार नमक, 1/2 कप पानी, 1/2 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1 चुटकी काला नमक, चुटकी भर काली मिर्च, थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया, 1 या 2 पुदीने की पत्तियाँ, या आप कुछ पत्तियाँ ले सकते हैं। तो बहनों, विधि है इसकी कि सबसे पहले आप दही को एक बर्तन में निकाल लीजिए और उसे मिक्सी में फेंट दीजिए ताकि उसमें कोई भी गांठ ना रहे। अब ठंडा पानी डालकर अच्छे से मिलाइए। काला नमक, सादा

नमक, भुना जीरा, काली मिर्च पाउडर डालकर एक बार और अच्छे से मिक्सी में चला दीजिए। अब इसमें पुदीना और बारीक कटी धनिया पत्ती डालिए। थोड़ी सी आइस क्यूब भी आप डाल सकते हैं ताकि ये ठंडा बना रहे। अब ये छाछ या नमकीन लस्सी आपके शरीर को तरोताज़ा रखेगी और आपके स्वास्थ्य को भी अच्छा रखेगी। तो बहनों, अब समय है आपसे इजाज़त लेने का। प्रगति को जाने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।

मीडियम वेव 196.1 मीटर पर, ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब समय हो रहा है हमारे अगले कार्यक्रम गजलों पर आधारित सुगम संगीत का। उसमें आप सुनेंगे कलाकार सरदार जसवंत सिंह की गाई चंद गजलें।

0: द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी किया। भारत ने आधार कार्ड से सत्यापित 5 लाख से अधिक अंगदान प्रतिज्ञाएं पूरी की। अंग प्रत्यारोपण में वैश्विक स्तर पर भारत तीसरे स्थान पर। अमेरिका और ईरान के बीच आज अगले दौर की बातचीत संभावित। और अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों तथा सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की आशंका। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा की 3 सीटों पर 30 जुलाई को संपन्न हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नीरज कुमार से आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के सत्येंद्र पटेल अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भीखाभाई रबारी और मध्यप्रदेश के दतिया में कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह भाजपा के आशुतोष तिवारी से आगे चल रहे हैं। बिहार से हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: पिछले 30 सालों से भाजपा का गढ़ रही बांकीपुर विधानसभा सीट पर इस बार उपचुनाव में जनसुराज के प्रशांत किशोर ने शुरुआती बढ़त बना ली है। प्रशांत किशोर मतगणना की शुरुआत के साथ ही प्रत्येक राउंड की गिनती में लगातार आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरे नंबर पर भाजपा के नीरज कुमार हैं, जिन्हें अब तक 15,000 से ज्यादा मत मिले हैं। वहीं आरजेडी की रेखा कुमारी 4,000 से अधिक मतों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। उपचुनाव में कुल 25 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के अप्रैल में राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद बांकीपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा देने के कारण इस सीट पर उपचुनाव कराया गया था। सविता पारी का आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई, जिनमें नीट परीक्षा मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई भी शामिल है। लोकसभा की कार्यवाही आज पहले स्थगन के बाद जब दोपहर 12 बजे फिर से आरंभ हुई तो पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद चनेटी ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधायी कामकाज शुरू करने का प्रयास किया। इस बीच सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 संसद के समक्ष प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्य नीट परीक्षा के मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर सदन के बीचों बीच आ गए। पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों से अपनी सीटों पर वापस जाने का आग्रह किया। इसके बावजूद गतिरोध जारी रहने के कारण लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया।
2: विपक्ष से कई सदस्यों ने अपोज करने का नोटिस दिया है, अभी मैं उनके नाम भी पढ़ा हूँ। आप उनको मौका देंगे नहीं देंगे, आप सोचिएगा। इस तरह ये प्लेकार्ड लेके आना, पहली बार कई बार बोल चुके हैं, इट इज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द पार्लियामेंट, यू कैन नॉट डू दिस। अगर आप इसी तरह चलते हैं तो कैसे आगे चलेगा।
0: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही दिन में 11 बजे शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण अध्यक्ष सभापति सीपी राधाकृष्णन ने दोपहर 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी। इससे पहले दोनों सदनों की ओर से ग्लासगो में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी गई। राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत के पैरा एथलीटों ने भी 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल पैरा खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए इतिहास रचा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि अगले राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2030 में गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होंगे।
2: कल संपन्न हुए समापन समारोह के उपरांत राष्ट्रमंडल खेलों का बैटन भारत को सौंप दिया गया है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश के करोड़ों युवाओं और खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों, उनके कोच और टीम इंडिया को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के पूर्व

0: मुख्य ब्रजभूषण शरण सिंह और सह आरोपी विनोद तोमर को बरी कर दिया। इस मामले में मई 2024 में एक अदालत ने श्री सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि छह महिला पहलवानों में से एक के द्वारा दायर शिकायत में उन्हें बरी कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि प्रत्येक सड़क पर पैदल यात्रियों के लिए उचित रूप से सीमांकित और अतिक्रमण मुक्त स्थान फुटपाथ सुनिश्चित किया जाए। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज को संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा, जिसमें पैदल यात्रियों के लिए निर्धारित स्थान को मोटर वाहनों के लेन से स्पष्ट रूप से अलग किया जा सके और उन्हें अतिक्रमण मुक्त रखा जा सके। पीठ ने कहा कि लक्ष्य बिना किसी बड़े निवेश या निर्माण के प्राप्त किया जा सकता है। भारत ने वर्ष 2023 में डिजिटल अंगदान पोर्टल के शुभारंभ के बाद से 3 वर्ष के भीतर आधार सत्यापित अंगदान प्रतिज्ञाओं का 5 लाख से अधिक का आंकड़ा पार कर लिया है। नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारतीय अंगदान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि पिछले 12 वर्ष में भारत में अंग प्रत्यारोपण की संख्या प्रतिवर्ष 20,000 से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अंगदान को प्रोत्साहित करने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने राष्ट्र से अंगदान को सबसे बड़ा दान मानने की अपील की है।
1: आप एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं, किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें और भोजन आहार ऐसा लें जो आपके शरीर को बीमारियों से मुक्त रखे, और उसके बाद भी यदि ऐसी परिस्थितियां विकसित होती हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में कि उसे अंगों की आवश्यकता पड़े, तो समाज के बीच में से हमको इन प्रयासों को बढ़ाना होगा।
0: इस अवसर पर सुश्री अनुप्रिया पटेल ने 1 साल तक चलने वाले जुग जुग जियो अभियान का शुभारम्भ किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सशस्त्र बल मुख्यालय AFHQ की सेवाएं रक्षा मंत्रालय की संस्थागत धरोहर हैं। वे आज नई दिल्ली में AFHQ असैन्य सेवा दिवस के अवसर पर संबोधन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है। श्री सिंह ने AFHQ की सेवाओं को राष्ट्र के निर्णायक शक्तियों में से एक बताया।
2: किसी भी सेना को शक्ति केवल हथियारों और गोले बारूदों से ही नहीं मिलती है, बल्कि उन हजारों ऐसे अदृश्य लोगों के द्वारा भी मिलती है जो हमेशा उसके पीछे, उसके सपोर्ट में सदैव पूरी लगन के साथ खड़े रहते हैं। आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविलियन सर्विसेज उन्हीं अदृश्य लेकिन निर्णायक शक्तियों में से एक है।
0: केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत उज्बेकिस्तान आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया है और अगले 3 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य अधिक निवेश, व्यापार बाधाओं में कमी और स्वास्थ्य सेवा तथा फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में गहन सहयोग के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित भारत उज्बेकिस्तान व्यापार मंच में उन्होंने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के व्यवसायों में उपलब्ध अवसरों में निवेश करने पर ध्यान देना चाहिए। इस अवसर पर उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग और व्यापार मंत्री लाजीज कुदरतोव भी उपस्थित थे। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन फिर शुरू हो गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दावा फर्जी है और वायरल वीडियो पुराना है। लोगों से इस तरह की भ्रामक सामग्री से सावधान रहने का आग्रह किया गया है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चल रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की ओडिशा यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। कर्नाटक में आज शाम 20 नए मंत्री शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह लोकभवन में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही डीके शिवकुमार मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 34 हो जाएगी। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
3: काफी निरीक्षा के बाद आज कर्नाटक में मंत्रिमंडल का विस्तार संभव हो पाया है।

0: मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के करीबी माने वाले विधानसभा सदस्यों को मंत्रिमंडल में स्थान प्राप्त हुआ है और कुछ सदस्य जो सिद्धरामैया के करीबी माने जाते थे उनको बदला गया है। सिद्धरामैया और शिव कुमार के मंत्रिमंडल में 13 बदलाव देखे जा रहे हैं। कांग्रेस कमेटी द्वारा जीएस पाटिल को असेंबली स्पीकर और सलीम अहमद को काउंसिल के चेयरपर्सन के स्थान के लिए चुना गया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज अगले दौर की शांति वार्ता हो सकती है। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मानवाधिकार समूहों का आरोप है कि हताहतों की संख्या काफी बढ़ गई है। इस इलाके की मानवाधिकार परिषद की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 80 तक पहुंच गई है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी कल तेज बारिश की संभावना है। अगले दो दिन तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भी इसी तरह का मौसम रहने की आशंका है। तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, माहे, लक्षद्वीप, उत्तरी आंध्र कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारेक्काल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है क्योंकि महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों में पानी का स्तर कम हो गया है। राज्य सरकार ने बाढ़ से हुए नुकसान का विस्तृत आकलन शुरू कर दिया है और जिन परिवारों के घर पूरी तरह से नष्ट हो गया है उन्हें 1,20,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों और फसलों के नुकसान के लिए भी मुआवजा की घोषणा की गई है। हालांकि भद्रक और जाजपुर जिलों के किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि और सब्जियों की फसलें बह गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पाल की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के विभिन्न देवस्थानों में सुबह से विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। तमिलनाडु में आज आषाढ़ माह का 18वां दिन है। इसे आषाढ़ पेरुक्कू कहा जाता है और ये देवी अम्मन को समर्पित है। इस त्यौहार में कृषि का आधार रही नदियों में जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रार्थना की जाती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विपक्ष के कई मुद्दों पर विरोध के कारण बाधित लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना जारी। दिल्ली की एक अदालत ने कुछ महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी किया। भारत ने आधार कार्ड से सत्यापित 5 लाख से अधिक अंगदान प्रतिज्ञाएं पूरी की। अंग प्रत्यारोपण में वैश्विक स्तर पर भारत 3रे स्थान पर। अमरीका और ईरान के बीच आज अगले दौर की शांतिवार्ता संभावित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 196.1 मीटर पर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। अब समय हो रहा है कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत का। आज आप सुनेंगे कलाकार उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान का ठुमरी गायन में राग मिश्र तिलक कामोद।

हिप-हॉप शास्त्रीय संगीत में आप सुन रहे थे कलाकार उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का ठुमरी गायन में राग मिश्र तिलक कामोद। अब आप सुनेंगे उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान, मतलब उन्हीं का ठुमरी में गायन राग मिश्र पहाड़ी।

कार उस्ताद मुस्तफा खान का ठुमरी गायन में राग मिश्र पहाड़ी। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। अब समय हो रहा है पुरानी फिल्मों पे गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का। नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी के इस खास पुरानी फिल्मों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त अंजलि, और आज हम आपको लेकर चलेंगे हिंदी सिनेमा के उस स्वर्णिम दौर में जिसे भारतीय फिल्म संगीत का गोल्डन एरा कहा जाता था। 1950s और 1960s के दशक के गीत आज भी अपनी मधुरता, अर्थपूर्ण बोल और कालजयी धुनियों के कारण उतने ही फेमस हैं जितने उस समय हुआ करते थे। तो आइए यादों के सुरीले सफर की शुरुआत करते हैं, और हमने इस सफर की शुरुआत के लिए पहला गीत लिया है फिल्म श्री 420 से शुरू से सजाया है, जिसको मन्ना डे और लता मंगेशकर ने शब्द दिए हैं शैलेंद्र ने, और धुन है शंकर जयकिशन की।

बारिश में एक ही छतरी के नीचे राज कपूर और नरगिस का यह दृश्य हिंदी सिनेमा का अमर दृश्य बन चुका है। यह गीत प्रेम, विश्वास और साथ निभाने का खूबसूरत संदेश देता है। अभी आपने सुना फिल्म श्री 420 से, जिसमें आवाजें थीं लता मंगेशकर और मन्ना डे की, शब्द थे शैलेंद्र के और धुन थे शंकर जयकिशन की। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई से सुर दिया है जिसमें लता मंगेशकर ने और शब्द दिए हैं शैलेंद्र ने और धुन एक बार फिर से शंकर जयकिशन की है।

1960 में आया ये गीत जीवन की अनकही भावनाओं को बेहद सरल शब्दों में बयां करता है। लता मंगेशकर की भावपूर्ण आवाज़ और शंकर जयकिशन का मधुर संगीत इसे सदाबहार बना देता है। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गाना फिल्म ताजमहल से। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में शब्द हैं साहिल लुधियानवी के और संगीत है रोशन का।

इसी उम्मीद के साथ कि यादों और सुरों का ये सफर आपको पसंद आया होगा, अब बढ़ते हैं अपने अगले कार्यक्रम जो है फिल्म संगीत पर आधारित गीत गुंजन की ओर। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गीत गुंजन और मैं हूं आपकी अपनी रेडियो साथी। और आज का ये सफर समर्पित है 90s के दशक के बाद आए उन सदाबहार फिल्मी गीतों को जिन्होंने फिल्म सिर्फ को ही नहीं अपनी हमारी जिंदगी में खूबसूरत यादों को भी धुनों से सजा दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत से जिसने रिलीज होते ही हर दिल में जगह बना ली। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ जो है फिल्म जो जीता वही सिकंदर से, और जिसमें आवाजें हैं उदित नारायण साधना सरगम की, और बोल हैं मजरूह सुल्तानपुरी के, और धुन है जतिन ललित की।

अभी आपने सुना फिल्म जो जीता वही सिकंदर से, आवाज़ें थीं उदित नारायण और साधना सरगम की, संगीत था जतिन ललित का और शब्द थे मजरूह सुल्तानपुरी के। दोस्तों, 90 का दशक हिंदी फिल्म संगीत का स्वर्णिम दौर था। इसी दौर में कई नई आवाज़ों ने अपनी नई पहचान बनाई और ऐसे गीत दिए जो आज भी हर प्लेलिस्ट की शान है। तो पेश है हमारा अगला सदाबहार गीत फिल्म दिलवाली दुल्हनिया ले जाएं से, और आवाज़ें हैं कुमार सानू और लता मंगेशकर की, सब संगीत है जतिन ललित का और शब्द हैं आनंद बख्शी के।

कुमार सानू और लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से ये गीत। कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। उनकी धुन और शब्द सीधे दिल तक पहुंचते हैं। अगला गीत भी कुछ ऐसा ही है जो हमने लिया है फिल्म दिल से। आवाज़ें हैं उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर की, शब्द दिए हैं गुलजार ने और संगीत दिया है AR रहमान ने।

अभी आपने सुना फिल्म दिल से, आवाजें थी उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर की, शब्द थे गुलजार के और संगीत था AR रहमान का। दोस्तों, कुछ गीत ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते ही सफर, दोस्ती और जिंदगी की यादें ताजा हो जाती हैं। आइए सुनते हैं एक ऐसा ही शानदार गीत, ये जवानी है दीवानी फिल्म से, जिसे सुर दिए हैं अरिजीत सिंह ने और संगीत है प्रीतम का, शब्द हैं अमिताभ भट्टाचार्य के।

अभी आपने सुना फिल्म ये जवानी है दीवानी से, गायक थे अरिजीत सिंह और संगीत था प्रीतम का, शब्द थे अमिताभ भट्टाचार्य के। दोस्तों संगीत की खूबसूरती यही है कि वह हर दौर में नए अंदाज के साथ दिलों को जोड़ता रहता है। अब पेश है पिछले दशक का एक बेहद पसंद किया गया रोमांटिक गीत जो है फिल्म जावाज से, जिसे शुरू से सजाया है किशोर कुमार और सपना ने, शब्दों में पिरोया है इंदीवर ने और संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने।

अभी आपने सुना फिल्म जवां से ये गीत, जिसमें सुर दिए थे किशोर कुमार और सपना ने, शब्द थे इंद्री वर के और संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। दोस्तों, कार्यक्रम गीत गुंजन का ये संगीत भरा सफ़र अब यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है कि 90s के दशक से आज तक के इन मधुर गीतों ने आपकी शाम को और भी यादगार बना दिया होगा। अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे कुछ नए गीतों, कुछ नई बातों के साथ। फिलहाल के लिए अपनी रेडियो साथी अंजलि को अनुमति दीजिए।

0: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, समय स्टूडियो की घड़ी में 5 बजने को है। अब हमारी सांध्यकालीन सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। सभा में सबसे पहले आइए सुनते हैं दिल्ली केंद्र से समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकर्स बुक एविडेंस विधेयक 2026 पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा के मुद्दे पर, छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर सदन में हंगामा किया। गतिरोध जारी रहने के कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल प्रारंभ किया और कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करना है। यह संख्या मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
1: राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक

0: जिसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन करना है। इसका लक्ष्य भुगतान में देरी को दूर करना और विवाद समाधान को सरल बनाना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और नागरिक विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री राजनाथ ने आज नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय नागरिक सेवा दिवस समारोह को संबोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि इससे सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान होगा। गुजरात के मांजलपुर विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने जीत हासिल की है। श्री पटेल ने कांग्रेस के भिखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया। बिहार के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में भी उपचुनाव की मतगणना जारी है। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में जन स्वराज पार्टी उम्मीदवार प्रशांत किशोर 31 में से 24वें राउंड की मतगणना के बाद भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा से 13,800 से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं। दतिया सीट पर कांग्रेस के घनश्याम सिंह भाजपा के आशुतोष तिवारी से 12,000 से अधिक वोटों से आगे हैं। तीनों निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनाव के लिए मतदान पिछले महीने की 30 तारीख को हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज प्राथमिकी को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग और व्यापार मंत्री लजीज कुदरतोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, कनेक्टिविटी, डिजिटल प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में सुरक्षा बलों के कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी उस समय हुई जब बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद द्वारा कल तक जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदर्शन में 80 लोग मारे गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर उन्हें बधाई दी है। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक के साथ 39 पदक जीते थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता, उस समय स्टूडियो की घड़ी में 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। श्रोताओं, पहले इस सभा के शेष कार्यक्रम के बारे में आपको जानकारी दे दें। इसी सभा में अब से कुछ देर बाद यानी 5:10 पर हमारे श्रोता सुनेंगे भक्तिपरक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या। युवा श्रोताओं के लिए उनका दैनिक कार्यक्रम होगा युववाणी 5:30 पर। इसमें आज चर्चा होगी ई श्रम पोर्टल विषय पर। इसके अलावा हम आपको सुनवाएंगे वार्ता जिसका विषय होगा दृष्टि बाधितों के लिए शिक्षा की राह आसान करती ब्रेल लिपि। वार्ताकार होंगी सजल रायजादा। श्रोताओं, इसके अलावा आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। हमारे ग्रामीण अंचल के श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्रामलोक 6 बजे। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आपसे करेंगे चर्चा खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में विषय पर। धान की फसल कीट रोग एवं खरपतवार नियंत्रण, इस विषय पर आप सुनेंगे वार्ता। वार्ताकार होंगे डॉ. चंद्रभान सिंह। इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे मंडी भाव की, मौसम की और सुनवाएंगे आपको लोकगीत। 6:30 पर हमारे श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम मजदूर मंडल।

इसमें आप सुनेंगे चर्चा स्तनपान कितना आवश्यक विषय पर। घरेलू नुस्खे में जानेंगे सेहत के बारे में और आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 7:10 पर कार्यक्रम होगा विविधा। श्रोतो, इसमें आज वार्ता का विषय है हिंदी कविता का शाश्वत सूर्योदय मैथिली शरण गुप्त। वार्ताकार होंगी अंकिता तिवारी। मेरी माटी मेरा देश, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:31 पर। 8:00 श्रोता सुनेंगे संसद समीक्षा, जिसे हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे, और 8:20 पर लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित होगी विधानमंडल समीक्षा। चित्रपट संगीत आप सुनेंगे 8:30 पर। 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, और 10:00 संसद में आज के प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग हम आपको सुनाएंगे। ये दोनों कार्यक्रम आप सुनेंगे, अनुप्रसारित होंगे दिल्ली केंद्र से। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर सुनेगा उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का राग माल कोस में गाया ख्याल।

श्रोताओं, ये थे इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। और अब एक नजर कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। कल प्रातःकालीन सभा में आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना 6:05 पर। 6:25 पर चिंतन कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेगा रामधारी सिंह दिनकर के विचार। श्री रामचरित मानस का संगीत में प्रसंग श्रोता सुनेंगे सुबह 6:35 पर। खेती की बातें कार्यक्रम में वार्ता का विषय होगा पशुओं से मनुष्यों को होने वाले रोग। वार्ताकार होंगे डॉ. लाल सिंह कौशल। प्रसारण समय रहेगा 6:45 का। श्रोताओं, सुबह 7:10 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत डॉ. एस के कठारिया जानकारी देंगे मुंह के छाले और बचाव विषय पर। श्रोताओं, अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 5:10 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं भक्ति भावना पर आधारित कार्यक्रम सुर संध्या।

श्रोताओं, ये आवाजें थी ए हरिहरन और साथियों की, बोल थे उदय शंकर पानी के और संगीत था सुरेंद्र कोहली का, फिल्म थी चार धाम। श्रोताओं, आज का ये पावन अवसर भगवान भोलेनाथ की भक्ति में समर्पित है। देवों के देव महादेव, जो करुणा, त्याग, शक्ति और कल्याण के प्रतीक हैं, उनके श्री चरणों में हम सभी अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: श्रोताओं, अंतराल से पहले जो भजन आपने सुना उसे हमने लिया था फिल्म केदारनाथ से। आवाजें थी अमित त्रिवेदी और साथियों की। श्रोताओं, भगवान शिव जिन्हें भोलेनाथ, नीलकंठ, महाकाल और शंकर के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है कि उनकी आराधना जीवन में सुख, शांति और नई ऊर्जा का संचार करती है। तो आइए अपने मन को हम भी शांत करें और शिव नाम

श्रोताओ, ये आवाजें थी लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की। फिल्म थी कुमार बाप। शब्द रचना थी मजरू की और संगीत रचना थी राजेश रोशन की। सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम भजन।

श्रोताओ मोहम्मद अजीज और साथियों के गाए फिल्म अपराधी के इस भक्ति गीत के साथ ही कार्यक्रम सुर संध्या अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 5:30 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी।

हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग साथियों। आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी आगरा और आज कार्यक्रम युवावाणी में स्वागत है हमारे सभी प्यारे प्यारे लिसनर्स का। आप हैं मेरे यानी अपनी रेडियो साथी राशि के साथ। साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। साथियों, हम हाजिर हैं लेकर आपका मनपसंद कार्यक्रम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सफर ई श्रम पोर्टल के विषय में जानकारी के साथ। साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि देश के करोड़ों असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और कामगारों को एक सुरक्षित भविष्य कैसे मिल सकता है? जवाब छुपा है आपके स्मार्टफोन की बस एक क्लिक में, जो आपको लेकर जाएगा ई श्रम पोर्टल पर। साथियों, ई श्रम पोर्टल भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के लिए शुरू किया गया एक ऑनलाइन पोर्टल है। इसका उद्देश्य श्रमिकों को एक ही मंच पर पंजीकृत करके उन्हें फिर विभिन्न सरकारी योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा लाभों से जोड़ना है। इस पोर्टल के माध्यम से श्रमिक आसानी से अपना पंजीकरण करा सकते हैं और एक विशिष्ट ई श्रम कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, ई श्रम पोर्टल भारत सरकार की एक खास पहल है, जिसका उद्देश्य देश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों

से निर्माण मजदूर, घरेलू कामगार और गिग वर्कर्स का एक केंद्रीकृत डेटाबेस तैयार करना है। इसमें रजिस्ट्रेशन कराते ही श्रमिक को 12 अंकों वाला UAN कार्ड प्राप्त होता है। इसके तहत 2,00,000 रुपए तक का दुर्घटना बीमा, PM सुरक्षा बीमा योजना का लाभ और किसी आपदा के समय सीधी वित्तीय मदद भी मिलती है। साथियों, हम युवाओं के लिए ये सिर्फ एक पोर्टल नहीं बल्कि अपने आसपास के जरूरतमंदों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का एक बेहतरीन अवसर भी है। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपने आसपास के कामगार भाइयों बहनों को जागरूक करें और स्मार्टफोन की उसी एक क्लिक से उनके लिए सुरक्षा कवच सुनिश्चित करें और उनके जीवन में बदलाव की लहर लाएं। साथियों, वैसे बदलाव कभी अपने आप नहीं आता, लेकिन बदलाव की दिशा में उठाया गया एक सही कदम पूरे समाज की तस्वीर बदल सकता है। इसी सोच की साक्षी है परिवर्तन योजना। कार्यक्रम में आगे बात करेंगे परिवर्तन योजना से जुड़ी, लेकिन उससे पहले लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक।

साथियों, ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात शुरू की थी परिवर्तन योजना से जुड़ी, तो आइए जानें क्या है परिवर्तन योजना। साथियों, हम युवाओं को आत्मनिर्भर और कुशल बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई परिवर्तन योजना एक ऐसी दूरदर्शी पहल है जो कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट, स्वरोजगार और सामाजिक कल्याण को एक ही मंच पर लेकर आती है। इस योजना के माध्यम से हम युवाओं को आधुनिक तकनीकों, वोकेशनल ट्रेनिंग और उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप के नए अवसर दिए जाते हैं। जब गांव और शहरों का युवा हुनरमंद बनता है तो वो न केवल अपने परिवार को आर्थिक संबल देता है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी बनाता है। ये योजना युवाओं को केवल जॉब सीकर्स नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर्स बनने की प्रेरणा देती है। तो अगर आप भी अपने सपनों को नई उड़ान देना चाहते हैं तो इस योजना से जरूर जुड़ें, क्योंकि जब आपका हुनर निखरेगा तभी देश में असली परिवर्तन आएगा। साथियों, परिवर्तन योजना पर ये जानकारी हम यहीं संपन्न करते हैं और आज के इस मौसम का आनंद लेते हैं इस गीत के साथ।

0: साथियों, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, ज्ञान की एक किरण पूरे जीवन को उजियारे से भर सकती है, और यही कमाल कर दिखाया है ब्रेल लिपि ने। साथियों, लुई ब्रेल द्वारा विकसित ये लिपि दृष्टि बाधित साथियों के लिए शिक्षा का सबसे बड़ा आधार है। आज के डिजिटल युग में ब्रेल लिपि का स्वरूप और भी आधुनिक हो जाता है। रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले, ब्रेल कंप्यूटर कीबोर्ड्स और ई रीडर्स की मदद से अब दृष्टिबाधित विद्यार्थी भी कोडिंग, उच्च शिक्षा और सिविल सर्विसेज जैसी परीक्षाओं में सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं। शिक्षा का ये सुगम माध्यम ये साबित करता है कि शारीरिक सीमाएं कभी भी आपकी प्रतिभा की राह में रोड़ा नहीं बनती। इसी क्रम में आइए सुनते हैं ये वार्ता, जिसका विषय है दृष्टि बाधितों के लिए शिक्षा की राह आसान करती ब्रेल लिपि। वार्ताकार है सजल रायजादा।
1: मित्रों, कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ तो कहीं गहरी गहरी खाई, तो कहीं पत्थरों के बीच रास्ता बनाकर ऊंचाई से गिरते झरने, ये सभी बेहद खूबसूरत हैं जब इन्हें देखने के लिए आपके पास आंखें हों। बिना आंखों के ये सभी चीजें व्यर्थ हैं। बिना आंखों के तो व्यक्ति शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन बिना आंखों के भी शिक्षा प्राप्त कर सकें, यह संभव हुआ ब्रेल लिपि से। ब्रेल लिपि ने दृष्टि बाधितों के जीवन को सरल बनाया। हर वर्ष के शुरुआती माह यानी जनवरी में हम सभी लुई ब्रेल को याद करते हैं। प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को उनके जन्मदिवस के रूप में और 6 जनवरी को उनको नमन करते हैं उनकी पुण्यतिथि पर। लुई ब्रेल की ब्रेल लिपि सही मायने में मानवता को उनकी बहुत बड़ी देन है। उभार वाले बिंदुओं की सहायता से लिखने पढ़ने के लिए विकसित पद्धति ब्रेल लिपि कहलाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व ब्रेल दिवस के लिए 6 नवंबर 2018 को प्रस्ताव पारित किया और 4 जनवरी 2019 को दुनिया भर में पहली बार ब्रेल दिवस मनाया गया। जब उन्होंने यह लिपि बनाई तब उनकी उम्र मात्र 18 वर्ष थी। आज यह लिपि दुनिया के लगभग सभी देशों में उपयोग में लाई जाती है। इसमें हर एक आयताकार सेल में 6 बिंदु यानी डॉट्स होते हैं जो थोड़े थोड़े उभरे होते हैं। यह 2 पंक्तियों में बनी होती है। इस आकार में अलग अलग 64 अक्षरों को बनाया जा सकता है। सेल की बाई पंक्ति में ऊपर से नीचे 1, 2, 3 बने होते हैं। इसी तरह दाई पंक्ति में 4, 5, 6 बने होते हैं। इसे पढ़ने की एक विशेष तकनीक होती है। ब्रेल लिपि को पढ़ने के लिए नेत्रहीन बच्चों में इतना ज्ञान होना जरूरी है कि वे अपनी उंगली को विभिन्न दिशाओं में सेल पर घुमा सकें। ब्रेल लिपि को स्लेट पर भी प्रयोग में लाया जा सकता है। इसके अलावा इसे ब्रेल टाइपराइटर पर भी प्रस्तुत किया जा सकता है। आधुनिक ब्रेल स्क्रिप्ट को 8 डॉट्स के सेल में विकसित कर दिया गया है ताकि नेत्रहीन लोगों को अधिक से अधिक शब्दों को पढ़ने की सुविधा उपलब्ध हो सके। 8 डॉट्स वाले ब्रेल लिपि सेल में अब 64 की बजाय 256 अक्षर, संख्या और विराम चिन्हों को पढ़ सकने की सुविधा उपलब्ध है। ब्रेल उपयोगकर्ता इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि ब्रेल आज भी उतना ही आवश्यक है जितना कि देखने वालों के लिए प्रिंट। जो बच्चे दृष्टिहीन हैं वे प्रारंभिक और उन्नत शिक्षा के बुनियादी हिस्सों में चूक जाते हैं। यदि उन्हें आवश्यक उपकरण जैसे ब्रेल में शैक्षिक सामग्री तथा पहुंच प्रदान

0: नहीं की जाती है। जो बच्चे दृष्टिहीन हैं वे बड़े होने पर धारा प्रवाह ब्रेल पाठक बनने के लिए बहुत कम उम्र से बुनियादी ब्रेल कौशल सीखना शुरू कर सकते हैं। दृष्टिहीन बच्चे स्वाभाविक रूप से संकेतों, टीवी और किताबों में लिखित भाषा के संपर्क में आते हैं। जिन वयस्कों के जीवन में बाद में दृष्टि हानि का अनुभव होता है या जिन्हें कम उम्र में इसे सीखने का मौका नहीं मिला होता, वह भी यह लिपि सीख सकते हैं। किसी नेत्रहीन या कम दृष्टि वाले बच्चे की साक्षरता के लिए प्रारंभिक ब्रेल शिक्षा महत्वपूर्ण है। वॉशिंगटन राज्य में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि जिन लोगों ने कम उम्र में ब्रेल सीखी, उन्हें शब्दावली और समझ सहित कई क्षेत्रों में अपने दृष्टि बाधित साथियों से बेहतर नहीं तो उतना ही अच्छा प्रदर्शन किया। भारत में ब्रेल लिपि को वर्ष 1950 के बाद अपनाया गया। भारतीय भाषाओं की लिपियों को ब्रेल पद्धति से निरूपित करने के लिए एक समान नियम व निर्देश बनाए गए और इसे भारतीय ब्रेल कहा गया। गौरतलब तो यह है कि वर्ष 2018 में भारत सरकार ने दृष्टि बाधित नागरिकों के लिए भारतीय संविधान को ब्रेल लिपि में उपलब्ध करवाया। इसमें संविधान को 5 भागों में विभाजित कर उसे ब्रेल लिपि में लिखा गया। वहीं भारत का पहला ब्रेल अखबार स्वागत थोराट ने वर्ष 2018 में प्रारंभ किया। अखबार का नाम था स्पर्श ज्ञान। हमारी सरकार भी आज दिव्यांगजनों के उत्थान के लिए अनेक सुविधाएं प्रदान कर रही है। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में आने जाने के लिए सुविधा प्रदान की है। हमारे प्रदेश में दृष्टि बाधित छात्र छात्राओं के पठन पाठन के लिए ब्रेल लिपि में पुस्तकों को प्रकाशित करने के लिए प्रेस का संचालन किया जा रहा है। दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए नौकरी में भी अलग से व्यवस्था की गई है। यहां तक कि उनके लिए अलग से टच स्क्रीन मोबाइल तथा खेलों की भी व्यवस्था की जा रही है। बसों में भी उनके लिए अलग से बैठने की व्यवस्था की जाती है। सरकार उनके उत्थान के लिए प्रयासरत है और हमारा भी यह प्रयास होना चाहिए कि हम उनकी हर संभव सहायता करें। इस तरह ब्रेल लिपि ने दृष्टि बाधितों के लिए शिक्षा की राह तो आसान की है, साथ ही उनके जीवन को भी आसान किया है।
1: साथियों, कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे वार्ता जिसका विषय था दृष्टि बाधितों के लिए शिक्षा की राह आसान करती ब्रेल लिपि। वार्ताकार थे सजल रायजादा। साथियों, लेते हैं एक ब्रेक, जिसके बाद बात करेंगे माँ के दूध में पाए जाने वाले अमृत तुल्य गुणों की।
2: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
3: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
2: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
1: साथियों, क्या आप जानते हैं दुनिया में किसी नवजात शिशु के लिए सबसे पहला और सबसे अनमोल उपहार क्या हो सकता है? जवाब है माँ का पहला गाढ़ा दूध, जो वास्तव में अमृत समान है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार जन्म के तुरंत बाद यानी शुरुआती एक घंटे के भीतर शिशु को माँ का दूध मिलना उसकी जिंदगी का पहला और सबसे मजबूत प्राकृतिक कवच है। साथियों, इस दूध को कोलोस्ट्रम कहा जाता है, जो एंटीबॉडीज और जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होता है। शुरुआती 6 महीने तक केवल और केवल स्तनपान कराना बच्चे को निमोनिया, दस्त और कुपोषण जैसी गंभीर बीमारियों से बचाता है। ये न केवल बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जरूरी है, बल्कि माँ के स्वास्थ्य को भी बेहतर रखता है। हम युवाओं के लिए इस विषय पर फैली भ्रांतियों को दूर करना बेहद जरूरी है। चलिए, स्वास्थ्य का ये संदेश हम जन जन तक पहुंचाएं। और अभी आनंद लेते हैं कार्यक्रम में इस गीत का।

साथियों, कार्यक्रम युवावाणी में अभी ये गीत आपने सुना फिल्म नीरजा से। आइए कार्यक्रम के अंत में सुने अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म उरी से।

साथियों, समय हो चला है कार्यक्रम संपन्न करने का, तो चलते चलते आपसे बस एक ही दरख्वास्त, अपना और अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें और सुनते रहें अपना मनपसंद कार्यक्रम युववाणी। आपसे फिर जल्द ही करेंगे मुलाकात। आप सुन रहे थे अपनी रेडियो साथी राशि को। अब हमें दें इजाज़त। नमस्कार।

यह था युवा श्रोताओं के लिए उनका दैनिक कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, इस समय स्टूडियो की घड़ी में 6 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम्यलोक।

राम राम भैया बहनों, आप सुन रहे हैं आपका अपना दैनिक कार्यक्रम ग्राम्य लोक और मैं हूं आपकी रेडियो बहन सोमा जैन। अगस्त महीना रिमझिम फुहारे आज सुबह से ही बरस रही हैं। मौसम सुहाना और ठंडी हवाओं वाला बना हुआ है। हमारे खेतों से भी सोंधी सोंधी सी खुशबू आ रही है। और हाँ, आज के दिन की सबसे पावन बात तो ये है कि आज श्रावण मास का पहला सोमवार है। तो भाई, सभी श्रोताओं को सावन के पहले सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव। बाबा भोलेनाथ की कृपा हमारे परिवारों पर, हमारी फसलों पर, हमारे खेतों पर और पूरे गांव पर हमेशा बनी रहे। भैया, सच तो ये है कि सावन की इस रिमझिम बारिश को देखकर हमारा किसान मन जो है ना, वो झूम उठता है। हमारा मन मयूर नाच उठता है। और देखो, अभी तो मेंढक भी बोल रहे हैं, टर टर की आवाज़ सुनाई देती है ना, बरसात की यही तो खास बात है। और हमारे किसान भाई जो हैं, वो सभी ट्रैक्टर लेकर अब खेती की तरफ निकल चुके हैं। भैया, इस बरसात की पानी की खुशी तो हम सब मनाते हैं, पर साथ ही साथ इस पानी से जुड़ी एक बहुत ही ज़रूरी बात है,

जिस पर मिलकर हम सबको एक साथ काम करना है, और वो चर्चा है खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। भैया बहनों, ज़रूरी ये है कि हम इस अनमोल बरसते पानी को बहने से रोकें, अपने खेतों की नमी बढ़ाएं, मिट्टी को बहने से बचाएं और अपने गांव में इतना सारा पानी बचा लें कि गर्मियों में हमें पानी की बिल्कुल भी किल्लत ना हो। साथियों, हम सब जानते हैं कि खेती का सबसे बड़ा आधार ये पानी ही तो है। रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। सावन भादों में जब बादल मेहरबान होते हैं तो पानी चारों तरफ बहने लगता है, गलियां भर जाती हैं, खेत लबालब हो जाते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आज बारिश में भरने वाला ये पानी क्या सच में हमारे काम आता है? अक्सर होता क्या है, जरा विचार करो। हमारे खेतों का सबसे उपजाऊ हिस्सा यानी ऊपर की जो मिट्टी है जिसमें असली ताकत होती है, वो इस तेज बहाव वाले पानी के साथ बहती हुई नालों में चली जाती है, नालों से वो नदी में और नदी से होते हुए वो पानी हमारे गांव से बाहर निकल जाता है। यानी हमारा पानी, जिसे हम हमारी लक्ष्मी भी कहते हैं, वो हमारे घर आती तो है पर हम उसे रोक नहीं पाते और वो बहकर बाहर चली जाती है। क्या कोई ऐसा चाहेगा कि जो लक्ष्मी आई है वो चली जाए? नहीं ना। फिर होता क्यों है ऐसा? भाई, जब अक्टूबर नवंबर का महीना आता है या फिर मार्च अप्रैल का गर्म महीना आता है तो हमें सिंचाई के लिए, अपने पशुओं के लिए ट्यूबवेल और कुओं पर निर्भर होना पड़ता है। हम अपनी ज़मीन से पानी खींचते हैं जिससे हमारी धरती माँ का जल स्तर यानी कि वाटर लेवल जो होता है वो लगातार नीचे गिरने लगता है। तभी तो आज बोरिंग जो हैं वो सूख रहे हैं, कुएं अब हमारे जवाब दे चुके हैं। इसलिए आज का मूल मंत्र है खेती और गांव को बचाना है तो बरसते पानी को रोकना होगा। आज जो पानी बरस रहा है, जो सोने के रूप में हमें मिल रहा है, उसको सहजना होगा। खेत का पानी खेत में ही अब हमें रोकना पड़ेगा। अगर हम अपने खेत की घेराबंदी यानी कि जो मेड़बंदी है उसे मजबूत कर लें तो बारिश का पानी खेत से बाहर नहीं भागेगा। जब पानी खेत में रुकेगा तो ज़मीन के अंदर जाएगा, इससे हमारी ज़मीन की नमी लंबे समय तक बनी रहेगी और इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि किसान भैया, जब तक हम अपनी रबी की फसल बोएंगे तो पहली या दूसरी सिंचाई के समय बहुत कम पानी की हमें ज़रूरत पड़ेगी। यानी बिजली का खर्च भी बचेगा, डीजल का खर्च भी बचेगा, तो बचत ही बचत होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो ज़मीन है वो उपजाऊ बनी रहेगी, क्योंकि हमने इस पानी को जो आज बरस रहा है बादलों से उसे अगर रोक लिया तो फिर जो ज़मीन है वो उपजाऊ बनी रहेगी क्योंकि पानी को वो सोख लेगी। इसलिए बरसात के पानी को रोकने के लिए आप मजबूत मेड़बंदी ज़रूर करें। अपने खेतों के चारों तरफ कम से कम 1.5 से 2 फीट ऊंची और चौड़ी मेड़ ज़रूर लगाएं। मेड़ जितनी मजबूत होगी साथियों, पानी उतना ही खेत के अंदर थमेगा और हमारी जो कीमती मिट्टी है, जो हमारी उपजाऊ मिट्टी है, वो कटने से बचेगी। इसलिए मेड़ को कभी भी छोटा ना करें। कई बार क्या होता है, हमारे जो कुछ साथी होते हैं वो जगह को बचाने के चक्कर में कि खेत बड़ा होगा मेड़ को छोटा कर देते हैं, पर उससे नुकसान ही होगा। इसलिए हम हमेशा यही कहते हैं कि कभी भी मेड़ को छोटा ना करें। ध्यान देने वाली बात यह है कि तेज बारिश में मेड़ टूटे नहीं, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो अब इसके लिए हम क्या उपाय करें, क्योंकि भाई बारिश हमारे हाथ में तो है नहीं, कभी तेज़ बहाव से आती है तो कभी धीरी धीरी रिमझिम रिमझिम आती है। तो अगर तेज़ बारिश आए उससे मेड़ टूटने का डर होता है, तो ये मेड़ टूटे नहीं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम मेड़ पर ऐसी घास लगाएं जिसको

जिसकी जो जड़ें हैं ना वो गहरी हों। और अच्छा होगा कि आप अपनी मेड़ पर छोटे और फलदार पौधे लगाएं, जैसे कि अमरूद का पौधा होता है, अनार का पेड़, करौंदे का पेड़, इस तरीके के पेड़ आप लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी मेड़ जो है वो मजबूत होगी, इनकी जड़ें जो है मिट्टी को मजबूत से जकड़ कर रखेंगी और आपको इसके साथ साथ अतिरिक्त आमदनी भी होगी, क्योंकि भाई इनके जो फल हैं उन्हें मंडी में ले जाकर आप बेच सकते हैं तो आमदनी भी ज़्यादा होगी, है ना, आम के आम और गुठलियों के दाम जैसी बात। तो ध्यान रखें इस बात का। साथ ही अगर आपको ज़मीन थोड़ी सी आपके पास ज़्यादा है तो खेत के सबसे निचले हिस्से में, जहाँ जो है पूरे खेत का पानी आकर इकट्ठा होता है, वहाँ आप एक छोटा सा गड्ढा या तालाब बना दें। ऐसे में जब भारी वर्षा होगी तो मेड़ टूटने के बजाय जो पानी है ना वो इस तालाब में जमा हो जाएगा, और जब सितंबर अक्टूबर में बारिश नहीं होगी तो ये जो पानी है वो हमारी फसलों की ज़रूरतों को पूरा करेगा। साथ ही साथ इसमें जो पानी जमा किया गया है वो हमारे पशुओं के लिए भी काम आ सकता है। तो समझ लो आप, अगर हमने खेत में पानी रोक लिया तो हमने अपनी ज़मीन की किस्मत अपने हाथों से बदल दी। तो मानोगे ना आप कि खेत का पानी खेत में होने से हमें बहुत सारा लाभ होने वाला है। चलो अब आगे की बात करते हैं। सबसे ज़रूरी तो यह है कि गांव का पानी गांव में रहे। भैया, गांव का पानी रोकने के लिए हमें सामूहिक रूप से मिलकर काम करना होगा। हमें हमारे पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार करना होगा, उनमें जो मिट्टी भर गई है, प्लास्टिक और कचरा जो जमा हो गया है उसे साफ करना होगा। साथ ही उन्हें गहरा करना होगा, जिससे इस सावन का पानी अमृत बनकर उन तालाबों में इकट्ठा हो जाए, जिसका उपयोग हम ज़रूरत पर कर पाएंगे। साथ ही हम घरों के आंगन में भी एक छोटा सा गड्ढा कर सकते हैं, और इसके साथ साथ गाँव के पास से जो छोटे छोटे बरसाती नाले या नदियाँ बहती हैं वो बारिश के बाद सूखी हो जाती हैं। अगर हम किसान साथी मिलकर सूखी बोरियों में मिट्टी या बालू भरकर उन नालों पर बोरी बांधने का काम करें तो पानी नहीं रुक जाएगा। ऐसे करने से आसपास के जितने भी कुएं हैंडपंप हैं उनका जल स्तर बढ़ेगा। साथियों, जब गांव में पानी होगा तो हमारे पशुओं को गर्मियों में प्यासा नहीं भटकना पड़ेगा, और पशु खुश तो हम भी खुश। तो मेरे प्यारे किसान साथियों, आज सावन के इस पावन पहले सोमवार पर जब आसमान से स्वयं महादेव पानी बरसाकर हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, तो हमारा धर्म बनता है कि हम इस प्रसाद रूपी पानी को बहकर बर्बाद ना होने दें। सावन की बौछारों का आनंद लेते हुए ज़रा देखिए, कहीं आपकी मेड़ कमज़ोर तो नहीं, कहीं आपके खेत का पानी बहकर पड़ोस के खेत में तो नहीं जा रहा। अगर ऐसा हो रहा है तो उसे अभी रोक लीजिए। भोलेनाथ की इस कृपा को संभालिए, जिससे कि खेतों में सोना उपजे, फसल खूब लहलाए। बाबा भोलेनाथ हमारी झोलियों में यूं ही खुशियों से भर दें, क्योंकि भाई आज तो उनकी पूजा करने का दिन है, सावन का पवित्र सोमवार है। तो इस सावन के पवित्र सोमवार में चलो कुछ गाकर गुनगुनाकर भोलेनाथ की सेवा करते हैं इस गीत के साथ।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: हाँ तो भैया बहनों, अगस्त का महीना शुरू हो चुका है, रिमझिम रिमझिम पानी भी बरस रहा है और ऐसे में खेतों में धान की बात हो रही है। जी हाँ, हमारे खेतों पर इस समय धान की बुवाई भी हो चुकी है, तो ज़रूरी यह है कि धान की फसलों की हम कैसे देख रेख करें, उसमें किन किन बातों का ध्यान रखें।

0: खेतों में धान की बात हो रही है। जी हाँ, हमारे खेतों पर इस समय धान की बुवाई भी हो चुकी है, तो ज़रूरी ये है कि धान की फसलों की हम कैसे देख रेख करें, उसमें किन किन बातों का ध्यान रखें, वो इस समय जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमें पहले से पता होती हैं कुछ बातें और हम उनका ध्यान रखते हैं, तो निश्चित ही जो हमारी फसल होती है ना, हम उसकी देख रेख बहुत अच्छी करेंगे तो फसल भी बहुत उपजाऊ होगी, पैदावार अच्छी होगी और फिर उससे आमदनी भी अच्छी होगी। ऐसा तो हम सभी चाहते हैं। तो चलिए, आज हम इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको धान की फसल, कीट रोग एवं खरपतवार नियंत्रण विषय पर वार्ता सुनाते हैं। हमारे वार्ताकार हैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह।
1: प्रिय किसान भाइयों, धान खरीफ मौसम की महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। धान की फसल में कीट एवं रोगों का प्रकोप बहुत अधिक होता है तथा फसल की पैदावार भी प्रभावित होती है। धान की फसल में कीट और रोग नियंत्रण के लिए बीजोपचार, समय पर उचित कीटनाशकों और फफूंदी नाशकों का छिड़काव तथा संतुलित उर्वरक प्रबंधन बहुत आवश्यक है। मुख्य कीटों में तनाछेदक, गंधी बग, पत्ती लपेटक कीट और भूरा फुदका कीट शामिल हैं। जबकि किसान भाइयों, प्रमुख रोगों में ब्लास्ट, जिसे हम झोंका रोग भी कहते हैं, और जीवाणु झुलसा रोग और खैरा रोग शामिल होते हैं। अब हम बात करते हैं प्रमुख कीटों के, उनका नियंत्रण कैसे करें। सबसे पहले हम तनाछेदक की बात करते हैं। यह कीट धारीदार, गुलाबी, पीले या सफेद रंग का होता है। इस कीट की सूंड़ी नुकसान पहुंचाती है। फसल की प्रारंभिक अवस्था में इसके प्रकोप से पौधों का मुख्य तना सूख जाता है। इसे हम डेड हर्ड भी कहते हैं। इसके नियंत्रण के लिए रोपाई के 20-25 एवं 70 से 75 दिन बाद 800 मिलीलीटर मोनोक्रोटोफास 30 WP की मात्रा 700 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें, या थेमेट 10G की 10 किलोग्राम दवा को रोपाई के 20 से 25 दिन एवं 70 से 75 दिन बाद प्रति हेक्टेयर की दर से खड़े पानी में डालें। अब हम बात करते हैं गंधी कीट की। यह कीट दूधिया अवस्था में दानों का रस चूसता है। इस कीट को छूने या छेड़ने से बहुत तीखी गंध निकलती है, इस कारण इसे गंधी कीट कहते हैं। इसके नियंत्रण के लिए फोलिडॉल या मेलाथियन धूल का 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव करना चाहिए। अब हम बात करते हैं पत्ती लपेटक कीट। इस कीट की सूड़ी पौधे की कोमल पत्तियों को सिरे की तरफ से लपेटकर सुरंग सी बना लेती है और इसे अंदर से खाती रहती है। इसके कारण पत्तियों का रंग उड़ जाता है और पत्तियां सिरे की तरफ से सूखने लग जाती हैं। इसके नियंत्रण के लिए मोनोक्रोटोफॉस 36 WP दवा की 1 लीटर मात्रा से 500-600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से इसका हमें स्प्रे करना चाहिए। अब इसमें एक प्रमुख कीट और है, भूरा फुदका। यह कीट बहुत छोटे आकार एवं भूरे रंग के होते हैं, जो कि पौधों की निचली सतह पर कलों के बीच में पाए जाते हैं। तने एवं पत्तियों का रस चूसते हैं। इसके प्रकोप से हरी भरी दिखने वाली जो हमारी फसल है, अचानक झुलस जाती है। इसके नियंत्रण के लिए थिमेट 10G की 10 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर पौधे के निचले हिस्सों में हमें डाल देनी चाहिए। अब हम धान में जो प्रमुख जो रोग लगते हैं और उनका नियंत्रण कैसे करें, उसकी बात करते हैं। झोंका रोग है, जिसे हम ब्लास्ट भी कहते हैं। यह रोग फफूंद के द्वारा फैलता है। पौधे के सभी भाग इससे प्रभावित होते हैं। वृद्धि की अवस्था में तो यह रोग पत्तियों पर धब्बे के रूप में दिखाई देता है। इन धब्बों के किनारे कत्थई रंग के तथा बीच वाला भाग एकदम राख के रंग का हो जाता है। इस रोग का नियंत्रण हम कार्बेंडाज 50 WP की 0.5% घोल का छिड़काव करके करना चाहिए। अब हमारा जो दूसरा रोग है, जीवाणु झुलसा रोग। इस रोग में पत्तियों के किनारों या सिरों से पानी जैसी भीगी हुई पीली या सफेद धारियां निकलती हैं। सुबह के समय पत्तियों पर दूधिया जैसी बूंद दिखना और बाद में पूरी पत्ती का सूखकर झुलस जाना। जैसे ही खेत में इस तरह के लक्षण आप लोगों को दिखाई दें, तो तुरंत खेत से पानी

0: इनको निकाल देना चाहिए और साथ ही साथ नत्रजन उर्वरकों का प्रयोग रोक देना चाहिए। इसकी रोकथाम के लिए 15 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन तथा 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर देना चाहिए। 10 से 15 दिन बाद यदि आवश्यक हो तो दूसरा भी स्प्रे कर देना चाहिए। अब एक रोग और है, खैरा रोग। धान की फसल में लगने वाला जो खैरा रोग है वो मुख्य रूप से मिट्टी में जिंक की कमी के कारण होता है। इसके प्रमुख लक्षण पत्तियों का पीला पड़ जाना है, पत्तियों पर हल्के पीले या कत्थई रंग के धब्बे बनना और पौधों की बढ़वार रुक जाना है। इसकी रोकथाम के लिए 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट लें और 20 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर 1000 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना चाहिए। अब हम साथ ही साथ बात करेंगे धान के खरपतवार नियंत्रण की। धान की फसल में खरपतवार चौड़ी पत्ती वाले जैसे कनकोआ, सफेद मुर्गा एवं जंगली जूट तथा सकरी पत्ती वाले जैसे सांवा है, कोंदो है, दूब घास है आदि की रोकथाम के लिए ब्यूटाक्लोर 50 ईसी 2.5 से 3 लीटर दवा प्रति हेक्टेयर 60 किलोग्राम बालू में मिलाकर खेत में बखेर देना चाहिए। रोपाई के 2-3 दिन बाद और खेत में 24 घंटे पानी भरा रहना चाहिए। इस प्रकार से किसान भाई धान की फसल में कीट रोग एवं खरपतवारों का नियंत्रण करें तो फसल की पैदावार को प्रभावित होने से बचाया जा सकता है।
1: तो किसान साथियों, अभी हमने डॉक्टर चंद्रभान सिंह जी से जाना कि कैसे हम धान की फसल कीट रोग और खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि जो बातें उन्होंने बताईं आप उनका ध्यान रखेंगे और इस बार आपकी धान की फसल खूब लहलाएगी। भाई यही हमारी कोशिश होती है, हमारी वार्ता के माध्यम से हम आप तक जानकारी पहुंचाएं और उसका आपको बहुत सारा लाभ हो। और भी बातें करेंगे पर फिलहाल लेते एक छोटा सा विराम।
2: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
3: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
2: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
4: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: साथियों, स्वागत है आप सभी का अल्प विराम के बाद। आज हम बात कर रहे हैं अगस्त के महीने की और बरसते पानी की। ऐसे में जहां एक तरफ हमें खुशी है, वहां हमारे जो धान लगाने वाले किसान हैं उनके मन में एक बड़ा डर भी होता है कि अगर लगातार भारी बारिश हुई, खेत में कई दिनों तक पानी रहा और पानी से खेत डूब गया तो जो हमारी धान की फसल है वो सड़ जाएगी और भारी नुकसान होगा। लेकिन अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैज्ञानिकों ने इस सावन के मौसम के लिए धान की एक नई किस्म, बिल्कुल नई तरीके की अद्भुत किस्म तैयार की है जिसका नाम है स्वर्ण धान यानी जल रोधी धान। साथियों, ये धान की कोई आम किस्म नहीं है बल्कि इसे खास तौर पर भारी बारिश और बाढ़ वाले इलाकों के लिए तैयार किया गया है। इसकी खासियत यह है कि अगर भारी बारिश के कारण आपका पूरा खेत 12 से 14 दिन तक यानी कि पूरे 2 हफ्ते भी पानी के अंदर डूबा रहे तो भी ये फसल मरती नहीं है। ये तकनीक सावन और भादों के इस मौसम में हम किसानों की फसलों के लिए जीवन बीमा की तरह काम करती है। इस नई किस्म की पैदावार की बहुत शानदार जो बात है वो ये है कि ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। इतने सारे फायदे, फसल तो लगानी चाहिए पर मिलेगी कहाँ, यही सोच रहे हैं ना आप? तो भैया, सरकार इस जल रोधी फसल के बीजों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत सरकारी बीज भंडारों और सोसाइटियों पर भारी छूट पर उपलब्ध करवा रही है। कई जगह तो हमारे छोटे किसानों के लिए ये मिनी किट यानी कि बीज जो इसके हैं ना,

उसके पैकेट मुफ्त या फिर बहुत कम दामों पर भी दिए जा रहे हैं। तो मेरे प्रगतिशील किसान साथियों, प्रकृति के भरोसे बैठने की बजाय इस नई किस्म के विज्ञान को अपनाएं। अगर इस बार चूक हो गई हो तो अगली बार के लिए याद रखें और अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र पर ज़रूर संपर्क करें, ताकि जब भारी बारिश हो तो आपका भी नुकसान नहीं हो। तो भाई, बारिश की बात है तो कल के मौसम की और आज के मौसम की जानकारी दे दें। आज कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश अभी होने की संभावना है और कल के बारे में भी यही संभावना है कि कल भी बादल छाए रहेंगे और दिन में कई बार बारिश हो सकती है। तो भाई, बारिश से बचाव करें, पशु को बाहर ना बांधें और अगर घर से बाहर निकले तो ध्यान रखें। तो आप अपना ध्यान यूं ही रखिएगा और हम फिर आपसे कल मिलेंगे इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए मेरे सभी किसान साथियों को सोमा जैन की राम राम।

अभी हमारे ग्रामीण अंचल के श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्राम्य लोक, आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोता 6:30 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मजदूर मंडल।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रमिक भाई और बहनों को आपकी रेडियो सखी छवि गर्ग का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम मजदूर मंडल में। और बताइए दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। और मित्रों, इस बारिश में अपना खास ख्याल रखें। तो हाँ, सबसे पहले हम जान लेते हैं आज का प्रश्न। बताइए, राष्ट्र कवि का दर्जा किसे प्राप्त है? हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहें, आपको इस प्रश्न का उत्तर इसी कार्यक्रम में आगे मिल जाएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो हर माँ और हर बच्चे के स्वास्थ्य से जुड़ा है। अब देखिए ना, बच्चे के जन्म के बाद माँ का दूध उसके लिए प्रकृति का सबसे अनमोल उपहार है, जिसे जन्म से पहले एक घंटे के भीतर बच्चे को शुरू करा देना चाहिए। और हाँ, शुरुआत में निकलने वाला पीले रंग का गाढ़ा दूध, जिसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है, बच्चे के लिए सुरक्षा ढाल होता है। साथ ही साथ ये बच्चे को कई तरह के संक्रमण और बीमारियों से बचाने में भी मदद करता है। साथियों, पहले 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध देना ही चाहिए। इस दौरान पानी, शहद, घुटी या कोई दूसरा आहार देने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती। माँ के दूध में बच्चे के विकास के जरूरी सभी पोषक तत्व सही मात्रा में मौजूद होते हैं। इसके अलावा श्रोताओं, स्तनपान केवल बच्चे के लिए ही नहीं बल्कि माँ के लिए भी बहुत लाभदायक है। इससे प्रसव के बाद माँ का शरीर जल्दी स्वस्थ होता है, साथ ही माँ और बच्चे के बीच प्यार, अपनापन और विश्वास का रिश्ता मजबूत होता है। साथियों, एक माँ को अपने शिशु को स्तनपान जरूर कराना चाहिए। आज के समय में जब महिलाएं घर के बाहर जाकर काम कर रही हैं, ऐसे में कामकाजी माताएं भी समय निकालकर या अपने दूध को सुरक्षित रखकर अपने बच्चे को स्तनपान करा सकती हैं। साथ ही परिवार के सभी सदस्यों को भी माँ को सहयोग देना चाहिए, ताकि वो बिना किसी तनाव के अपने बच्चे की अच्छी तरह से देखभाल कर सके। दोस्तों, एक स्वस्थ बच्चा ही एक स्वस्थ समाज और मजबूत राष्ट्र की पहचान।

इसलिए स्तनपान के महत्व को हम सभी को समझना है और दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करना है, ताकि हर नवजात शिशु को जीवन की सबसे अच्छी शुरुआत देने में हम अपना योगदान कर सकें। दोस्तों, कुछ शिशुओं को अमृत तुल्य ये माँ का दूध नहीं मिल पाता। ऐसे शिशुओं को दूध उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आगरा में उत्तर प्रदेश का पहला मातृ शिशु दुग्ध बैंक स्थापित किया गया है, जो नवजात शिशुओं के लिए जीवन दान साबित हो रहा है। आगरा में ये सुविधा गर्भ संस्कार और मैटरनिटी होम, साथ ही स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों के सहयोग से या फिर मुख्य रूप से एसएन मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग और बाल रोग आईसीयू के समन्वय से संचालित किया जाता है। साथियों, इस दुग्ध बैंक का उद्देश्य अस्वस्थ और समय से पूर्व जन्मे या फिर उन नवजात शिशुओं को माँ का दूध उपलब्ध कराना है जिनकी माताएं स्तनपान कराने में असमर्थ हैं या फिर मौजूद नहीं हैं। इसके अलावा स्तनपान कराने वाली माताएं अपने शिशु को दूध पिलाने के बाद बचा हुआ सुरक्षित दूध इस बैंक में दान कर सकती हैं। और हाँ मित्रों, यहाँ पर इकट्ठा किए हुए दूध को संक्रमण मुक्त बनाने और सुरक्षित रखने के लिए आधुनिक मशीनों और तकनीक का उपयोग भी किया जाता है। तो दोस्तों, चर्चा जारी रहेगी। अभी के लिए सुनते हैं ये फिल्मी गीत।

साथियों, आज ज्ञान सागर में हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के ऐसे महान कवि की जिन्होंने अपनी लेखनी से देशभक्ति, संस्कृति और समाज को नई दिशा दी। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की। जी हाँ मित्रों, यही हमारे आज के प्रश्न का उत्तर भी है। दरअसल देश और साहित्य के प्रति उनके अतुलनीय योगदान के कारण उन्हें राष्ट्रकवि का दर्जा दिया गया। श्रोताओं, मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। बचपन से ही उन्हें साहित्य और भारतीय संस्कृति से गहरा लगाव था। साथ ही उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों में देशभक्ति, नैतिकता और सामाजिक चेतना का संचार किया। मैथिली जी की सबसे प्रसिद्ध कृतियों में भारत भारती, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, जयद्रथ वध शामिल हैं। और इन सभी रचनाओं में भारतीय संस्कृति, इतिहास और मानवीय मूल्यों का सुंदर चित्रण मिलता है। मैथिली शरण गुप्त ने खड़ी बोली हिंदी को काव्य की प्रतिष्ठित भाषा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली थी, इसलिए उनकी कविताएं आम जन तक आसानी से पहुंच गईं। इतना ही नहीं मित्रों, उनकी लिखी गई पंक्तियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं, जैसे कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। श्रमिक साथियों, इसमें संदेश है कि कठिन समय में भी हमें निराश नहीं होना चाहिए। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि ईमानदारी, परिश्रम और राष्ट्रप्रेम से ही समाज और देश का विकास संभव है। मैथिली शरण गुप्त राज्यसभा के सदस्य भी रहे और जीवन भर हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति की सेवा करते रहे। इनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 में 78 वर्ष की आयु में हुई। साहित्य जगत में इन्हें दद्दा के नाम से संबोधित किया जाता है और इनकी

0: जयंती को हर वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्रोताओं, आप कहीं मत जाइएगा, हम मिलते हैं अल्प विराम के बाद।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
3: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
2: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: साथियों, अब करते हैं थोड़ा सा मनोरंजन और सुनते हैं ये सुंदर गीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: दोस्तों, आज हमने बात की स्तनपान क्यों जरूरी है, और हमने जाना कि स्तनपान शिशु और माता दोनों के लिए ही बहुत जरूरी है। इसलिए हम आज स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए घरेलू नुस्खों के बारे में जानते हैं। श्रोताओं, माताओं के लिए दूध बढ़ाने और सेहत सुधारने के उपायों में सबसे मुख्य चीज है हमारे रसोई घर में रखी मेथी दाना। जी हाँ, 1 चम्मच मेथी को रात भर पानी में भिगोएं और सुबह खाली पेट उस पानी को पी लें, या फिर मेथी की चाय बनाएं। इसके अलावा खाना खाने के बाद सौंफ चबाएं या सौंफ को पानी में उबाल कर पिएं, इससे पाचन भी अच्छा रहता है। दोस्तों, दलिया या ओट्स खाने से शरीर को आयरन और जरूरी ऊर्जा मिलती है, जो दूध बढ़ाने में मदद करती है। और जीरा या अजवाइन, इन्हें गुनगुने पानी के साथ लेने या भोजन में शामिल करने से पेट ठीक रहता है और ताकत मिलती है, जो हमारी माताओं के लिए बहुत ज़रूरी है। श्रोताओं, हरी सब्जी जैसे पालक, मेथी यानी कि पत्तेदार सब्जियां खाने से कैल्शियम और आयरन मिलता है। साथ में दिन भर खूब सारा पानी पिए और गुनगुना दूध पिए, ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो, भरपूर ताकत हो, जिससे स्तनपान कराने से आने वाली कमजोरी को दूर किया जा सके। और दोस्तों, अब वक्त हो चला है मनोरंजन का, आइए सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कार्यक्रम से विदा लेने के लिए, तो इजाज़त दीजिए अपनी रेडियो साथी छवि गर्ग को। नमस्कार।

0: अभी हमारे श्रमिक श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम मजदूर मंडल। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, 7 बजने को है, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अतहर सईद। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस के भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की सभी 20 दौर की मतगणना पूरी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल उर्फ सतीश पटेल को कुल 55,481 मत मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार भीखाभाई रबारी को 24,851 मत प्राप्त हुए हैं। भाजपा का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर मुख्य मुकाबला इन्हीं दो उम्मीदवारों के बीच में था। वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद रह चुके सतीश पटेल ने लोगों को धन्यवाद दिया और कहा की जनता ने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताया है। पूर्व वरिष्ठ भाजपा विधायक योगेश पटेल के निधन के कारण रिक्त हुई इस सीट पर शुक्रवार को लगभग 37% मतदान दर्ज किया गया था। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट जीत ली है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक वोटों से हराया। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करना है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ये विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि विधेयक न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है।
3: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। समान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
1: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में और संशोधन करना है। इसका लक्ष्य भुगतान में देरी को दूर करना और विवाद समाधान को सरल बनाना है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने, भारतीय सांख्यिकी संस्थान और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा के मुद्दे पर, छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर, गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर सदन में हंगामा किया। गतिरोध जारी रहने के कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया।

0: और कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज FIR को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में सुरक्षा बलों के कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी उस समय हुई जब बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद द्वारा कल तक जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदर्शन में 80 लोग मारे गए हैं। घरेलू शेयर बाजार का सेंसेक्स लगातार चौथे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 554 अंक बढ़कर 78,639 पर, जबकि निफ्टी 391 अंक की बढ़त के साथ 24,774 पर बंद हुआ। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता कल से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो रही है। तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत इस BWF सुपर 300 प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। लोकसभा टुडे पास द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल। द बिल एम्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस ऑफ द एपेक्स कोर्ट फ्रॉम द प्रेजेंट 33 to 37, एक्सक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। In May this year, President Draupadi Murmu had promulgated an ordinance in this regard. Union Minister of Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. He said under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi, the mantra of reform, perform and transform is being effectively implemented. The minister said that the bill is an important step in that ongoing reform process within the judicial sector. Earlier, the Lok Sabha was adjourned several times today amid protests by opposition parties over several issues. When the Lok Sabha began its proceedings at 11 a.m, Speaker Om Birla congratulated athletes for their outstanding performance at the 23rd Commonwealth Games at Glasgow. After that, Mr. Birla tried to take up the question hour, but the opposition members raised the issue of alleged police action during the students' protest. Rajya Sabha has passed the Micro, Small and Medium Enterprises MSME Development Amendment Bill 2026. The bill aims to further amend the MSME Development Act 2006. It aims to address payment delays and simplify dispute resolution. After passing the bill, the Rajya Sabha was adjourned for the day to meet again at 11 a.m. tomorrow. The BJP has retained the Manjalpur Assembly seat in Gujarat's Vadodara district, with its candidate Satendra Bhai Patel defeating Congress nominee Bhika Bhai Rabari by over 30,000 votes in the by-election. Congress has retained the Datia Assembly seat in Madhya Pradesh, with the party candidate Ghanshyam Singh defeating his nearest rival Ashutosh Tiwari of the BJP by over 6,000 votes in by-poll. In Bihar's Bankipur Assembly constituency, Jan Suraj Party candidate Prashant Kishore has defeated BJP's Neeraj Kumar Sinha by over 19,000 votes. Voting for the by-polls to the three constituencies was held on the 30th of last month. Supreme Court today clarified that the Delhi government and various state governments are free to close or withdraw FIRs registered against protesters involved in the recent student protest at Delhi's Jantar Mantar and elsewhere in the country. A three-judge bench led by Chief Justice Suryakant explained that its 28th of July order permitting the prosecution of protesters with criminal antecedents was intended to apply only to those accused of grave and heinous offences. Indian Railways recorded growth of 9% in freight loading in July this year as compared to the corresponding month last year. It loaded 141.3 million tons of freight during July 2026 compared to 129.7 million tons in July last year. The Telecom Regulatory Authority of India, TRAI, today launched the revamped version of TRAI My Call, a mobile application that enables telecom consumers to directly assess and report

0: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय स्टूडियो की घड़ी में 7:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं वार्ता जिसका विषय है हिंदी कविता का शाश्वत सूर्योदय मैथिली शरण गुप्त। वार्ताकार हैं अंकिता तिवारी।
1: हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। यह पंक्ति आज की नहीं अपितु स्वतंत्रता आंदोलन के समय लिखी गई, जिसकी रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के द्विवेदी युगीन महत्वपूर्ण कवि हैं, जिन्होंने एक सामान्य कवि से राष्ट्र कवि तक का सफर तय किया था। आज हम जानेंगे कि वो हिंदी कविता में एक सूर्योदय की भांति कैसे उपस्थित हुए। मैथिली शरण गुप्त अकादमिक अध्ययन से जितना नहीं सीखे, उससे कहीं ज्यादा अधिक जीवन की खुली किताबों से उन्होंने सीखा था। इसलिए उनके साहित्य में लोकहित, सद्भाव का संचार और ज्ञान का प्रकाश सर्वत्र दिखाई देता है। देश में हम देखते हैं कि उस समय नेता अपने जन जागरूकता के लिए लोगों के बीच जाते थे, उन्हें अपने राष्ट्र के हित के लिए उद्बोधित करते थे, और ऐसे समय में भारत भारती जैसी रचना मैथिली शरण गुप्त ने दिया। भारत भारती रचना में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना को जगाने का कार्य किया गया है। उसमें युगीन चेतना को समेटने में मैथिली शरण गुप्त सफल रहे हैं। वो समय ऐसा था जब द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी कह रहे थे, यमुना के किनारे केलु कौतुक करने का अब समय नहीं है। अब समय ये नहीं है कि हम प्रेम प्रसंग लिखें, बल्कि अब समय आ गया है जहां पर जीवन के जुड़े विभिन्न अर्थ से जुड़े हुए, विभिन्न सामाजिक समस्याओं से जुड़े हुए विषयों को लाया जाए। चींटी से लेकर के हाथी तक, ऐसे अनेक विषय हैं जिस पर साहित्य रचा जाना चाहिए। इसका स्वर हम मैथिली शरण गुप्त के भी पंक्तियों में महसूस कर सकते हैं। तो लिखते हैं, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। उचित उपदेश यानी जो हमारे समाज को सही दिशा दिखा सके, हमारे राष्ट्र को परतंत्रता की वेड़ियों से आजाद करा सके, ऐसी चीजों की उपस्थिति होनी चाहिए। मैथिली शरण गुप्त जी बदलती राजनीतिक सामाजिक स्थितियों को साहित्य के बृहत्तर विषय में लाए और इस तरफ उन्होंने महती भूमिका निभाया। साहित्य में नए रूप और नए विषय की तलाश

0: भी चल रही थी। भाषा के स्तर पर खड़ी बोली को पद्य की भाषा बनाया गया। विषय के स्तर पे अब रीतिकालीन परंपरावादी विषयों से हटकर हमारे अपने जनजीवन से जुड़ी विषयों को साहित्य में केंद्र मिला। साहित्य के अभिव्यक्ति के भी अब माध्यम बदले और कहने का ढंग भी बदला, और इन स्थितियों पर खरे उतरे मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त ने 50 से अधिक रचनाएं दी। प्रबंध काव्य, खंड काव्य, गीति काव्य, पद्यनाट आदि बहुत सी विधाओं में उनकी चेतना अभिव्यक्त हुई है। ये विधाएं उनकी बहुआयामिता की द्योतक हैं। साहित्य और समाज के नए रिश्ते की पहचान करने की योग्यता मैथिली शरण गुप्त में थी, इसलिए उन्होंने अतीत, अपने इतिहास और अपने गौरव का महाभाव उपस्थित किया। भारत भारती ऐसी रचना है जिसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य इन तीन पक्षों के साथ भारतीय गौरवशाली परंपरा को लेते हुए वर्तमान स्थिति को सुधारने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था, और ये रचनाएं पाठक को अपनी राष्ट्र के प्रति जागरूक करने में सफल रहा, और ये रचना बहुत सारे भारतवासियों को जागरूक भी किया। उनकी पंक्तियों में हम महसूस कर सकते हैं कि उनका मानस किस स्तर पर इस स्थिति से परेशान हुआ होगा, और वो लिखते हैं, हम कुली थे और काले गगन से मानो गिरे, हम कुली थे और काले गगन से मानो गिरे, पशु समान जहाज में थोड़ी जगह में थे घिरे, भंगियों का काम भी परवश हमें करना पड़ा, और कुत्तों की तरह पापी उधर भरना पड़ा। ये स्थितियां न केवल प्रवासी जगत की संघर्ष को बताती हैं, अपितु अमानवीय स्थितियों का भी वर्णन करती हैं। मैथिली शरण गुप्त की एक और महनीय योगदान जिसे जाने बगैर हम उनके व्यक्तित्व से न्याय नहीं करेंगे। मैथिली शरण गुप्त के महती योगदान है इतिहास के प्रमुख उपेक्षित नारियों का उद्धार। शायद मैथिली शरण गुप्त ने उन नारी पात्रों को मुख्य भूमिका में नहीं लाया होता तो आज हम उस रूप में उन्हें नहीं जानते जैसा आज हमारे समक्ष वे उपस्थित हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने एक निबंध लिखा, कावेर उपेक्षिता उर्मिला, जिससे प्रभावित होकर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता लेख लिखा। इससे प्रेरणा लेकर मैथिली शरण गुप्त ने साकेत की रचना की जिसमें उर्मिला को मुख्य भूमिका मिली। दूसरी रचना जिसमें दूसरी महिला पात्र जिसके संघर्ष को उजागर किया गया उसके रूप में यशोधरा रचना को हम देख सकते हैं। इसकी प्रमुख पात्र बुद्ध की पत्नी गोपा है। तीसरी प्रमुख रचना विष्णुप्रिया है जिसमें चैतन्य की पत्नी विष्णुप्रिया के संबंध में लिखा गया है। ये तीनों रचना उन तीन प्रमुख स्त्री पात्रों को सामाजिक पटल पर उपस्थित करती हैं जिसे हमारे इतिहास में उपेक्षित कर दिया था, लेकिन उनका संघर्ष, उनकी जीवंतता हमारे समाज को एक नई दिशा दे सकती है, ऐसा महनीय कार्य मैथिली शरण गुप्त के द्वारा किया गया। राम को मुख्य भूमिका में लेकर उनकी सत्यनिष्ठा, उनके शील, उनकी उदात्तता को लेकर के हम देख सकते हैं साकेत में ऐसी उपस्थिति है। कृष्ण को मुख्य भूमिका में लेकर द्वापर जैसी रचना लिखते हैं। बुद्ध की करुणा को लेकर के यशोधरा जैसी रचना लिखते हैं। सिख गुरुओं की महत्ता को लेकर के गुरुकुल की रचना करते हैं। मुस्लिम वर्ग से संबंधित काबा और करबला की भी रचना करते हैं, और मार्क्स की पत्नी जेनी को भी लेकर के उन्होंने कविताएं लिखी जिसमें पूंजीवाद के स्वरूप को उन्होंने स्थापित करने का प्रयास किया है। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं न केवल उस समय की सामाजिक यथार्थ को व्यक्त करती है अपितु मानवीय चेतना, मानवीय संवेदना को बनाए रखने में भी महती भूमिका निभाती है। मैथिली शरण गुप्त आज हमारे बीच सशरीर उपस्थित तो नहीं है, परंतु उनके विचार उनकी रचनाओं में समाहित है जिसे पढ़ने, गुनने और समझने की जरूरत है। हमें उन्हें बार बार पढ़ना चाहिए इसलिए कि वो हमारी मानसिक चेतना को परिष्कृत करती है। मनुष्यता की बात करते हुए उनकी ये पंक्ति सुनी जानी चाहिए, मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए जिए, मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए जिए, मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे। ये पंक्तियां वही बोल सकता है जिसमें विश्व बंधुत्व की चेतना हो और वो समस्त मानव जाति को एक बेहतर दिशा प्रदान करना चाहता हो।
1: श्रोतो, अभी आप सुन रहे थे वार्ता, हिंदी कविता का शाश्वत सूर्योदय, मैथिली शरण गुप्त।

0: वार्ताकार थी अंकिता तिवारी। इसी के साथ विविधा कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। अगला प्रसारण आप सुनेंगे लखनऊ केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
2: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
1: सुगंध, क्या हो रहा है?
2: बिल हो रहा है।
1: चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
3: आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
5: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति

0: कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मॉनसून सत्र आज से शुरू। मुख्यमंत्री ने विपक्ष से सार्थक चर्चा करने का किया आह्वान। कल पेश होगा अनुपूरक बजट। लखनऊ में आज से ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की दो दिवसीय बैठक का हुआ शुभारंभ। सांख्यिकी के प्रसार और प्रणालियों में नवाचार से आपसी सहयोग को बढ़ावा देने पर दिया गया जोर। सावन माह के पहले सोमवार पर प्रदेश भर के शिव मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। वाराणसी में श्रद्धालुओं और कांवड़ियों पर की गई पुष्प वर्षा। और प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने जताया अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन विधानसभा में वर्तमान विधानसभा के सदस्य रहे आलम बदी के निधन पर शोक जताया गया। इसके साथ ही 21 पूर्व सदस्यों को भी श्रद्धांजलि दी गई। सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीते 9 वर्ष में संवाद और जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों की समीक्षा करने के बाद बनी योजनाओं के माध्यम से ही सरकार बेहतर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सदन में होने वाली चर्चा और सुझावों पर काम कर सरकार आज उत्तर प्रदेश के प्रति लोगों की धारणा बदल सकी है और इसे रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बनाना संभव हो सका है। श्री योगी ने कहा कि इस बार भी सभी सदस्यों से आग्रह किया गया है कि सदन के समय का बेहतर उपयोग करते हुए हर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर सदन में चर्चा की जाए।
5: इस प्लेटफॉर्म का बेहतर उपयोग हो, यह बीजेपी के नेतृत्व में चलने वाली एनडीए सरकार की सदैव से प्राथमिकता रही है। डबल इंजन की सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य भी कर रही है। पिछले 9 वर्षों में इसी संवाद से जनप्रतिनिधियों के द्वारा उठाए गए मुद्दों की समीक्षा करने के उपरांत बनी हुई योजनाओं के माध्यम से ही हम प्रदेश में कुछ बेहतर करने का प्रयास कर पाए हैं। उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदलने में, आमूलचूल परिवर्तन करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है।
4: इस दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि सरकार 1 से 1.5 सप्ताह में आउटसोर्स कमीशन को लागू करने के साथ ही न्यूनतम मानदेय सुनिश्चित करने जा रही है। कल सदन में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। उधर विधान परिषद में समाजवादी पार्टी सदस्यों ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे में अनियमितता का मुद्दा उठाया। जवाब में नेता सदन और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार की ओर से की जा रही कार्रवाई से अवगत कराया। सरकार के उत्तर से संतुष्ट न होने पर सपा के सदस्यों ने वेल में जाकर नारेबाजी की। विधान परिषद में प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेतर कर्मचारियों की तरह ही सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों को भी कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ दिए जाने का मुद्दा भी उठा। इस पर नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार जनहित के कार्यों को लेकर प्रतिबद्ध है और इस मुद्दे पर विचार करेगी।
6: शिक्षकों के लिए हमारी सरकार ने इस बीच माननीय सभापति जी काम किया है, कैशलेस सहित, शिक्षा मित्रों सहित, अनुदेशकों सहित कितने बड़े बड़े कदम उठाए। कोई भी अगर छूटा होगा तो मैं आपके माध्यम से जरूर कहना चाहता हूँ कि इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके हम लोग कोई छूटे ना, कोई रूठे ना, कोई टूटे ना, इस लक्ष्य में काम कर रहे हैं।
4: लखनऊ में आज से ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो गई है। उद्घाटन सत्र के दौरान ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के एनएसओ प्रमुख मौजूद रहे।

0: बैठक में ब्रिक्स संयुक्त सांख्यिकी प्रकाशन जीएसपी 2026 का मसौदा और इसका संक्षिप्त संस्करण भी जारी किया गया। बैठक में सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव और ब्रिक्स सांख्यिकी ट्रैक के अध्यक्ष डॉक्टर सौरभ गर्ग ने राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालियों के आधुनिकीकरण, प्रशासनिक डेटा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के उपयोग और गोपनीयता मानकों को बेहतर बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तकनीकी के आदान प्रदान और साझा अनुभवों के माध्यम से ब्रिक्स देशों का उद्देश्य डेटा की कमी को दूर करना, साक्ष्य आधारित निर्णय लेना और भविष्य के लिए लचीली सांख्यिकी प्रणालियां बनाना है। सभी देशों ने ब्रिक्स सांख्यिकी ट्रैक के तहत सहयोग को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता बैठक में दोहराई। प्रशासनिक डेटा की क्षमता और विकसित होते डेटा पारिस्थितिकी तंत्र में एआई की तैयारी विषय पर दो विशेष सह कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आज ग्रेटर नोएडा में आयोजित आत्मनिर्भर भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश के साथ ही देश प्रगति के पथ पर है। आज उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हो चुका है और दुनिया भर की बड़ी कंपनियां नोएडा में निवेश कर रही हैं।
1: प्रधानमंत्री ने गरीबों को पैर से खड़ा करने का काम किया है, उसको भी हमें याद रखने की आवश्यकता है। नागरिक
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज आगरा के डॉक्टर भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय का 92वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। समारोह में 64 मेधावी विद्यार्थियों को 88 पदकों से सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि डॉक्टर आंबेडकर ने लोकतंत्र को केवल शासन प्रणाली नहीं बल्कि जीवन जीने का एक मूल्य मंत्र दिया, जहां प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा सर्वोपरि है। सावन माह के पहले सोमवार पर प्रदेश भर के शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बाबा के जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु और कांवड़िए कतारों में लगे हैं। प्रदेश सरकार ने वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, मेरठ, बागपत, कानपुर, आगरा और संभल सहित कई जिलों में सुरक्षा, सफाई, पेयजल और आवागमन को लेकर व्यापक तैयारियां की हैं। भगवान राम की नगरी अयोध्या में भोर से ही श्रद्धालु सरयू में स्नान कर प्राचीन नागेश्वरनाथ मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक कर रहे हैं। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस बल, बैरिकेडिंग और निगरानी की विशेष व्यवस्था की गई है। प्रयागराज में शिव भक्ति के साथ नारी शक्ति की भी बड़ी सहभागिता देखने को मिल रही है, जहां बड़ी संख्या में महिला शिव भक्त गंगा यमुना का जल लेकर काशी के लिए प्रस्थान कर रही हैं। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम को इस अवसर पर विशेष रूप से सजाया गया है। यहां बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया है और श्रद्धालुओं और कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा भी की गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: सावन के प्रथम सोमवार पर धर्म नगरी काशी पूरी तरह शिवमय उठी। तड़के ब्रह्म मुहूर्त से ही श्री काशी विश्वनाथ धाम में बाबा विश्वेश्वर के दर्शन और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं। हर हर महादेव और बोलबम के जय घोष से पूरा शहर भक्तिमय वातावरण में डूबा हुआ है। गंगा द्वार से बड़ी संख्या में कांवड़िए, महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे कतारबद्ध होकर बाबा के दरबार में पहुंचकर दर्शन और जलाभिषेक कर रहे हैं। डाक बम कांवड़ियों के लिए अलग लेन तथा भदोही से वाराणसी तक एक लेन कांवड़ यात्रा के लिए सुरक्षित रखी गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए वीआईपी प्रोटोकॉल भी स्थगित रखा गया है। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
0: इधर गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदर ने सभी स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 4 अगस्त से 12 अगस्त तक अवकाश घोषित कर दिया है। ये निर्णय कांवड़ यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। चेहलुंग के मद्देनजर बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, भूलभुलैया जैसे लखनऊ के प्रमुख ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल आम पर्यटकों के लिए बंद रहेंगे।

0: हुसैनाबाद और संबद्ध ट्रस्ट ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई जनपदों में मध्यम से भारी बारिश हुई है। भारी बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण बदायूं में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। फरुखाबाद में गंगा, लखीमपुर खीरी में शारदा और बाराबंकी और अयोध्या में घाघरा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के कई जनपदों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मॉनसून सत्र आज से शुरू। मुख्यमंत्री ने विपक्ष से सार्थक चर्चा करने का किया आह्वान। कल पेश होगा अनुपूरक बजट। लखनऊ में आज से ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक का हुआ शुभारंभ। सांख्यिकी के प्रसार और प्रणालियों में नवाचार से आपसी सहयोग को बढ़ावा देने पर दिया गया जोर। सावन माह के पहले सोमवार पर प्रदेश भर के शिव मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। वाराणसी में श्रद्धालुओं और कांवड़ियों पर की गई पुष्प वर्षा। और प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने जताया अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूं, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: बड़ी बहू, ये तुम्हारे ना
6: इतनी भी क्या जल्दी थी।
5: अरे और छोटी, ये तुम्हारे ना, और ये
6: मेरी गुड़िया के नाम।
7: और दादी,
5: हाँ,
7: आपके नाम?
8: सब कुछ, मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट, इन्हें ही तो नॉमिनी।
9: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे प्रकृति की। जी हां, जो प्रकृति साल भर अपने रूप बदल बदल कर हमारे सामने आती है। जानते हैं श्रोताओं, प्रकृति का सबसे खूबसूरत रूप श्रावण मास में होता है। जी हां, जब हरियाली के रूप में हरी धानी जो चूनर ओढ़कर एक दुल्हन के रूप में 16 श्रृंगार करके सज सवर कर प्रकृति सामने आती है। चारों तरफ खुशी का माहौल, रिमझिम रिमझिम गिरती बूंदे, लहलाती फसलें, हर ओर पानी, जलाशय, नदी सब भरे हुए। श्रोताओं, ये जो खुशियां हैं वैसे तो प्रकृति हमें हमेशा देती है, भगवान ने उपहार स्वरूप भी हमें दिया है, लेकिन इस जो मास का यानी हम बात कर रहे हैं श्रावण मास की, तो ये कुछ खास है। आज इसी विषय पर हम आपसे बातें करेंगे। साथियों, भारतीय संस्कृति में

वैसे तो हर एक ऋतु का, हर एक महीने का अपना विशिष्ट धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व तो होता ही है। लेकिन श्रावण मास की बात करें तो ये अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। पता है क्यों? क्योंकि भगवान शिव की आराधना के लिए ये महीना समर्पित है। श्रोताओं, वर्षा ऋतु के मध्य में आने वाला ये महीना प्रकृति की हरियाली, शीतलता और नवजीवन का भी संदेश देता है। श्रावण मास, जिसे हम सावन भी कहते हैं, श्रोताओं, ये केवल धार्मिक अनुष्ठानों का समय नहीं है, बल्कि ये मनुष्य और प्रकृति के बीच गहरे संबंध, सामाजिक समरसता, पारिवारिक एकता और आध्यात्मिक जागरण का भी प्रतीक है। श्रोताओं, भारतीय जनजीवन में सावन का आगमन आनंद, उल्लास और भक्ति का संदेश लेकर आता है। खेतों में लहलाती फसलें, पेड़ों पर झूलते झूले, लोकगीतों की मधुर ध्वनि और शिवालयों में गूंजता हर हर महादेव का जय घोष इस मास की विशेष पहचान है। श्रुतो, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार अगर हम बात करें तो श्रावण मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है, समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला, तब संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस विष का पान किया। विष की तीव्रता को शांत करने के लिए देवताओं ने शिवजी पर जल अर्पित किया। तभी से सावन में शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद और बेलपत्र अर्पित करने की परंपरा प्रचलित हुई। मान्यता ये भी है कि सावन में श्रद्धा पूर्वक शिव पूजा करने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त हो जाती है। श्रोताओं, इसीलिए इस महीने में शिव मंदिरों में भक्तों की विशेष भीड़ रहती है। इसके अलावा इस जो सावन के प्रत्येक सोमवार जो आते हैं श्रोताओं, इसका भी एक विशेष धार्मिक महत्व है। श्रद्धालु इस दिन व्रत रखकर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि और पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं, जबकि अविवाहित कन्याएं योग्य जीवन साथी की प्राप्ति की कामना से शिव पार्वती की पूजा करती हैं। श्रोताओ, भोले बाबा, क्योंकि वो बहुत भोले हैं और जो भी कुछ उनसे सच्चे मन से मांगते हैं वो मिल जाता है। फिर चाहे वो अपने किसी से मिलने की बात हो, किसी से रूठे हुए को मिला मनाने की बात हो, शिव शंकर से जो कहा वो मिला, कुछ इस तरह है।

श्रोतो, सावन के महीने में सबसे प्रसिद्ध जो धार्मिक परंपराओं में कांवड़ यात्रा है। जी श्रोताओ, देश भर से लाखों शिव भक्त हरिद्वार, गंगोत्री, गौमुख, सुल्तानगंज जैसे पवित्र तीर्थों से गंगाजल लेकर पैदल यात्रा करते हैं और अपने निकटवर्ती शिवालयों में शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। साथियों, कांवड़ यात्रा केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि अनुशासन, सेवा, त्याग, धैर्य और सामूहिक सहयोग का भी एक उत्कृष्ट उदाहरण देता है। इस यात्रा के दौरान अनेक सामाजिक संगठन यात्रियों की सेवा में भोजन, जल, चिकित्सा और विश्राम की व्यवस्था करते हैं, जिससे सेवा भावना का भी विकास होता है। श्रोताओ, सावन के महीने में ये हम सभी जानते हैं कि धरती हरियाली से ढक जाती है, नदियां और तालाब जल से भर जाते हैं, वातावरण चारों तरफ अत्यंत मनोहारी हो जाता है। साथियों, भारतीय संस्कृति में प्रकृति को ईश्वर का स्वरूप माना गया है, इसलिए इस महीने में वृक्षारोपण, जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण का भी विशेष महत्व बताया गया है। साथियों, प्रकृति का यह नव जीवन मनुष्य को भी नवीन ऊर्जा प्रदान करता है। वर्षा के कारण कृषि कार्यों में भी तेजी आती है और किसानों के जीवन में आशा का संचार होता है। इस प्रकार सावन कृषि प्रधान भारतीय समाज के लिए आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैसे भी श्रोताओ, जब सावन झूम कर आता है तो चारों ओर सभी लोग, क्या मनुष्य, क्या जीव जंतु, क्या पशु पक्षी, सभी लोग झूम जाते हैं।

श्रोताओ, सावन के महीने में इसलिए भी एक ये खास बात है कि इसमें कुछ प्रमुख पर्व आते हैं जो हमें कोई ना कोई संदेश देते हैं, जैसे इस महीने में आने वाली हरियाली तीज। श्रोताओ, ये पर्व विशेष रूप से महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। वे भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। एक त्योहार आता है नागपंचमी। श्रोताओ, इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है और ये पर्व प्रकृति और जीव जंतुओं के संरक्षण का संदेश भी देता है। बात करें तो रक्षाबंधन की, श्रोताओ, भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक ये पर्व भी प्राय इसी सावन में पूर्णिमा को मनाया जाता है। श्रोताओ, अनेक वैदिक परंपराओं में श्रावणी उपाकर्म का जो पर्व है वो यज्ञोपवीत परिवर्तन और वेद अध्ययन का भी विशेष महत्व बताता है। श्रोताओ, ये सभी पर्व भारतीय संस्कृति की विविधता और समृद्धि परंपराओं को प्रदर्शित करते हैं। श्रोताओ, सावन केवल बाहरी पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आत्मशुद्धि और आत्मचिंतन का भी अवसर है। उपवास, संयम, ध्यान, जप और पूजा के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को पवित्र बनाता है। इस मास में क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और लोभ जैसे दुर्गुणों का त्याग कर प्रेम, करुणा, सेवा और सदाचार को अपनाने की प्रेरणा दी जाती है। साथियों, भगवान शिव का स्वरूप स्वयं हमें सादगी, त्याग, समानता और सहिष्णुता का संदेश देता है। वे देवों और असुरों, अमीर और गरीब सभी के आराध्य हैं। इसलिए सावन का वास्तविक संदेश मानवता, संभाव और विश्व कल्याण की भावना को अपनाना है। श्रोताओ, आधुनिक जीवन की व्यस्तता और तनाव के बीच सावन का महीना हमें आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। ये महीना हमें अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ता है और परिवार के साथ धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का भी अवसर देता है। साथियों, आज पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। ऐसे समय में सावन का संदेश प्रकृति से प्रेम, जल का संरक्षण, वृक्षारोपण और जीवों के प्रति करुणा अत्यंत प्रासंगिक है। श्रोताओ, यदि हम सावन के मूल संदेश को अपने जीवन में अपनाएं तो समाज अधिक संवेदनशील, संतुलित और पर्यावरण के प्रति जागरूक बन सकता है। साथियों, सावन मास भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिक चेतना, धार्मिक आस्था, प्राकृतिक सौंदर्य और सामाजिक एकता का अद्भुत संगम है। यह महीना भगवान शिव की भक्ति

प्रकृति के प्रति सम्मान, परिवार के प्रति प्रेम और समाज के प्रति सेवा भावना का संदेश देता है। हमें सिखाता है कि सच्ची पूजा केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने विचारों, व्यवहार और कर्मों को पवित्र बनाना ही वास्तविक आराधना है। साथियों, यदि प्रत्येक व्यक्ति को सावन मास के आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व को समझते हुए अपने जीवन में सद्भाव, संयम, सेवा, पर्यावरण संरक्षण और मानवता के आदर्शों को अपनाए, तो यकीन मानिए यही सावन का वास्तविक संदेश है और यही भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर भी है। तो आइए सुनते हैं एक और सावन पर प्यारा सा ये गीत।

0: करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

तो इसी के साथ कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर। इस समय स्टूडियो की घड़ी में 8 बजने को है। अगला प्रसारण आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से।

समिति से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारुल हक। लोकसभा ने उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने के प्रावधान वाला विधेयक आज पारित किया। हालांकि विपक्ष के हंगामे के कारण इस पर चर्चा नहीं हो सकी। सरकार ने विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच ही भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 भी पेश किए। राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों को लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत विभिन्न विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बाधित रही और दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2:10 पर ही बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद 2 बजे शुरू हुई तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। सदन ने विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच ही ध्वनिमत से बिना चर्चा के विधेयक को पारित किया। इससे पहले सदन ने इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा मई में लागू किए गए अध्यादेश को नामंजूर करने के तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय के संकल्प को अस्वीकृत कर दिया। सदन ने विधेयक पर कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधन को भी खारिज कर दिया। विधेयक को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश करते हुए मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार श्रृंखला की कड़ी है, जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। मेघवाल ने मानसून सत्र के पहले दिन 20 जुलाई को सदन में ये विधेयक पेश किया था। इसी साल मई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से संबंधित विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके तुरंत बाद सरकार अध्यादेश लेकर आई थी। अध्यादेश के बाद बढ़ाई गई स्वीकृत संख्या के आधार पर उच्चतम न्यायालय में 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या इससे पहले 2019 में बढ़ाई गई थी। उस समय प्रधान न्यायाधीश को छोड़कर न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 30 से बढ़ाकर 33 की गई थी। मेघवाल ने कहा कि स्वतंत्र भारत में शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई और अगस्त 1956 में पारित विधेयक के माध्यम से प्रधान न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीशों की संख्या कुल संख्या 11 की गई। उन्होंने कहा कि उसी मूल भावना को देखते हुए और लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या अब 34 से बढ़ाकर 38 की गई है। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक में भारतीय सांख्यिकी संस्थान को नया वैधानिक ढांचा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। ये विधेयक वर्ष 1959 के पुराने अधिनियम का स्थान लेगा ताकि आधुनिक शैक्षणिक और शोध जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसके तहत संस्थान को एक कॉरपोरेट निकाय के रूप में स्थापित करने और उसके प्रशासनिक एवं अकादमिक ढांचे को मजबूत करने का प्रावधान है। विधेयक में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति संस्थान के विजिटर होंगे और इसमें एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए प्रावधान है जो इसका प्रमुख नीतिगत कार्यकारी निकाय होगा। पिछले बजट सत्र के दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने संसद को सूचित किया था कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI को एक निगमित निकाय के रूप में शामिल करने और इसके प्रभावी संचालन के लिए एक ढांचा प्रदान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया।

जिसका उद्देश्य अदालतों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया को आधुनिक तथा पहले से अधिक स्पष्ट बनाना है। ये विधेयक औपनिवेशिक काल के 125 वर्ष पुराने बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम 1891 का स्थान लेगा। प्रस्तावित कानून में बैंककार बही की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर डिजिटल क्लाउड आधारित और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया है। विधेयक में अदालतों के समक्ष डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में पेश करने तथा उनके प्रमाणन के लिए स्पष्ट और एक समान नियम निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बैंक अधिकारियों को बिना ठोस आधार के बार बार अदालतों में तलब किए जाने से बचाने के लिए विशेष कारण परीक्षण का प्रावधान भी किया गया है। लोकसभा की आज सुबह बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता को उद्देश्य उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इसके बाद जब उन्होंने प्रश्नकाल शुरू कराया तो विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि आप नियोजित तरीके से सदन नहीं चलाना चाहते। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है, कृपया प्रश्नकाल चलने दें। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने बैठक दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। इसके बाद दोपहर 12 बजे और फिर अपराह्न 2 बजे भी सदन में हंगामे की स्थिति बनी रही और कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई की हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण आज लगातार 11वें दिन भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज नीट प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। हंगामे के बीच सदन ने संक्षिप्त चर्चा के बाद एमएसएमई क्षेत्र से जुड़े एक महत्वपूर्ण विधेयक को पारित कर दिया। सदन की बैठक सुबह 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने ग्लासगो में संपन्न राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इन खेलों में भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। सभापति ने उम्मीद जताई कि ये खिलाड़ी आगे भी अपनी मेधा से देश को गौरवान्वित करेंगे। इसके बाद सभापति ने शून्यकाल शुरू करते हुए मुद्दे उठाने के लिए सदस्यों के नाम पुकारे। इसी दौरान विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। हंगामे के कारण कुछ सदस्यों ने तख्तियां दिखाई, जिस पर आपत्ति जताते हुए सभापति ने कहा कि सदन में तख्तियां नहीं दिखाई जा सकती। इसके बाद हंगामे के बीच सभापति की अनुमति से भाजपा की दर्शना सिंह ने स्वीप एपनिया का मुद्दा उठाते हुए कहा कि एक अनुमान के अनुसार भारत में करीब 90 करोड़ लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन जागरूकता के अभाव में लोग इसके खतरों से अनजान हैं। उन्होंने कहा कि स्लीप एपनिया नींद से जुड़ी एक गंभीर समस्या है, जिसमें सोते समय बार बार सांस रुकती और शुरू होती है। भाजपा सदस्य ने इस बीमारी को लेकर जागरूकता फैलाने की मांग की। इसी पार्टी की अलका गुर्जर ने राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के आसींद के पास स्थित भगवान देव नारायण की पवित्र जन्म और प्राकाट्य स्थली मालासिरी डोंगरी के विकास का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि स्थान देश के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है, जहां हर साल दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए कई सुझाव दिए। मनोनीत सदस्य उज्ज्वल निकम ने अदालतों में लंबित मामलों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मामलों की सुनवाई में विलंब का एक कारण उनकी अधिक संख्या भी है। इस बीच सदन में हंगामा जारी रहा, जिसके कारण सभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। बैठक दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर उप सभापति हरिवंश ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू करने के लिए कहा। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने फिर से नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। उपसभापति की अनुमति से नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोलते हुए राम मंदिर अयोध्या में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाना चाहा, लेकिन इसकी अनुमति नहीं मिली। सदन के नेता जेपी नड्डा ने भी आसन से अनुरोध किया कि विधेयक पर चर्चा शुरू हो चुकी है तथा किसी अन्य विषय पर बोलने की अनुमति नहीं दी जाए। इसके बाद उपसभापति ने कांग्रेस के अजय माकन से अपनी बात रखने के लिए कहा, किंतु माकन विधेयक के बजाय

अन्य विषयों पर बोलने लगे। सदन में मौजूद संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि आसन की ओर से बार बार विधेयक पर बोलने के लिए कहा गया, लेकिन विपक्षी सदस्य विषय को भटकाते हैं। उन्होंने माकन के संबोधन को कार्यवाही से निकालने की मांग की। हंगामे के बीच एमएसएमई विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के सुमित्रा वाल्मीकि ने कहा कि समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये विधेयक लाया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों का हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है और ये विधेयक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बेहद उपयोगी है। तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन ने कहा कि एमएसएमई की मदद से बेरोजगारी दूर की जा सकती है। बीजत के डॉक्टर संतृप्त मिश्रा ने कहा कि जीडीपी में एमएसएमई का 35% योगदान रहता है, लेकिन इसकी राह आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि मूल विधेयक 2026 में आया था और 20 साल बाद इसका संशोधन आया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान एमएसएमई क्षेत्र में बहुत बदलाव हो चुका है। विधेयक में बड़ी चुनौतियों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोल्ला बाबू राव ने कहा कि विधेयक में मध्यस्थता और फैसलों के त्वरित निपटारे के लिए नए नियम तय किए गए हैं, जो सराहनीय कदम है, लेकिन इन नियमों का पालन भी जरूरी है, अन्यथा न्याय मिलने में देरी होगी। अन्ना द्रमुक के एम थंबीदुरई ने कहा कि देश के विकास के लिए एमएसएमई जरूरी है। उन्होंने केंद्र से मांग की कि वह तमिलनाडु में एमएसएमई कार्यक्रम को सहयोग दें। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीरालाल जैन ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि एमएसएमई हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और ये विधेयक उसे शक्ति प्रदान करेगा। तेलुगु देशम पार्टी के मस्तान राव यादव वीड़ा ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि इसके प्रावधान दर्शाते हैं कि लघु कंपनियों के लिए सुचारू व्यावसायिक संचालन को बढ़ाने पर सरकार निरंतर ध्यान दे रही है। बीआरएस के रविचंद्र बद्दी राजू ने कहा कि विधेयक मध्यस्थता और मध्यस्थता कार्यवाही को ऑनलाइन माध्यमों से संचालित करने की अनुमति देता है, जिससे विवादों का समाधान तेजी से अधिक सुलभ और कुशल तरीके से हो सकेगा। बहुजन समाज पार्टी के रामजी ने कहा कि विधेयक में उन बच्चों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है जो एमएसएमई सेक्टर में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कमजोर वर्ग के लोगों को निजी क्षेत्र में भी आरक्षण देने पर विचार करे। चर्चा में यूपीएलएल के प्रमोद बोरो, भाजपा के संजय सेठ, कांग्रेस के नीरज डांगे, प्रवीण चक्रवर्ती और बीजू जनता दल की सुलता देव ने भी हिस्सा लिया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र को दिए जाने वाला ऋण वर्ष 2014 से कई गुना बढ़ा है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र की मौजूदा चुनौतियों का समाधान करना, प्रशासनिक ढांचे में सुधार करना, व्यापार भुगतान में सुधार करना और नियमों के अनुपालन को बढ़ावा देने का उद्देश्य है। श्री मांझी ने कहा कि इस विधेयक में न केवल एमएसएमई की परिभाषा में सुधार किया गया है, बल्कि इसके टर्नओवर की सीमा को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर 39% हो गई है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसी के साथ विधेयक पर लाए गए विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को सदन ने ध्वनिमत से खारिज कर दिया। इस दौरान विपक्षी सदस्य लगातार हंगामा एवं नारेबाजी करते रहे। सदन में व्यवस्था बनते न देख उपसभापति हरिवंश ने करीब 3:30 बजे बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। सरकार ने लोकसभा में कई लिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 उच्च शिक्षा में पहुंच, समानता, किफायती शिक्षा और समावेशन पर विशेष बल देती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार सभी विद्यार्थियों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आने वाले छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से पात्र विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, जिनका क्रियान्वयन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जाता है। इनका प्रशासन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इन छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित

0: अभिभावकीय आय सीमा तथा योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के सभी पात्र विद्यार्थियों को लाभ प्रदान किया जाता है। उच्च शिक्षा विभाग प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन पीएम यूएसपी योजना का संचालन करता है। इन योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के पात्र विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है, जैसा कि योजना के दिशा निर्देशों में निर्धारित है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: दशमलव एक मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, प्रस्तुत है देशभक्ति पर एक रचना। रचना है असरार अकबरावादी की। संवेद स्वर में आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

श्रोताओं, संगीत स्वर में अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति पर एक रचना। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। अगला प्रसारण आप सुनेंगे लखनऊ केंद्र से।

0: कंपनी ने काफी कार्य किया। राजनीतिक होने के साथ उनमें समर्पण की भी भावना थी। कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा के सदस्य ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सदन के वरिष्ठ और वयोवृद्ध सदस्य आलमबदी एक कुशल राजनीतिज्ञ थे। उनके निधन से इस सदन ने एक कर्मठ सदस्य को खो दिया। कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के सदस्य संजय निषाद और कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि उनकी पहचान उनकी ईमानदारी और सादगी थी। जनसत्ता दल के सदस्य विनोद सरोज ने भी आलमबदी के निधन पर सदन में अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। दलीय नेताओं के बाद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि आलमबदी के निधन पर वे उनके गांव भी गए थे। उनका रहन सहन काफी सामान्य था। वे सदन में हमेशा क्षेत्र के विकास का मुद्दा उठाते थे। आज ही विधानसभा में 21 पूर्व सदस्यों के निधन पर भी शोक व्यक्त किया गया। नेता सदन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में पूर्व विधायक भोला पांडे, अमिताभ लवानिया, जगन्नाथ चौधरी, राम प्यारे आजाद, गोपीनाथ वर्मा, यशपाल सिंह, राधेश्याम भारती, संग्राम सिंह, हरिनारायण राजभर, भगवत दयाल, अरुण कुमार मुन्ना, ओमवती, मोहर सिंह, अफसर यू आजाद, तेजभान सिंह, रुद्र प्रताप सिंह, प्यारेलाल शंखवार, ओंकार सिंह, राजेंद्र त्रिपाठी और हनुमंत सिंह के निधन की सूचना देते हुए शोक जताया। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने वर्तमान सदस्य के निधन की सूचना के साथ पूर्व सदस्यों के नाम शामिल किए जाने पर आपत्ति दर्ज कराई। उनका कहना था कि पूर्व में ये परंपरा रही है कि जिस दिन किसी वर्तमान सदस्य के निधन की सूचना दी जाती है उस दिन पूर्व सदस्यों की सूचनाएं नहीं ली जाती हैं। इस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि ऐसा नहीं है, पूर्व में भी इस तरह के कई दृष्टांत हैं, इसीलिए ये कोई नई परंपरा नहीं है। वर्तमान और पूर्व सदस्यों के निधन की सूचना के बाद 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि व्यक्त की गई और सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई।
1: ये थी विधानसभा की समीक्षा। अब सुनते हैं विधान परिषद की समीक्षा। लेखक हैं मुकुल मिश्रा।
0: विधानमंडल के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज विधान परिषद में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर में चढ़ावा गबन मामले पर सरकार को घेरा और वेल में आकर जोरदार नारेबाजी की। सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने सदन की कार्यवाही को 15 मिनट के लिए स्थगित किया, जिसे बाद में 20 मिनट के लिए और बढ़ा दिया गया। सरकार की ओर से जवाब देते हुए नेता सदन और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि लंबे संघर्ष के बाद रामलला का मंदिर बना है, इसके लिए हमने लड़ाइयां लड़ी। रामलला का दिव्य भव्य मंदिर बना जिसे आने वाली पीढ़ियां देख पाएंगी। हमें मंदिर बनाने पर गर्व है। आज सदन की कार्यवाही पूर्वाह्न 11 बजे वंदे मातरम से हुई। सदन में पहली बार पूर्ण वंदे मातरम का गायन हुआ। इसके बाद सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने सदन में कार्य परामर्शदात्री समिति की संस्तुतियों को सदन की मेज पर रखा। प्रश्न प्रहर शांतिपूर्वक चला। शून्य प्रहर में सभापति ने सदन के पूर्व सदस्य जयप्रकाश चतुर्वेदी के निधन पर शोक व्यक्त किया। सदन ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि व्यक्त की। शून्य प्रहर में भाजपा के डॉक्टर विजय बहादुर पाठक ने नियम 59

0: में वाराणसी स्थित प्राचीन व ऐतिहासिक बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने पर कहा कि सारनाथ बौद्ध परंपरा पवित्र स्थल के रूप में सार्वभौमिक मान्यता प्रदत्त है। ये सदन सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने पर गर्व करता है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद ज्ञापित करता है। इसके साथ ही विजय बहादुर पाठक ने नियम 115 में राजस्व मामलों से संबंधित विषय उठाते हुए लोक अदालत की तर्ज पर राजस्व जन अदालत शुरू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, कब्जा, बेदखली, सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध ढंग से कब्जे से संबंधित वाद बड़ी संख्या में लंबित हैं। इन मामलों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश भी हैं, लेकिन उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदारों पर अत्यधिक प्रशासनिक दायित्वों का भार होने के कारण वर्षों से लंबित वादों के निस्तारण की गति धीमे है, जिस कारण इसका प्रतिकूल प्रभाव किसानों और गरीबों पर पड़ रहा है। शून्य प्रहर में सपा के लाल बिहारी यादव, राजेंद्र चौधरी, डॉक्टर मान सिंह यादव, मुकुल यादव, आशुतोष सिन्हा, बलराम यादव, मोहम्मद जासमीर अंसारी, शाहनवाज खान और शाह आलम ने उत्तर प्रदेश के मंदिरों के प्रबंधन में वित्तीय अनियमितताओं का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। सूचना की ग्राह्यता पर किरण पाल कश्यप ने कहा कि मंदिरों में लोगों की आस्था है, चोरी पकड़ में आ गई, इसकी संपूर्ण जांच कराकर बड़े पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। मुकुल यादव ने कहा कि मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, दान की वस्तु सामग्री का हरण करना पाप होता है, सरकार और पुलिस की कार्रवाई नाकाफी रही है, सिर्फ छोटे लोगों के विरुद्ध काम चलाओ कार्रवाई की गई है। नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने कहा कि केंद्र द्वारा गठित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के 15 सदस्यों में 12 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं, जबकि 3 यूपी सरकार के प्रतिनिधि हैं। सरकार द्वारा सशक्त और निष्पक्ष जांच न होने से लोगों में चोरी की घटना के प्रति रोष है। जवाब देते हुए नेता सदन व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोले। लंबे संघर्ष के बाद रामलला के मंदिर का निर्माण 500 वर्षों बाद हुआ है, इसके लिए हमने लड़ाइयां लड़ी हैं, तब जाकर मंदिर का निर्माण हुआ। उन्होंने कहा कि रामलला का दिव्य भव्य मंदिर बना है, जिसे आने वाली पीढ़ियां देख सकेंगी। हमें मंदिर बनाने पर गर्व है। सरकार का जवाब शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष समेत सपा के सभी सदस्य सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए सदन की वेल में आ गए। सभापति ने सदन को व्यवस्थित करने का निर्देश दिया, लेकिन सदस्य वेल में डटे रहे। तब सभापति ने 15 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। इसके बाद सदन के स्थगन का समय 20 मिनट के लिए और बढ़ा दिया गया। दोबारा सदन शुरू होने के बाद भी सपा सदस्य वेल में नारेबाजी करते रहे और नेता सदन ने सरकार का पक्ष रखा, हालांकि शोर शराबे में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। निर्दलीय समूह के राजबहादुर सिंह चंदेल और डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेतर कर्मचारियों और सेवानिवृत्त शिक्षकों कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ दिए जाने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। नेता सदन केशव मौर्य ने कहा कि सरकार ने शिक्षकों के पक्ष में बड़ी व्यवस्था की है, कोई छूटे नहीं, कोई रूठे नहीं और कोई टूटे नहीं, इसका सरकार ख्याल रख रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले पर मुख्यमंत्री से बात करके कोई न कोई समाधान निकाला जाएगा। हालांकि नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव के हस्तक्षेप पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच इस दौरान कुछ देर के लिए आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहे।
1: अभी आप सुन रहे थे विधान मंडल की समीक्षा, लेखक थे योगेश श्रीवास्तव और मुकुल मिश्रा।
2: इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से किया गया। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण। रात्रि के 8:30 हुए हैं और प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से।

मीडियम वेव 196.1 मीटर पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है चित्रपट संगीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म मेरे महबूब से ये गीत। स्वर दिया था मोहम्मद रफी ने, शकील बदायूनी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था नौशाद ने। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म आरजू का ये गीत। शब्दकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन।

श्रोताओं, लता मंगेशकर के गाए फिल्म दिल एक मंदिर के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने को है। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित। राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास में भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने गुजरात के वडोदरा में मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। जन स्वराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर बिहार के बांकीपुर से विजयी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 19 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया। असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कल रात प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी के कारण स्थिति और बिगड़ी। और युवा साइकिल चालक हर्षिता जाखड़ स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला बनी। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ये विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्याय क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
1: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्याय क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्याय कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
0: राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। हालांकि शोर शराबे के बीच लोकसभा ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। इस विधेयक के तहत उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं हैं। वहीं राज्यसभा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया गया। यह विधेयक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन कर भुगतान में होने वाली देरी की समस्या का समाधान कर विवाद निपटान प्रक्रिया को सरल बनाना है। इसके अलावा भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंक कर बही साक्ष्य विधेयक 2026 आज लोकसभा में पेश किया गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया है। संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने कहा कि विपक्षी सदस्यों को जब मौका दिया जाता है तब वे बोलना नहीं चाहते।
3: सुप्रीम कोर्ट ने जजेस को संख्या बढ़ाने के लिए और राज्यसभा में एमएसएमई का बिल पास किया। विपक्ष में कोई भी ऐसा नहीं बचा जो हिस्सा लेना चाहते थे। हमने सबसे आग्रह किया था कम से कम बिल में हिस्सा तो ले, बाहर जाके कहते हैं कि बोलने के लिए मौका नहीं मिलता है।
0: कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की।
4: लोकतंत्र में बहस होती है और हम जब बहस छेड़ते हैं तो आपका दायित्व होता है या आपका अधिकार होता है कि उसको रिप्लाई दे। अगर मेरी आर्गुमेंट ठीक नहीं है तो आप कहिए कि तुम्हारा गलत है, मेरा सही है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं।
5: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। केंद्र सरकार की ओर से

0: जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। समाचार कक्ष से अतहर सईद।
1: भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर से जीत ली है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया।
2: मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की सभी 20 दौर की मतगणना पूरी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल उर्फ सतीश पटेल को कुल 55,481 मत मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार भीखाभाई रबारी को 24,851 मत प्राप्त हुए हैं। वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद रह चुके सतीश पटेल ने कहा कि जनता ने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताया है। पूर्व वरिष्ठ भाजपा विधायक योगेश पटेल के निधन के कारण रिक्त हुई इस सीट पर शुक्रवार को लगभग 37% मतदान दर्ज किया गया था। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: उधर बिहार में पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में जन सुराज पार्टी उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने जीत हासिल की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार नीरज कुमार को 19,324 वोटों के अंतर से हराया। प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले, जबकि नीरज कुमार को 44,827 मत प्राप्त हुए। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा कुमारी 14,273 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक वोटों से हराया।
3: दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को हराते हुए सीट अपने नाम कर ली है। मतगणना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने हार स्वीकार करते हुए कहा कि पार्टी इस परिणाम की समीक्षा। उन्होंने चुनाव में भीतरघात का भी आरोप लगाया और कहा कि कार्यकर्ताओं को पार्टी की भावना के साथ काम करना चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने कहा कि जनता ने विकास और भरोसे के पक्ष में मतदान किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बेंगलुरु के लोकभवन में एक सादे समारोह में 19 विधायकों को पद की शपथ दिलाई। अब राज्य मंत्रिमंडल में 33 सदस्य हो गए हैं। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 3 जून को 13 अन्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। कांग्रेस द्वारा घोषित एकमात्र महिला विधायक गायत्री शांतिगौड़ा ने आज शपथ नहीं ली। एक अन्य विधायक मनकला वैद्य की जगह अंतिम समय में एसएस मल्लिकार्जुन को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा चरित्र निर्माण, सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण की नींव है। ओडिशा के कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने विश्वविद्यालयों से नैतिक, कुशल और सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बनाने का आह्वान किया।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम उड़ीसा के कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिक्षा सिर्फ ज्ञान हासिल करने का जरिया नहीं है, बल्कि ये चरित्र निर्माण, सामाजिक बदलाव और राष्ट्र निर्माण की नींव है। राष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय से लड़कियों, आदिवासी छात्रों और समाज के पिछड़े वर्गों की शिक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2047 तक विकसित भारत और 2036 तक विकसित ओडिशा के लक्ष्यों को हासिल करने में शिक्षण संस्थान अहम भूमिका निभाते हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और नागरिक विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय नागरिक सेवा दिवस समारोह को संबोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि इससे सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान होगा।
5: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विस दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
1: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ए

0: FHQ कैडर एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है।
1: AFHQ कैडर एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को कंटिन्यूटी, डोमेन स्पेशलिटी और पॉलिसी स्टेबिलिटी भी प्रदान करती है, और इसके साथ ही सिविल मिलिट्री सिनर्जी को सुदृढ़ करने में भी AFHQ एक इम्पॉर्टेंट ब्रिज की भूमिका का निर्वाह करता है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग तथा व्यापार मंत्री लाजीज कुदरतोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि व्यापार, निवेश, दवाइयों, कनेक्टिविटी, डिजिटल प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्रों में बातचीत हुई है। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी व्यवसायों के लिए नए अवसर खोलेगी और साझा समृद्धि में योगदान देगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंध वर्षों पुराने हैं और ये संबंध निर्माण, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित विविध क्षेत्रों में फैले हुए हैं। दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सईदोव के साथ बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में समान विचार हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस फर्जी खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चेतावनी दी है कि यदि दूध में मिलावट को तेजी से नहीं रोका गया तो इससे भारत की 87% आबादी को कैंसर हो जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि WHO द्वारा ऐसी कोई परामर्श जारी नहीं किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में सुरक्षा बलों द्वारा कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। POJK से मिली रिपोर्टों के अनुसार सुरक्षा बलों ने आधी रात को प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करते हुए रावलकोट में गोलीबारी की। एक रिपोर्ट।
2: खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी उस समय हुई जब बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे। कई महिलाएं और बच्चे पिछले 50 दिन से प्रदर्शन स्थल पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों से लोग इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं और अब ये प्रदर्शन पूरे क्षेत्र में तेजी से फैल रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद द्वारा कल तक जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदर्शन में 80 लोग मारे गए हैं। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और राजनीतिक मिशनों से उपलब्ध फुटेज की जांच करने और हिंसा की तत्काल, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए दबाव डालने की अपील की है। ये प्रदर्शन क्षेत्र के लोगों द्वारा बेहतर सुविधाओं और अधिक विकास की मांग के साथ शुरू हुए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ उसकी कोई बातचीत नहीं चल रही है और न ही किसी बैठक की तैयारी है। ये बयान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ मध्यस्थों के जरिए बातचीत होने वाली है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने इस दावे को गलत बताया है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। युवा साइकिलिंग खिलाड़ी हर्षिता जाखड़ ने स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में भाग लिया। हर्षिता इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित। राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने गुजरात के वडोदरा में मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। जन स्वराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर बिहार के बांकीपुर से विजयी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने 19 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कल रात प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी के कारण स्थिति और बिगड़ी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ।

0: आदाब, यह आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फुरकान खान। लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद 33 से बढ़ाकर 37 करने के बिल को मंजूरी दे दी है। बहुत छोटी, छोटी और दरमियाना दर्जे की सनअतों की तरक्की के तरमीमी बिल को राज्यसभा ने पास कर दिया है। असेंबली जिमनी इंतखाबात में जन सुराज के लीडर प्रशांत किशोर ने बिहार की बांकीपुर सीट पर जीत हासिल की है। बीजेपी ने गुजरात के वडोदरा की मुंजलपुर सीट पर अपनी जीत बरकरार रखी है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दातिया सीट पर फिर जीत हासिल की। कर्नाटक के वजीर आला डी के शिवकुमार ने 19 नए वुजरा शामिल करके काबीना में तौसी की है। आसाम, मेघालय, जेली, हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में कल तक बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। पीओजेके में रात में सूरतेहाल अबतर हो गई क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुजाहिरीन पर फायरिंग की जिन्होंने तितर बितर होने से इनकार कर दिया था। नौजवान साइकिलिस्ट हर्षिता झाखर स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स का हिस्सा बनकर पहली भारतीय खातून बन गई हैं। अब खबरें तफसील से। लोकसभा ने आज सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद से मुतालिक तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी। इस बिल का मकसद सुप्रीम कोर्ट में जजों की मौजूदा तादाद 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इन 37 जजों में भारत के चीफ जस्टिस शामिल नहीं हैं। इस साल मई के महीने में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इस बारे में ऑर्डिनेंस जारी किया था। कानून और इंसाफ के मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद से मुतालिक तरमीमी बिल पेश किया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरंदेशी क्यादत में रिफॉर्म यानी इस्लाह, परफॉर्म यानी कारकर्दगी और ट्रांसफॉर्म यानी बदलाव का मंत्र मौसर तरीके से नाफिज किया जा रहा है। जनाब मेघवाल ने कहा कि अदालती शोबे में जारी इस्लाही अमल में यह बिल अहम कदम है।
1: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
0: इससे पहले अपोजिशन पार्टियों की जानिब से मुख्तलिफ मामलों पर एहतजाज के दौरान लोकसभा की कार्रवाई कई मरतबा मुलतवी की गई। लोकसभा की कार्रवाई जब सुबह 11 बजे शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने ग्लासगो में 23वें दौलत मुश्तरका खेलों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर भारतीय खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश की। इसके बाद जनाब बिरला ने वक्फा सवाल चलाने की कोशिश की, तहम अपोजिशन अराकीन ने तलबा के एहतजाज के दौरान की गई मुबैना पुलिस कार्रवाई का मामला उठाया। जनाब बिरला ने अपोजिशन के कुछ अराकन की जानिब से जानबूझकर रखनांदाजी करने पर तश्वीश का इजहार किया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई में अपोजिशन की जानिब से नीट मामले पर तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई समेत मुख्तलिफ मामलों पर हंगामा आरई की वजह से आज एक बार फिर रखना पड़ा। लोकसभा को 3 मरतबा जबकि राज्यसभा को 2 मरतबा मुलतवी करना पड़ा। हंगामा आरई की वजह से दोनों ऐवानों में वक्फा सवाल नहीं चल सका। तहम शोरगुल और हंगामा आरई के दौरान लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया। न्यूज डेस्क से उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: इस दौरान शुमारियात और प्रोग्राम के निफाज के वजीर राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय शुमारियाती इदारा बिल 2026 पेश किया। वहीं वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने बैंकर बही खाता शवाहिद बिल 2026 पेश किया। दूसरी जानिब राज्यसभा ने हंगामा आरई के दौरान माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। इस बिल का मकसद माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट कानून 2006 में मजीद तरमीम करना है। वहीं इस बिल का मकसद अदायगियों में ताखीर और तनाजों के इजाले के तरीक़ेकार को आसान बनाना है। जमहूरिया उज़्बेकिस्तान के उमूर खारजा के वजीर साइदोव बख्तियोर ओदिलोविच ने राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। जनाब ओदिलोविच और उनके वफ्द का राष्ट्रपति भवन में खैर मकदम करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत और उज़्बेकिस्तान के दरमियान गहरे तारीखी, सकाफती और तहजीबी ताल्लुकात हैं जो कदीम तजारती रूट से वाबस्ता हैं। उन्होंने उजागर किया कि फन तामीर, जुबान, रवायती पकवान, मौसीकी और मजहबी रवायात में मुश्तरक सकाफत ने बाहमी शराकतदारी को

मजीद इस्तेहकाम बख्शा है। सदर जमहूरिया ने यह उजागर करते हुए इजहार मसर्रत किया कि उज़्बेकिस्तान के 3,000 से ज्यादा हुक्काम, पेशावर अफराद और तालिब इल्मों ने भारत के तकनीकी और इक्तिसादी तआवुन ITEC प्रोग्राम के तरबियती कोर्सेज और दीगर स्कॉलरशिप प्रोग्राम से इस्तेफादा हासिल किया है। सदर मुर्मू ने मजीद कहा कि 16,000 से ज्यादा भारतीय तालिब इल्म उज़्बेकिस्तान में आला तालीम हासिल कर रहे हैं। उन्होंने वाजे किया कि ये तालिब इल्म दोनों मुल्कों के दरमियान एक पुल के तौर पर काम करते हैं और बाहमी मफाहमत और मजबूत आवाम से आवाम के राब्तों को बेहतर कर रहे हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज उजागर किया कि भारत और उज़्बेकिस्तान के दरमियान बाहमी ताल्लुकात में पिछले बरसों में तौसी हुई है और आज ये बड़ी तादाद में मुख्तलिफ शोबों में मुतनव्वो हैसियत रखते हैं। इनमें तामीर, तवानाई, सेहत और तालीम के शोबे शामिल हैं। दिल्ली में उज़्बेकिस्तान के वजीर खारजा बख्तियोर साइदोव के साथ मीटिंग के दौरान अपने इफ्तिताही कलमात

0: आज ये बड़ी तादाद में मुख्तलिफ शोबों में मुतनव्वो हैसियत रखते हैं। इनमें तामीर, तवानाई, सेहत और तालीम के शोबे शामिल हैं। दिल्ली में उज़्बेकिस्तान के वजीर खारजा बख्तियोर साइदोव के साथ मीटिंग के दौरान अपने इफ्तिताही कलमात में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान तकरीबन $1 अरब की बाहमी तिजारत है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्क बैनुल अक़वामी और इलाकाई मामलात पर, खासतौर पर दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और मुनशियात की नाजायज तिजारत के ज़िम्न में एक जैसे नज़रियात रखते हैं। असेंबली ज़िमनी इंतखाबात ने बीजेपी ने गुजरात के वडोदरा जिले में मंजलपुर नशिस्त पर अपनी जीत बरकरार रखी है। यहां उसके उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस के उम्मीदवार भीखा भाई राबड़ी को 30,000 से ज्यादा वोटों की औसत से शिकस्त दी। ये सीट सीनियर बीजेपी एमएलए और गुजरात के साबिक वजीर योगेश पटेल के इंतकाल के बाद खाली हो गई थी, जहां ज़िमनी इंतखाबात जरूरी हो गया था। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वोटों की गिनती के तमाम 20 दौर मुकम्मल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने, जो सतीश पटेल के नाम से भी मारूफ हैं, 55,481 वोट हासिल किए, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 24,851 वोट मिले। इस सीट के लिए मैदान में सिर्फ दो उम्मीदवार ही थे, जिसे बीजेपी का मजबूत गढ़ समझा जाता है। वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साबिक काउंसलर सतीश पटेल ने कहा कि आवाम ने एक बार फिर बीजेपी में अपना भरोसा जाहिर किया है। जुमे को 260 पोलिंग स्टेशनों पर तकरीबन 37.5% वोट डाले गए थे। इस सीट पर तवील अरसे से बीजेपी के रुकन कानून साज असेंबली योगेश पटेल के इंतकाल के बाद इंतखाब जरूरी हो गया था। आकाशवाणी न्यूज अहमदाबाद से अपर्णा खुन की रिपोर्ट के साथ मैं तौहीद हक्कानी।
0: जन स्वराज पार्टी के बानी प्रशांत किशोर ने बिहार के बांकीपुर असेंबली हलके में जीत हासिल की है। ये सीट बीजेपी का मजबूत गढ़ मानी जाती है, जहां 1995 के बाद से बीजेपी को शिकस्त का सामना नहीं हुआ था। जनाब किशोर ने अपने करीब तरीन बीजेपी के हरीफ नीरज कुमार को 19,000 से ज्यादा वोटों के औसत से शिकस्त दी। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन के राज्यसभा में उनके इंतखाब के बाद ये सीट खाली हो गई थी, जहां ज़िमनी इंतखाबात जरूरी हो गया था। पेश है एक रिपोर्ट।
2: प्रशांत किशोर ने वोटों की गिनती के पहले ही दौर से सबकत बरकरार रखी, जो तमाम 31 राउंड्स तक जारी रही। उन्होंने मजमूई तौर पर डाले गए वोटों में से 49.23% वोट हासिल किए। बीजेपी के नीरज कुमार 34.40% वोट हासिल करके दूसरे मकाम पर रहे, जबकि आरजेडी की रेखा कुमारी को 10.45% ही वोट मिले। इस सीट से बीजेपी के साबिक रुकन असेंबली नितिन नबीन के इस्तीफे के बाद ज़िमनी इंतखाब हुआ है। बीजेपी को 35 साल में बांकीपुर असेंबली हलके में पहली मर्तबा हार का सामना करना पड़ा। ज़िमनी इंतखाब में मजमूई तौर पर 34.31% वोट डाले गए थे, जो साल 2010 में इस हलके के बनने के बाद से सबसे कम औसत रहा। निधि श्री की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में दातिया सीट बरकरार रखी है, जहां ज़िमनी इंतखाब में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने अपने करीब तरीन हरीफ बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 6,000 से ज्यादा वोटों के औसत से हरा दिया। इन तीन हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटिंग पिछले महीने की 30 तारीख को हुई थी। कर्नाटक में गवर्नर थावर चंद गहलोत ने आज बेंगलुरु के राजभवन में 19 कानून साजों को ओहदे का हलफ दिलाया। वजीर आला डी के शिवकुमार, जिन्होंने 3 जून को अपने 13 वजीरों के साथ वजीर आला का ओहदा संभाला था, को काबीना की तौसी के लिए 2 महीनों का इंतजार करना पड़ा। इस तौसी के बाद कर्नाटक काबीना अराकीन की तादाद बढ़कर 33 हो गई। कुछ कानून साजों की जानिब से काबीना में शामिल न किए जाने पर मायूसी जाहिर करने पर वजीर आला डी के शिवकुमार ने कहा कि हर किसी को जगह देना मुमकिन नहीं है। वजीर आला ने इन कानून साजों को मुस्तकबिल में मौका देने की यकीन दहानी कराई। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुल्क के दिफाई इको निज़ाम को मुस्तहकम करने के लिए वजारत दिफा की फौजी और सिविलियन शाखों के दरमियान वसी तर तालमेल की जरूरत पर जोर दिया है। आज नई दिल्ली में 85वें मुसल्ला अफवाज हेडक्वार्टर सिविलियन सर्विसेज के दिन की तकरीबात से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने जोर दिया कि इससे उभरते हुए सिक्योरिटी और तकनीकी चैलेंजों पर मौसर तौर से तवज्जो मरकूज की जा सकेगी। वजीर दिफा ने कहा कि फौजी और सिविल सर्विसेज दोनों मुल्क सबसे पहले के एक अहद पर यकीन रखते हैं, तो जब मकसद कोई वाहिद हो तो निजाम का हर एक जुज्व कौमी इस्तेहकाम में तब्दील हो जाता है।
3: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विस दोनों का एक ही कमिटमेंट है।

0: राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
1: भारतीय रेलवे ने इस साल जुलाई के महीने में पिछले साल इसी महीने के मुकाबले में माल बर्दारी में 9% की नमो रिकॉर्ड की है। जुलाई 2026 के दौरान रेलवे ने 141.3 मिलियन टन की माल बर्दारी की, जो कि पिछले साल जुलाई में 129.7 मिलियन टन थी। ये कारकर्दगी मईशत के कलीदी शोबों में पायदार मुतालबे, नीज माल बर्दारी की लॉजिस्टिक और ऑपरेशन जाती कारकर्दगी को बेहतर बनाने की जारी कोशिशों की अक्कासी करती है। ईरान ने आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान की तर्दीद करते हुए कहा है कि अमरीका के साथ कोई बातचीत जारी नहीं है और किसी तरह की मुलाकातों का कोई मंसूबा नहीं है। इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि सालिसकारों के जरिए आज ईरान के साथ मुजाकरात का प्रोग्राम है। अपने सरकारी तैयारे एयरफोर्स वन पर सवार सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए जनाब ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर और ईरान के साथ सिफारती मसरूफियात की वजह से उन्होंने अपने असल मंसूबे को रोक दिया। इससे पहले जनाब ट्रंप ने इंतहाई शदीद हमले का इंतबाह दिया था। इस दौरान ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने इस दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि अमरीका के साथ कोई बातचीत जारी नहीं है और किसी तरह की मुलाकातों का कोई मंसूबा नहीं है। बकाई ने मजीद कहा कि वजीर खारजा अब्बास अराकची को छोड़कर, जो मजहबी दौरे पर इराक गए हैं, के अलावा सभी ईरानी मुजाकरातकार फिलहाल मुल्क में ही मौजूद हैं। जनाब बकाई ने मजीद कहा कि फिलहाल सिर्फ ओमान के साथ आबनाए हुरमुस के इंतजाम से मुतालिक मुजाकरात जारी हैं। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने आसाम, मेघालय, जेली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है और रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले दो दिन तक ऐसी ही सूरत हाल के कायम रहने की पेशगोई की गई है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले दो से तीन दिनों तक शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अंडमान और निकोबार, छत्तीसगढ़, साहिली कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे, वस्ती महाराष्ट्र, उड़ीसा और जुनूबी अंदरूनी कर्नाटक में जुमेरात तक शदीद बारिश होने का इम्कान है। आंध्र प्रदेश, साहिली कर्नाटक, लक्षद्वीप, शिमाली अंदरूनी कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, जुनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, विदर्भ और शिमाल मशरकी खित्ते में कल गरज चमक के साथ तेज हवाओं के चलने की भी पेशगोई की गई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में सूरतेहाल रात में अबतर हो गई, क्योंकि एहतजाजियों ने तितर पितर होने से इनकार कर दिया और सिक्योरिटी फोर्सेज ने एहतजाज करने वालों पर गोली चला दी। POJK से आने वाली रिपोर्टों के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने आधी रात में एहतजाजियों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया, जिसमें रावलकोट में गोली चलने की खबर दी गई है। नौउम्र भारतीय साइकिलिस्ट हर्षिता झाकड़ ने स्विट्जरलैंड के टूर डी फ्रांस फेम्स का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय खातून बनकर तारीख रकम की। 19 साल हर्षिता ने कल दूसरे मरहले के रस्मी आगाज के दौरान सबर आजमा रेस में अफगानिस्तान, अल्जीरिया, चिली, एथियोपिया के दो साइकिलिस्ट, नामीबिया और युगांडा के खिलाड़ियों समेत 8 होनहार खिलाड़ियों में जगह बनाई। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद 33 से बढ़ाकर 37 करने के बिल को मंजूरी दे दी है। बहुत छोटी छोटी और दरमियाना दर्जे की सनतों की तरक्की के तरमीमी बिल को राज्यसभा ने पास कर दिया है। असेंबली जिमनी इंतखाबात में जनसुराज के लीडर प्रशांत किशोर ने बिहार की बांकीपुर सीट पर जीत हासिल की है। बीजेपी ने गुजरात के वडोदरा की मंजलपुर सीट पर अपनी जीत बरकरार रखी है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दातिया सीट पर फिर जीत हासिल की। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

0: नमस्कार श्रोताओं, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, डिजिटल नागरिक की सुरक्षा। इस विषय पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पवन दुग्गल जी। पवन जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मुकेश, बहुत अच्छा लग रहा है।

0: आपके प्रोग्राम पर आकर।
1: जी दोस्तों, आज फोन हर हाथ में है। यूपीआई, ऑनलाइन शॉपिंग, सरकारी योजनाएं, सब डिजिटल हो गया है। सुविधा के साथ खतरा भी बढ़ गया है। फर्जी कॉल, नकली लिंक, ओटीपी का झांसा, डीप फेक वीडियो, ठग नए नए तरीके अपनाकर हर दिन ला रहे हैं। लेकिन डरिए मत, जागरूक रहिए। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे साइबर फ्रॉड कैसे होता है, उससे बचें कैसे, और धोखा हो जाए तो सहायता कहां मिलेगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस विशेष चर्चा में और जानिए कि साइबर फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। श्रोताओं, आपके मन में इस विषय से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइन्स खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के फोन नंबर 2331-0481-2371-7117-2371-7106 और 2331-4444 पर फोन कर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289-094-044 पर भी भेज सकते हैं। इस पर केवल संदेश भेजें, कॉल ना करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो सबसे पहले पवन जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज भारत में सबसे आम तीन तरह की साइबर धोखाधड़ी कौन सी है? डिजिटल अरेस्ट, ओटीपी फ्रॉड, इन्वेस्टमेंट स्कैम, इनमें नया ट्रेंड क्या है?
0: आज जो नया ट्रेंड है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तड़का लगाकर आता है।
1: जी,
0: आजकल आप जो भी कार्यक्रम या जो भी आप ये साइबर फेंसेस देख रहे हैं
1: जी,
0: उन सब में कहीं ना कहीं मिश्रण हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। उदाहरण के तौर पर आजकल डिजिटल अरेस्ट जो होता है, उसमें भी जितने भी साइबर क्रिमिनल्स हैं वो डिजिटल अरेस्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं। जिस व्यक्ति को आप ऑनलाइन वीडियो पर देखते हैं वो रियल नहीं होता, वो एआई द्वारा जनरेटेड होता है। जो आवाज होती है वो एआई द्वारा जनरेटेड होती है। अल्टीमेट उद्देश्य बहुत क्लियर है कि आपने लोगों को ठगना है, और अब जो ठगाई करनी है वो आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इस तरीके से करनी है कि अगर पुलिस तफ्तीश भी करना चाहेगी
1: तो
0: आप तक पहुंच नहीं पाएगी, और साइबर क्रिमिनल मजे से अपना साइबर क्राइम भी करेगा, पैसे भी उड़ाएगा और तमाशा देखेगा। तो ये आजकल नया ट्रेंड नजर आ रहा है। इसी की रेप्लिकेशन मुझे और प्रकार के जो फ्रॉड्स हैं उसमें नजर आती है।
1: जी बिल्कुल। तो एक आम आदमी को कैसे पता चले कि उसके साथ साइबर फ्रॉड होने वाला है, उसके लिए तीन रेड फ्लैग क्या हो सकते हैं?
0: तीन रेड फ्लैग। पहला, अगर कोई व्यक्ति आपको बहुत जल्दी निर्णय लेने के लिए विवश कर रहा है तो ये पहला इंडिकेशन है कि साहब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। दूसरा, अगर कोई आपको डरा रहा है, धमका रहा है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सेकंड रेड फ्लैग है कि साहब ये कहीं ना कहीं एक स्कैम का हिस्सा है। और तीसरा, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं आपको अर्जेंसी के माध्यम से आपको पुश कर रहा है कि आप एक अर्जेंट इमीडिएट एक्शन लीजिए, क्योंकि आपके परिवार में कोई बंदा प्रॉब्लम में आ गया है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी का अरेस्ट हो गया है। बॉटम लाइन यह है कि आज हमारा जो ना कोविड-19 के बाद जीवन इसलिए परिवर्तित हो चुका है क्योंकि दो चीजें कोविड-19 सदैव के लिए हमारे जीवन में छोड़ चुका है
1: जी।
0: एक है डर और दूसरा है पैनिक। साइबर क्रिमिनल्स ने आज इसी डर, इसी पैनिक को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है, और यही कारणवश है कि आज अधिकांश लोग, चाहे आप बहुत प्रशिक्षित हो, चाहे आप पढ़े लिखे ना भी हो, लेकिन आप डिजिटल रिस्क के और अन्य और प्रकार के ऑनलाइन फ्रॉड्स के शिकार होते जा रहे हैं।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं मथुरा से, महेंद्र सिंह। महेंद्र जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है हमारे विशेषज्ञ से।
2: आमंत्रित विशेषज्ञ आदरणीय, नमस्कार।
0: नमस्कार
2: महोदय, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कोई फ्रॉड हम पर कॉल करता है कि आपकी ओटीपी दे दो, ये दे दो, वो दे दो, तो इनकी शिकायत कहाँ दर्ज की जाए, इनका नंबर क्या है?
0: देखिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। आजकल कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी तरीके से आपको टारगेट करने का प्रयास करता है। तो द मोमेंट आपको लगे कि आप साइबर क्राइम के शिकार होने वाले हैं या कोई आपको शिकार बनाने वाला है, तो आपके पास दो विकल्प हैं जो केंद्रीय सरकार ने आपको दिए हैं। पहला, कुछ हो या ना हो अपने फोन नंबर से एक नंबर घुमाइए। नंबर है 1930
1: जी,
0: 1930। ये राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है। अगर आप फोन करते हैं और फोन उठता है तो फोन कोई नॉर्मल

0: टेलीकॉम ऑपरेटर नहीं उठाता, फोन उठाते हैं पुलिस अधिकारी। अब इन लोगों का डायरेक्ट टाई अप आपके बैंक्स के साथ है, ताकि अगर आपके यहाँ कोई फ्रॉड हुआ है, कुछ हुआ है, आप तुरंत कॉल करेंगे, ये तुरंत ही अपने फोन के नेटवर्क पर, अपने कंप्यूटर के नेटवर्क पर देख लेंगे कि साहब आपके जो बैंक का जो चैनल है उसके अंदर पैसा है या नहीं है
1: जी।
0: अगर पैसा है तो उसको ब्लॉक करेंगे, और ब्लॉक करने का मतलब है कि 2-3 हफ्ते में पैसा खुद ब खुद आपके अकाउंट में आ जाएगा
1: जी।
0: और अगर उन्हें कुछ और पता लगेगा तो आपको भी बताएंगे। लेकिन दूसरा जो आपको और बहुत इफेक्टिव रेमेडी सरकार ने दी है वो ये है कि आप एक वेबसाइट पर जा सकते हैं, उसका नाम है cybercrime.gov.in, यानी कि ये राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है। अपने घर बैठे हुए बिना थाने जाए हुए आप इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं मोबाइल फोन से, कंप्यूटर से, और आपकी रिपोर्ट दर्ज होते ही आपको ऑनलाइन ही एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है जो गृह मंत्रालय आपको प्रदान करता है। ये नंबर आपके लिए एक परमानेंट नंबर बन जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से आप कॉन्स्टेंटली अपने केस की जो प्रगति है, प्रोग्रेस है,
1: उसके बारे में
0: आप लगातार जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ हो या ना हो, ये दो चीजें आप याद रखिए, 1930-1930 और cybercrime.gov.in। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में मैं मानता हूं कि दो प्रकार के लोग दुनिया में हैं, एक वो जिन्हें मालूम है कि वो साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं
1: जी,
0: और दूसरे वो जिन्हें नहीं मालूम कि वो साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं। तो चाहे आप को मालूम हो या ना हो, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि अगर मुझे अटैक हुआ है, या जब मुझे होश आया कि साहब मैं टारगेट बन गया हूं, विक्टिम बन गया हूं साइबर क्राइम का, तो ये दो विकल्पों को तुरंत इस्तेमाल करिए, बहुत इफेक्टिव हैं, और मोर इम्पोर्टेंट सरकार द्वारा नागरिकों के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का एक नया अप्रोच है जो सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, विपिन। विपिन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, पूछें क्या सवाल है आपका।
2: जी नमस्कार सर, मैं विपिन बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश सागर से।
1: जी
2: सर, मेरा सवाल ये था कि सोशल मीडिया पे आजकल देखा जाता है बहुत सारे ऐप्स हैं जिसमें बहुत इजी लोन मिल सकता है, ऐसा दावा करते हैं, तो सर ये हम कैसे समझें कि फ्रॉड है जो ऐप्स हैं, या फिर इसमें सच में लोन मिल सकता है, या फिर धोखाधड़ी भी हो सकती है?
0: विपिन जी, आज एक चीज समझनी है, वो ये कि दुनिया में ना फ्री लंच नाम की चीज नहीं होती, कोई चीज मुफ्त नहीं मिलती। दूसरी चीज ये समझनी है कि अगर आपको कुछ ऐसा मन लुभावना ऑफर ऑनलाइन आ रहा है तो, और वो बहुत अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी खतरे की घंटी बज जानी चाहिए, क्योंकि जो टू गुड टू बी ट्रू ऑफर होता है वो एक्चुअली वास्तविक तौर में कहीं ना कहीं झोल लेकर आता है। तो आजकल ये जितने भी ये तुरंत लोन ऐप्स वाली कहानियां हैं, कोशिश करें कि इनसे आप मीलों दूर रहें तो अच्छी बात है। क्यों? अगर आप इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ें
1: जी,
0: इनकी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ें, ये स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि साहब आपका मैं पूरा डेटा लूंगा, उस डेटा का दुरुपयोग करूंगा, आपकी निजता के अधिकार का हनन होगा और आप चुपचाप बैठेंगे, कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, उनके फाइन प्रिंट में कहा जाता है, बोलते कुछ और हैं, जब आप टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ते हैं तो वो बहुत ही तगड़े और बहुत ही मोटे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं, और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वीक लगाते हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो पर डे लगाते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो पर मंथ लगाते हैं। अब आज आपको जब FD 7% देती है और वो अगर आपसे 3% प्रति माह या 2% प्रति वीक लेना शुरू कर दें तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो जल्दबाजी में मत करिए, एक तो जल्दबाजी में कोई लोन लेना नहीं, दूसरा लोन लेना है तो आप अधिकृत बैंक के पास जाइए, नेशनलाइज बैंक के पास जाइए, उनसे लोन लीजिए। ये ऑनलाइन लोन कहीं ना कहीं फ्रॉड के नए स्वरूप हैं, और जितनी जल्दी आप समझ लीजिए कि वो मछुआरे हैं जिन्होंने आपको जाल फेंक रखा है, अगर आपको पकड़ने के लिए, अगर आप केयरफुल ना हुए तो आप इस जाल में फंस जाएंगे। एक बार आप फंस गए तो फिर आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। मेरे पास केस आया जहां पर एक क्लाइंट ने केवल 15,000 रुपए लोन लिए, क्योंकि उसको एक हफ्ते के लिए चाहिए थे। अब उन्होंने लोन तो तुरंत अप्रूव कर दिया, लेकिन हुआ क्या कि जब पैसे आए तो पैसे आए करीबन 12,300, तो भैया
1: पहले ही काट लिया,
0: पहले उन्होंने कहा जी मैंने प्रोसेसिंग फी भी काट ली, मैंने ये भी काट ली, और फिर उन्होंने कहा कि साहब हम पर वीक जो है 3% इंटरेस्ट लगाएंगे, यानी कि आप समझ लीजिए महीने में 12% इंटरेस्ट
1: हो गया।
0: तो जितना आपने लिया नहीं उससे लगातार आपका इंटरेस्ट आता रहा, और उसके बाद आप नहीं दे पाए तो गुंडों का आपको धमकी आने लग गई, आपको प्रताड़ित करना लग गया, आपकी फैमिली को टारगेट करने लग गए। तो बॉटम लाइन ये है, छोटे लालच में नहीं पड़ना। अगर किसी से पैसा मांगना है अधिकृत बैंक से मांगिए, किसी अधिकृत एजेंसी से मांगिए। ऑनलाइन तो सारे झोल हैं, सारे साइबर क्राइम के नए स्वरूप हैं, प्लीज अपने आप को केयरफुल रखिए।
1: एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं हरिद्वार से, रवि। रवि आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है आपका।
3: नमस्कार सर।

0: नमस्कार रोहित जी।
1: और सभी विशेषज्ञों को नमस्कार और
0: जी
1: आने वाले स्वतंत्रता दिवस तथा सभी त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।
0: जी सवाल पूछिए।
1: हाँ जी सर, मैं जानना चाहता हूँ साइबर क्राइम जब हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए और इसे आम इंसान कैसे समझे कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है।
0: मुझे लगता है ये सवाल हर आज भारतवासी के हृदय में है कि कैसे पता लगे कि साइबर क्राइम होने वाला है।
2: जी
0: मुझे लगता है कि आप समझ लीजिए कि आप डिजिटल कुरुक्षेत्र के मैदान के केंद्र बिंदु पर आकर खड़े हो गए और आपको चारों दिशाओं से अटैक किया जा सकता है। अटैक करने वाले कौन है? साइबर क्रिमिनल्स हैं। अलग अलग पैंतरे अपनाते हैं, अलग अलग तरीकों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि आप कुछ करें या ना करें, अपने रोजमर्रा के जीवन में दो आदतें जरूर आप इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। पहली आदत, शक्की हो जाइए। दूसरी आदत, कंजूस हो जाइए। शक्की, हर प्रकार की जानकारी जो आपके सामने आ रही है, जिसको आप सुन देख रहे हैं, उस पर शक दृष्टिकोण से देखें जब तक कि आप उसकी पुष्टि स्वयं ना कर पाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप कंजूस हो जाइए अपने डेटा के संदर्भ में। आज हो क्या रहा है कि भारतवर्ष में एक नई क्रांति चल रही है, मैं से बोलता हूं भारत की उल्टी की क्रांति, द ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन, जहां पर सारे भारतवासी उल्टी कर रहे हैं अपने डेटा की, चाहे वो इंटरनेट पर हो, सोशल मीडिया पर हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हो। कृपया अपने डेटा की उल्टी ना करें, अपने डेटा को किसी भी व्यक्ति के साथ अनावश्यक तरीके पर शेयर ना करें, बिकॉज ये डेटा आधार बन जाता है आपको टारगेट बनाने के लिए। फिर अब ये दो चीजें अब आपने दिमाग में रख ली, अब सवाल उठता है कि आपको कैसे पता लगेगा कि आप साइबर क्राइम के शिकार हुए। अगर कोई ना कोई बंदा आपको ऑनलाइन मिलता है और वो पैसे की दिशा में आपको लेके जाता है कि आपने पैसे देने हैं, या आपको डराता है, धमकाता है, और या कहता है कि साहब आपकी नग्न तस्वीरें हम भेज देंगे, आपकी प्रतिष्ठा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे, जहां जहां जो जो व्यक्ति आपको डराता है, धमकाता है, आपको पैनिक के मोड पे लाता है, वो तमाम सारे इंडिकेशन होते हैं कि साहब ये साइबर क्राइम फ्रॉड में आप फंसने वाले हैं। और दूसरी बात, बहुत ज्यादा ट्रस्टिंग होने की जरूरत नहीं है। आज वो यकीन वाला जमाना चला गया है,
2: आस्था
0: ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन पता ही नहीं कि आप राम श्याम जदू से बात कर रहे हैं या किसी और व्यक्ति विशेष से बात कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में मुझे लगता है कि जागरूकता और सावधानी एकमात्र आपके मूल मंत्र हैं, आपकी सुरक्षा कवच है जो आपको बचाते हैं इस तरह के साइबर क्राइम के शिकार होने से।
2: बिल्कुल। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, बिहार से अमित उपाध्याय। अमित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है आपका।
3: जी नमस्कार विशेषज्ञ जो भी हमारा टीम है। मैं ये सवाल है अभी कि अभी हाल ही फिलहाल में सरकार इजी जो पीएफ का जो पैसा है उसको इजी लूप में इसको सर्कुलेट करके बना दिया है, निकालने का प्रावधान कर दिया है। इसमें तो अभी मामला आया था कि ओटीपी के माध्यम से कुछ पैसा का हेर फेर उसमें भी हो जा रहा है, तो इसको लेकर हम लोग कैसे सिक्योर कर सकते हैं कि मान के चलिए वो जमा पूंजी जिंदगी भर का रहता है, हम लोग को पीएफ कटता है और वो पैसा इनसिक्योर हो जाए, तो उसको लेकर थोड़ा सा।
0: देखिए आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा, क्योंकि देखिए पीएफ के साथ कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी की गाड़ी कमाई, आपकी मेहनत और उस मेहनत का पसीना जुड़ा हुआ है। तो आप कोशिश करें कि अगर आपके पीएफ कट रहे हैं तो ऑफिशियल सोर्सेज या ऑफिशियल कंपनी या ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर ही देखें। आजकल ना गवर्नमेंट ने पीएफ की विभिन्न वेबसाइट्स दे रखी हैं, तो अच्छी बात रहती है कि ऑलवेज इन गवर्नमेंटल वेबसाइट्स पर जाकर चेक कर लीजिए कि आपकी पीएफ की कॉन्ट्रीब्यूशन जमा हुई हैं नहीं हुई हैं। अगर आपके एम्प्लॉयर ने नहीं जमा कराई हैं तो उन्हें निवेदन करिए कि जमा कराएं, आपकी कितना टोटल अमाउंट तो आया है, कितना आगे बढ़ने वाला है। थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। देखिए अगर आप सो जाएंगे तो बिल्ली तो आपके सिराने पे जो दूध है आके पी जाएगी,
2: पी ही जाएगी जी।
0: तो इसलिए आपको तो सतर्क रहना ही पड़ेगा। अगर ना सतर्क रहे तब संभावित तौर पर साइबर क्रिमिनल्स इसको हड़प सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे ये मैं केसेस देख रहा हूं कि लोग अपनी आइडेंटिटी को भूल जाते हैं, छुपा देते हैं, दूसरे व्यक्ति की आइडेंटिटी को इम्पर्सोनेट कर लेते हैं और उसके माध्यम से ऑफिशियल अकाउंट से पैसा निकालने की प्रयास भी करते हैं। तो कुछ हो या ना हो, अपने पीएफ डिपार्टमेंट में लिख के दे दीजिए कि साहब मेरे अकाउंट से कोई पैसा ना निकाला जाए जब तक कि मेरे हस्ताक्षर ना हो और तब तक मैं हाजिर ना हूं। इसके अलावा सावधानी, सूझबूझ ही एकमात्र आपके लिए मूल मंत्र रहेगा।
2: बिल्कुल। तो जो श्रोता अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, डिजिटल नागरिक की सुरक्षा विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पवन दुग्गल जी। तो पवन जी, एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से, संजय। संजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है आपका हमारे विशेषज्ञ से।
4: नमस्कार मुकेश सर, एक्सपर्ट सर को भी बहुत बहुत नमस्कार।
2: जी नमस्कार
0: जी।
4: और सर मेरा सवाल ये है कि हम क्या

0: हमेशा डायरेक्ट बातें ही समझने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट बातें नहीं समझते, जबकि डायरेक्ट खतरे बहुत कम ही होते हैं इनडायरेक्ट की अपेक्षा। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम छोटे मोटे जब ऐसी घटनाएं होती है, हम राजनयिक संबंध तोड़ने लगते हैं दूसरे देशों से, या और भी व्यापारिक वो गतिविधियां करने लग जाते हैं, है ना, रोक टोक की। तो ये साइबर अपराध तो हर देश की समस्या बनती जा रही, केवल भारत की या एक देश की तो है नहीं।
1: जी
0: क्यों नहीं सभी देश मिल करके इसके लिए कड़ाई से जो है नियम कायदे बनाते हैं और इसके लिए बड़े दंडात्मक व्यवस्था करते हैं, ताकि किसी भी देश में कोई भी हो, क्योंकि हजारों करोड़ रुपए हर साल नुकसान होते, कितने मौतें हो रही है इसकी वजह से, हत्याएं कर रहे हैं ये लोग, ये अपराधी, तो इसके लिए क्या कोई ये किसी युद्ध से कम है क्या ये?
1: देखिए, बहुत ही महीन और महत्वपूर्ण सवाल है आपका। आज देखिए, इंटरनेट ने भूगोल को इतिहास बना दिया है। तो आप एक राष्ट्र में बैठे हुए इंटरनेट के माध्यम से किसी और राष्ट्र में विद्यमान नागरिकों को टारगेट कर सकते हैं, साइबर फ्रॉड का शिकार बना सकते हैं। इसलिए राष्ट्रीय कानून एक तौर पर अपने आप ही सफिशिएंट नहीं होते इस प्रकार के साइबर फ्रॉड्स को डील करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आपको सूझबूझ और कोऑपरेशन की आवश्यकता होती है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज की तारीख में भी कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून आज साइबर लॉ का नहीं है जो मौजूद है। 2015 में जब मैं संयुक्त राष्ट्र को संबोधित कर रहा था, तब मैंने प्रस्ताव दिया था कि आज आवश्यकता है दुनिया को एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन की ऑन साइबर लॉ एंड साइबर सिक्योरिटी। लेकिन वो सन था 2015 और शायद वो समय से बहुत एडवांस वाला आइडिया आया था, तो राष्ट्र उसको बाइट करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अब देखिए, ठीक उसी दिशा में अब संयुक्त राष्ट्र ने अब एक नई संधि को ओपन किया है। इस कॉल्ड द यूनाइटेड नेशंस आईसीटी कन्वेंशन टू प्रिवेंट द मिसयूज फॉर क्रिमिनल और इलीगल पर्पसेस। अब वो एक नई प्रकार की संधि आ गई है, उसके लिए हस्ताक्षर के लिए, रेटिफिकेशन के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं। बाय द टाइम कंट्रीज उसको अडॉप्ट करेंगी, थोड़ा समय लग जाएगा, बट शायद ये दुनिया की पहली ऐसी अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी हो जाएगी जो एक साइबर लॉ इंटरनेशनल लॉ का काम कर सके। इससे पहले केवल बुदापेस्ट कन्वेंशन रही थी 2001 में, लेकिन वो केवल एक स्थानीय ट्रीटी थी और यूरोपियन यूनियन की ट्रीटी थी। बहुत से राष्ट्र इसका हिस्सा नहीं थे, भारत भी उसका हिस्सा नहीं था। तो आवश्यकता तो ये है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि आजकल राष्ट्र और उनकी सरकारें इतनी ज़रा संकीर्णता से सोचती हैं कि उन्हें ब्रॉडर पिक्चर अक्सर नजर नहीं आता। हर सरकार कहती है, हर राष्ट्र कहता है कि भैया मुझे आज की अपनी वर्तमान स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को देखना है, मुझे ग्लोबल कॉपरेशन को नहीं देखना। यही कारणवश है कि हम अभी तक कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून इस पर बनाकर नहीं लेकर आ पाए हैं। लेकिन अब मुझे लगता है और समय की तुलना में और ज्यादा आवश्यकता हो गई है इस प्रकार के कानून को लाने की,
2: और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इस तरह का कानून बन जाएगा।
1: जी,
2: एक और श्रोता जुड़ गए हैं हमारे साथ महाराष्ट्र से, विजय कुमार। विजय जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: मुकेश कुमार जी नमस्कार।
2: जी नमस्कार जी, पूछिए क्या सवाल है।
3: नमस्कार
2: जी।
1: जी नमस्कार,
3: मैं विजय कुमार स्वामी गाँव बस्तवा छत्तीसगढ़ जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ।
2: जी
3: जी सर, मैं ब्लाइंड हूँ 100%।
2: जी,
3: मेरा बटन का फोन है।
2: वेरी गुड।
3: अरे बटन के फोन में तो धोखाधड़ी हो सकती है, ये सवाल मेरा है।
1: देखिए, धोखाधड़ी तो कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहाँ नहीं हो सकती।
2: बिल्कुल,
1: तो धोखाधड़ी तो हर जगह हो सकती है, लेकिन आपका बटन वाला फोन है तो संभावित तौर पर स्मार्टफोन की तुलना में ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि वो वही काम कर रहा है जिसको जिसका उद्देश्य बनाया गया है इसको काम करने के लिए। तो आप सुरक्षित तो हैं, लेकिन कोशिश करें अपना फोन किसी के हाथ में ना दें, क्योंकि अगर वो उसका दुरुपयोग कर पाएगा तो हो सकता है आप फ्रॉड के शिकार हो पाए। बॉटम लाइन आज ये है कि हमें जो कुछ करना है खुद करना है, अपना हाथ जगन्नाथ, किसी पर विश्वास, किसी पर आश्रित रहना नहीं है। और ये स्मार्टफोन्स तो इसलिए आजकल सरदर्दी का सबब बन गए हैं क्योंकि स्मार्टफोन्स केवल आपसे फोन नहीं करते, कैमरे नहीं है, ये ना सिटिंग टाइम बॉम्ब्स हैं, लगातार हमारी हर प्रकार की जानकारी को सुनते रहते हैं और फिर डेटा आपकी इजाजत के बगैर आपके सिस्टम से बाहर निकाल के बाहर भेजते हैं, बेचते हैं। और फिर यही कारणवश है, देखिए मैं आज स्टूडियो में बैठ के मुकेश जी से बात कर रहा हूँ, उन्हें कह रहा हूँ कल सुबह मुझे बॉम्बे जाना है, मेरा फोन सुन रहा है, अगले 5 मिनट बाद मेरे फोन पर ये एडवर्टाइजमेंट आनी शुरू हो जाएगी कि सर बॉम्बे की चीप फ्लाइट ले लीजिए या ये यहाँ पर चीप होटल मिल जाएंगे। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बातें हमारी कॉन्स्टेंटली सुन रहे हैं। तो अब जब आप बटन वाला फोन इस्तेमाल करते हैं तो वो फीचर फोन होता है। फीचर फोन आज की तारीख में सबसे ज्यादा सुरक्षित है क्योंकि वो केवल फोन का काम करता है, कोई और नहीं करता। फिर भी जागरूकता सूझबूझ ही एकमात्र आपके लिए मंत्र रहता है।
2: पवन जी, अगर पैसे चले गए हैं तो सबसे पहले 3 काम क्या करने होते हैं? 1930 पे हेल्पलाइन नंबर पे फोन करते हैं साइबर

0: cybercrime.gov.in पर हम दर्ज कराते हैं, और बैंक को कब कॉल करें?
1: देखिए, जब सबसे पहले जब आपको पता लगे कि आपके पैसे गए
0: जी,
1: तो पैनिक नहीं करना, घबराना नहीं है, हताश नहीं होना, पहली चीज। दूसरी चीज, वो कहते हैं ना कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि आपका कर्म प्रधान जीवन है, तो इस संदर्भ में आपको तुरंत सबसे पहले 1930 कॉल करना है। कॉल करना इसलिए है क्योंकि द मोमेंट आपके पैसे गए हैं, आपके पैसे अभी भी शायद बैंकिंग चैनल में होंगे, तो अगर आपने उन्हें कॉल कर दिया और फोन उन्होंने उठा लिया और उन्होंने देखा कि उनके सिस्टम में नजर आ रहा है कि आपके पैसे बैंकिंग चैनल में हैं, तो आपके बैंक के पैसों को फ्रीज कर देंगे और 2-3 हफ्ते में पैसा वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो कुछ करें या ना करें, द मोमेंट पता लगे फ्रॉड हो, पानी भी नहीं पीना है, आपने तुरंत 1930 कॉल करना है। अगर वहां फोन नहीं लग रहा है तो दूसरा विकल्प है, आप तुरंत cybercrime.gov.in पर जाना है। अक्सर बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि चलो भैया बैंक से पैसा निकला है, बैंक जाते हैं।
0: बैंक में जाना चाहिए
1: भाई, बैंक जाते जाते आधा पौना घंटा लग जाएगा, तब तक तो चिड़िया चुग गई खेत वाली कहानी हो जाती है। आज की तारीख में ना, पहले हम कहते थे गोल्डन आवर होता है 60 मिनट, जब आपको पता लगता है कि आपके यहाँ फ्रॉड हुआ है। अब हम कहते हैं कि गोल्डन आवर श्रिंक हो गया है 10 मिनट में। अगर आपने पहले 10 मिनट में शिकायत कर दी, एक्शन ले लिया, तो हो सकता है आपका पैसा बच जाए, क्योंकि आज साइबर क्रिमिनल्स 10 मिनटों में ही आपके पैसे को आपके अकाउंट से बाहर ले जाते हैं, सलामी ट्रांजैक्शंस करते हैं और फिर म्यूल अकाउंट्स के माध्यम से कैश विड्रॉल कर लेते हैं। और एक बार आपके अकाउंट से कैश विड्रॉल हो गया तो फिर पैसा वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है।
0: एक और श्रोता जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, राजेश। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है
2: जी। मैं आपका और उपस्थित विशेषज्ञ का बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ
0: जी। नमस्कार।
2: और मेरा सवाल ये है, मैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बुजुर्ग रहते हैं और महिलाएं होती हैं, यदि किसी कारणवश उनके साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है, तो कहाँ पर अपना बयान दें और कहाँ पर अपनी शिकायत लेकर जाएं, थोड़ा सा बताइएगा।
1: देखिए, अगर आप ग्रामीण इलाकों में हैं, महिलाएं हैं, तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। आज केंद्रीय सरकार आपको कहती है कि साहब कुछ ना करिए, अपने घर बैठे अपने ही फोन से तुरंत नंबर कॉल करिए 1930। कहीं धक्के खाने की आवश्यकता नहीं, वहां आपका केस दर्ज भी हो जाएगा ऑनलाइन, आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगी। ना करना चाहें और वो फोन ना उठे तो आप cybercrime.gov.in पे जा सकते हैं और वहां पर भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि साहब हमें कहीं ना कहीं थाने जाना है
0: जी,
1: और भाई थाने जाने में करीबन आधा पौना घंटा घंटा लग जाएगा, तब तक जितने पैसे हैं सब निकल चुके होंगे। तो थाने जाने की जल्दबाजी ना करें, अपना बयान देने की जल्दबाजी ना करें। भाई जब आग लगी है तो सबसे पहले आग को बुझाना है। आज जब पैसे गए हैं तो सबसे पहले दायित्व बनता है कि हम कैप्चर करें क्या वो बैंकिंग चैनल में है। अगर कहीं पर भी है तो उस बैंकिंग चैनल में उस पैसे को फ्रीज कराना है। एक बार फ्रीज हो जाएगा, अपने वापस आ जाएगा। हाँ, एक बार आपने 1930 पर या cybercrime.gov.in पर शिकायत कर दी, कोई दिक्कत की बात नहीं, उसके बाद आप बैंक जाइए, लिखित में शिकायत कर दीजिए, और ये जो आपने ऑनलाइन शिकायत करी है उसका रेफरेंस नंबर भी आप जरूर दे दीजिए, सो दैट बैंक को पता लग जाए कि साहब आप हवाबाजी नहीं कर रहे। अक्सर क्या करते हैं, बैंक आपको डरा देते हैं, धमका देते हैं, दौड़ा देते हैं, भाग जाओ कि तुम्हारी गलती है, तुमने गलत काम किया था। भाई आज आपका पैसा आपकी गाड़ी कमाई है, अगर वो आपके अकाउंट से आपकी इजाजत के बगैर निकला है तो साइबर क्राइम है, 3 साल की सजा है, 5 लाख रुपए जुर्माना है, धारा 66 भारत की सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत। साथ ही साथ ये बैंक जो है, ये इंटरमीडियरीज हैं, उनका दायित्व बनता है कि जब द मोमेंट आप बताएं कि साहब मेरा ये अनऑथराइज ट्रांजेक्शन गया है, तब दायित्व उनके ऊपर होता है कि वो देखें कि साहब ये ट्रांजेक्शन कैसे हुआ है। और वो ये नहीं कह सकते कि साहब आपने यूजर आईडी पासवर्ड इस्तेमाल किया है, ओटीपी इस्तेमाल किया, क्यों? क्योंकि वो ओटीपी का दुरुपयोग हुआ है। बहुत सारे बैंक आपको जलेबी की तरह घुमाते हैं, लेकिन आपको घूमने की आवश्यकता नहीं, वहां जाइए, बैठ जाइए कि साहब आपका दायित्व बनता है, आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप ये पैसे दिलाइए, वरना इस पैसे की आपकी जो क्लेम होता है आप बैंक से मांग सकते हैं। क्योंकि देखिए, बैंक की आवश्यकता कानून में होती है कि वो ड्यू डिलीजेंस सावधानी करे जब वो अपनी ऑब्लिगेशंस या ड्यूटियों का निर्वाह कर रहा है, यह है सेक्शन 79 भारत के आईटी एक्ट के तहत। और अगर वो नहीं करता है तो कानून कहता है जिम्मेवारी पैसा वापस दिलाने की बैंक की है। तो आप हताश ना होइए अगर बैंक आपको दाएं बाएं करे, आपको बैंक को कहना है कि साहब मेरा ट्रांजैक्शन नहीं है या अनावश्यक तरीके से इस्तेमाल किया गया है, ये मेरी ऑनलाइन कंप्लेंट है, आप मुझे पैसा दीजिए, अगर मेरा पैसा चला गया तो मेरे पैसे की भरपाई करने की जिम्मेवारी भी आपकी है।
0: बिल्कुल। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, राम जी। राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछें क्या सवाल है
3: जी। जी, जी।

0: नमस्कार सर जी, बहुत अच्छा विशेषज्ञ लोग जानकारी दे रहे हैं। अभी कह रहे थे कि अगर आप सो गए तो बिल्ली दूध पी जाएगी, तो बहुत अच्छा लग रहा था।
1: जी जी, सवाल पूछिए
0: जी। प्रश्न कुछ इस तरह से है कि हमारा यूज करने वाला मोबाइल और सिम गुम हो गया है, और उसके साथ साथ वो बैंक से जुड़ा हुआ है
2: जी,
0: तो उसमें भी ना पैसा निकल जाने की व्यवस्था हो सकती है, तो हम क्या करें क्या न करें? अगर मोबाइल हमारा गुम गया तो कितना जल्दी हम क्या करें न करें, यही जानकारी हम लेना चाह रहे हैं सर जी।
2: जिस वक्त पर आपको पता लगे कि आपको मोबाइल फोन गुम हुआ है या अवेलेबल नहीं है, तुरंत सबसे पहले आपने अपने मोबाइल कंपनी को कॉल करना है और उन्हें कहना है कि मेरा फोन नहीं मिल रहा है, मेरा सिम को ब्लॉक करिए, क्योंकि आपकी सिम के साथ आपके बैंक अकाउंट जुड़े हैं, ट्रांजैक्शंस जुड़े हुए हैं। तो द मोमेंट आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा, उसका सीधा असर ये होगा कि कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शंस आपके साथ नहीं हो सकती। आजकल ना बहुत ये सिम स्वैप फ्रॉड्स होते हैं, आपका फोन चुराते हैं, फिर आपके नाम पर आपकी झूठी आईडी बनाकर वो डुप्लीकेट सिम ले लेते हैं। और फिर डुप्लीकेट सिम का मतलब ये होता है कि जितने सारे ओटीपीज आपके अकाउंटों में जाने हैं, आपके फोन पे आने हैं, वो उनके पास आने शुरू हो जाते हैं और आपका बैंक धीरे धीरे अकाउंट खाली हो जाता है। तो एक्शन तुरंत लेना है। एक बार आपने इन्फॉर्म कर दिया इस टेलीकॉम कंपनी को, उसके बाद तुरंत आप कॉल करिए 1930 पर, क्योंकि ये जो फोन का चोरी करना ये भी एक दंडनीय अपराध है धारा 66 बी भारत के आईटी एक्ट में, और ऑफ कोर्स भारतीय न्याय संहिता के अंदर तो ये चोरी के अंदर आता ही है। तो आप उसे ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हैं, ब्लॉक करवाना जरूरी है, और डुप्लीकेट सिम आप बाद में इंश्योर का ले लीजिए, इशू करा लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि जो कुछ करना है जल्दी करें।
1: एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं शिमला से, राकेश। राकेश जी, क्या सवाल है आपका?
3: जी नमस्कार, मैं राकेश बात कर रहा हूँ कोटखाई शिमला
1: जी।
3: और मेरा ये प्रश्न है, जैसे कि दिव्यांग व्यक्ति है, अगर उनसे अगर साइबर क्राइम में अगर आप गए हैं किसी कारणवश, तो वो किस तरह से जो है बच सकते हैं?
2: देखिए, अगर आप इस श्रेणी में आते हैं तो बचने का तो एकमात्र तरीका यह है कि आपको सावधानी जो है ना अपने रोजमर्रा के जीवन में हिस्सा बनानी पड़ेगी। दूसरा, हम लोगों की मानसिकता ऐसे होती है कि साहब मैं अपने फोन पर कुछ भी करूं, कुछ गड़बड़ होगी तो सरकार की जिम्मेवारी होगी। भाई सरकार तो काम कर ही रही है, लेकिन अब हमको नागरिक होने के नाते कहीं ना कहीं आवश्यकता होगी कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करें। बेसिकली सतर्क रहिए, सावधान रहिए, ये एकमात्र तरीका है जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन फ्रॉड्स और विभिन्न प्रकार के साइबर क्राइम के शिकार होने से बच सकते हैं।
1: बिल्कुल, और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हम इस चर्चा को यहीं पर विराम दें। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि डिजिटल दुनिया में सतर्क रहना कितना आवश्यक है। याद रखिए तीन बातें। पहला, कोई भी ओटीपी सीवीवी पिन फोन पर मत बताइए। दूसरा, कभी भी किसी लिंक पर बिना सोचे समझे क्लिक मत कीजिए। और तीसरा, धोखा हो जाए तो तुरंत डायल कीजिए 1930 साइबर हेल्पलाइन। सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि डिजिटल नागरिक सुरक्षित नागरिक है। आज के पब्लिक स्पीक में इतना ही। हम अपने सभी श्रोताओं का जिन हमसे आज जुड़े हैं और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पवन दुग्गल जी का आभार व्यक्त करते हैं। पवन जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत सारी जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: धन्यवाद।
1: तो आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsgtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात 9:30 किसी और नए मुद्दे पर चर्चा के लिए उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए मुकेश कुमार को कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
1: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा में भाग न लेने

0: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद। प्रस्तुत करता है अनिंद्र सिंह।
1: हेलो मेरी पसंद। साथियों, रात्रि के 10 बज चुके हैं और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सुरों का एक ऐसा गुलदस्ता जिसकी हर कली आपकी पसंद से खिली है। जी हाँ, स्वागत है आप सभी का आपके सबसे चहेते फरमाइशी प्रोग्राम हेलो मेरी पसंद में। स्वीकार कीजिए मेरा यानी विशेषता शर्मा का प्यार भरा, प्रेम भरा और मोहब्बत भरा नमस्कार। दोस्तों, फिजाओं में आज फिर एक नया सुरूर है क्योंकि आपकी पसंद का नगमा अब आपसे बस एक कदम दूर जो है। तो देर किस बात की है, जल्दी से उठाइए अपना फोन और हमें बताइए कि आज आपकी फरमाइश किस गीत के लिए है। और देखिए, पहले श्रोता तो हमसे जुड़ भी चुके हैं, आइए देखते हैं कि कौन है। हेलो,
2: हेलो मेरी पसंद।
1: हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है, आपका परिचय?
2: बनवारी लाल कुशवाहा बोल रहा हूँ, गंगानगर कुशवाहा।
1: बनवारी लाल जी, कैसे हैं आप?
2: बढ़िया।
1: और क्या चल रहा है इस वक्त?
2: अभी तो फ्री बैठे हुए हैं
1: जी। बनवारी लाल जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं?
2: मैं इस समय तो नोएडा में हूँ।
1: अच्छा, तो नोएडा में मौसम कैसा है?
2: मौसम तो अभी तो धूप पड़ रही है
1: जी। तो अभी आप अपने घर से दूर हैं?
2: हाँ, काफी दूर।
1: त्योहारों का मौसम आ रहा है, अपने घर लौटेंगे आप या घर से दूर ही मनाएंगे?
2: हाँ, कोशिश तो करेंगे कि रक्षाबंधन पर आए।
1: और भी बाकी सारे त्योहारों पे, रक्षाबंधन के अलावा जो त्योहार होते हैं उन पर भी आप घर लौटते होंगे
2: जी। जी,
1: परिवार से दूर रहना कैसा लगता है?
2: नहीं, रहना तो पड़ता ही है
1: जी,
2: काम करना है तो
1: जी। याद तो आती होगी बहुत
2: जी, बहुत याद।
1: ठीक है, आज इस कार्यक्रम में आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे बनवारी लाल जी?
2: उसने भोले बाबा के ऊपर ही सुनवा दीजिए। हमारे मैडम है मंजुलता कुशवाहा, बच्चे हैं राम और श्याम
1: जी
2: और साथी।
1: ठीक है बनवारी लाल जी, आप अपने पूरे परिवार के साथ सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत।
2: और एक सुझाव और देना चाहता हूँ।
1: जी बिल्कुल बनवारी लाल जी, स्वागत है आपका।
2: ये आधे घंटे का कार्यक्रम है तो इसको एक घंटे का कर दिया जाए
1: जी।
2: और दिन में लोकधारा का कार्यक्रम पहले चलता था, लोकधारा का कार्यक्रम शुरू किया जाए
1: जी,
2: तो बहुत ही अच्छा लगे।
1: बनवारी लाल जी, आपके जो भी सुझाव हैं ये हम अनुभाग तक पहुंचा देंगे और फिर जो भी इस ओर प्रयत्न हो सकेंगे वो हम जरूर करेंगे
2: जी।
1: ठीक है बनवारी लाल जी, आप अपने पूरे परिवार के साथ सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत।
2: जी।

0: चार धाम फिल्म का गीत अभी आपने सुना बनवारी लाल कुशवाहा की फरमाइश पर। और अगला फोन कॉल हमें आ चुका है, आइए इसको उठाते हैं और सुनते हैं हमारे जो अगले श्रोता हैं वो हमसे कहाँ से जुड़े हैं। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, मेरी पसंद कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपका परिचय?
1: ग्राम लालो से बात कर रहा हूँ, नरेंद्र।
0: नरेंद्र जी कैसे हैं आप?
1: ठीक है, अपना बताइए।
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ। नरेंद्र जी, आकाशवाणी आगरा सुनते हैं आप?
1: जी हाँ, सुनते हैं।
0: कब से सुन रहे हैं आकाशवाणी आगरा आप?
1: मैं सुन रहा हूँ 97 से सुन रहा हूँ मैडम।
0: 97 से। और अभी आप क्या करते हैं?
1: कपड़े की कंपनी में काम करता हूँ।
0: अच्छा, तो काम कैसा चल रहा है इस वक्त?
1: काम ठीक चल रहा है। विशेषता जी बोल रही
0: हैं? जी मैं विशेषता शर्मा बात कर रही हूँ। नरेंद्र जी, सावन का मौसम आ गया है, आप जहाँ से बोल रहे हैं वहाँ सावन ने दस्तक दे दी, बारिश हो चुकी है क्या?
1: ये बारिश होगी सर, खूब हो रही है, लगातार एक आध दो दिन छोड़ के हो जाती है।
0: अच्छा, यानी सावन पूरी तरह दस्तक दे चुका है।
1: सुना था
0: जी। जी नरेंद्र जी बताएं, आप अपनी फरमाइश कौन से गीत के लिए है?
1: साजन का घर फिल्म का नाम है
0: जी,
1: उसका गाना है सावन आया वो वाला।
0: ठीक है नरेंद्र जी, जी आपकी फरमाइश पर ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, लीजिए सुनिए।
1: धन्यवाद।

0: नरेंद्र जी की पसंद पर अभी आप सुन रहे थे साजन का घर फिल्म का गीत। और आइए देखते हैं अगला फोन कॉल हमें कहां से आया है। हेलो।
1: हेलो
0: हेलो, मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं?
1: मैं दिवाकर बोल रहा हूं मैडम, नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मैं आगरा से ही बोल रहा हूं।
0: जी दिवाकर जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा हूं मैडम, आप कैसी हैं?
0: मैं भी बहुत अच्छी हूं। क्या करते हैं दिवाकर जी आप?
1: जी मेरा शेयर मार्केट का काम है, इनकम टैक्स का काम है।
0: जी तो इनकम टैक्स का, जैसे आपने बताया हमें आपका काम है, तो आप हमें कुछ बताना चाहेंगे? जिन लोगों को इनकम टैक्स भरना होता है या कुछ लोगों को रिटर्न फाइल करना होता है, तो उसके लिए वो कैसे कर सकते हैं, क्या प्रक्रिया रहती है, कब तक उन्हें करना है, हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा बताएं।
1: इनकम टैक्स के लिए जो आकलन वर्ष होता है वो हर वर्ष मतलब 1 अप्रैल से शुरू होता है
0: जी।
1: और 1 अप्रैल से लेकर अगली साल के 31 मार्च तक के जो अवधि है उसमें जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं, जो भी लेन देन हुआ है, वो हमें दिखाना होता है।

0: अपने आयकर रिटर्न में, और उसी के आधार पर टैक्स की गणना की जाती है। टैक्स की जो रोजगार वाले लोग हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनके लिए लास्ट डेट 31 जुलाई होती है, और इसके अलावा अन्य जैसे भी जो भी काम करने वाले लोग हैं, जिनके जैसे पेशे हैं, उस हिसाब से उनके लिए अलग अलग तिथियां निर्धारित सरकार करती है।
1: अच्छा, अगर कोई व्यक्ति खुद से अपना इनकम टैक्स जो है वो भरना चाहता है या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहता है, तो क्या ये भी संभव है या किसी की सहायता लेनी ही होती है?
0: सरकार ने आजकल इतनी सहूलियत दे रखी है कि आमतौर पर कोई भी व्यक्ति अपना इनकम टैक्स रिटर्न बना सकता है, उसे किसी भी मदद की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, उस पर समय कम है या उसे कंफ्यूजन है या उसे उतनी जानकारी नहीं मिल पा रही है किसी भी वजह से, तो वो किसी की हेल्प ले।
1: जी दिवाकर जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और टैक्स भरना, इनकम टैक्स भरना जो है, ये हम सब लोगों का कर्तव्य भी है, हम लोगों का दायित्व भी है, और हम सब लोगों को भरना चाहिए अगर हम उस दायरे में आते हैं।
0: बिल्कुल जी, बिल्कुल।
1: तो आपकी बात से हमें आशा है कि जो हमें सुनने वाले श्रोता हैं वो लाभान्वित होंगे और इस बात का फायदा जरूर उठाएंगे, और हमारी बात को भी ध्यान देंगे कि इनकम टैक्स भरें और इसकी चोरी ना करें, है ना, इस बात का ध्यान विशेष रूप से रखेंगे। तो दिवाकर जी, आज इस कार्यक्रम में आपकी फरमाइश किस गीत के लिए है?
0: जी, मैं सुनना चाहता हूँ आज के आपके इस कार्यक्रम में
1: जी
0: धुरंधर फिल्म में जान से गुजरते हैं।
1: ठीक है दिवाकर जी, आपकी फरमाइश पर ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, लीजिए सुनिए।
0: जी धन्यवाद मैडम,
1: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे धुरंधर फिल्म का गीत, और इस गीत को सुनने की फरमाइश थी दिवाकर की। आइए सुनते हैं अगला फोन कहाँ से है। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपका नाम?
1: मेरा नाम विकास है।
0: विकास, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ मैम। और आपका जो रेडियो के लिसनर्स में अगर लिस्ट में बात की जाए तो मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ आकाशवाणी आगरा का।
0: बहुत बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, हमें बहुत अच्छा लगा ये जानकर। आकाशवाणी आगरा को आप नियमित तौर पर सुनते हैं?
1: जी बिल्कुल, रेगुलर।
0: हमारे कौन कौन से कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं?
1: मैम मेरे को सुबह वंदना कार्यक्रम विशेषकर, स्पेशली जब खुलते ही जब आप स्टूडियो ओपन करते हैं तो उस समय वंदना की जब हम ट्यून करते हैं तो वही भक्ति वाले जो गीत हैं वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है
0: जी।
1: और फिल्म संगीत तो जितने भी आपके सारे रहते हैं सेगमेंट, 12:30 वाला रहता है, कभी समय होता है तो दोपहर वाले जो भूले बिस्तरे गीत भी है वो भी मैं सुनता हूँ, तो मुझे बहुत बहुत पसंद है।
0: हमें बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आप हमें इतने प्यार से सुनते हैं। तो विकास जी, आज इस कार्यक्रम में किस गीत

0: तो जितने भी आपके सारे रहते हैं सेगमेंट 12:30 वाला रहता है, कभी समय होता है तो दोपहर वाले जो भूले बिस्तरे गीत भी है वो भी मैं सुनता हूँ, तो मुझे बहुत बहुत पसंद है।
1: हमें बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आप हमें इतने प्यार से सुनते हैं। तो विकास जी, आज इस कार्यक्रम में किस गीत की फरमाइश है आपकी?
0: मैम, छिछोरे फिल्म का एक गीत है, खैरियत पूछो।
1: ठीक है,
0: अगर आप उसे सुनवा पाए तो मतलब आई एम रियली थैंकफुल टू यू।
1: बिल्कुल बिल्कुल विकास जी, इस गीत को आप और किसके साथ सुनना चाहेंगे?
0: ये गीत मैं अपनी पूरी फैमिली को डेडिकेट करूंगा।
1: नाम भी चाहें तो बता सकते हैं हमें?
0: विनोद शर्मा जी,
1: जी
0: सरोज शर्मा जी, और मिली, युग और प्रिंसी।
1: ठीक है विकास जी, आप अपनी पसंद पर, अपनी फरमाइश पर सुनिए ये गीत।
0: थैंक यू सो मच।

0: अभी आप सुन रहे थे विकास जी की पसंद पर छिछोरे फिल्म का ये गीत। और अगला फोन कॉल हमें आ चुका है, फोन हमें इशारा कर रहा है, तो आइए उठाते हैं और देखते हैं ये फोन हमें कहाँ से आया है। हेलो
1: हेलो,
0: हेलो, मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रही हैं?
1: हाँ जी, मैं छवि बोल रही हूँ।
0: छवि, आप कहाँ से बोल रही हैं?
1: जी, मैं सिकंदरा आवास विकास कॉलोनी से बोल रही हूँ।
0: छवि जी, कैसी हैं आप?
1: हाँ जी, मैं बढ़िया हूँ।
0: छवि जी, और क्या करती हैं आप?
1: हाँ जी, मैं होम मेकर हूँ।
0: हाउसवाइफ हैं आप, और इसके अलावा भी कुछ आप अपने शौक होंगे आपके जिन्हें पूरा करती होंगी?
1: हाँ, मैं सिंगिंग सीखती हूँ
0: अरे वाह,
1: और स्टडी भी मेरा शौक है।
0: मतलब आप अभी हाउसवाइफ हैं और आप अपने शौक जो हैं अपनी पढ़ाई को भी पूरा कर रही हैं।
1: जी,
0: ये तो बहुत अच्छी बात है छवि जी, और हम चाहते हैं कि हमें सुनने वाली जो बहनें हैं वो भी आपसे सीखें कि कैसे शादी के बाद में आप एक घर को संभालते हुए भी अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सकती हैं, अपने गाने का शौक है, नृत्य का शौक है, उसे भी पूरा कर सकती हैं। तो गायन जो है वो सीख रही हैं आप अभी?
1: जी हाँ, सीख रही हूँ।
0: किस तरह का, शास्त्रीय संगीत सीखती हैं आप या?
1: शास्त्रीय संगीत बेसिक से सीख रही हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है ये। तो छवि जी, आज इस कार्यक्रम में आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: जी, मैं अभिमान फिल्म का नींद ना मिला रे मन का किशोर कुमार का गाया हुआ गीत सुनना चाहूंगी।
0: ठीक है छवि जी, आपकी पसंद पर हम ये गीत आपको सुनवा रहे हैं। इस गीत को आप और किस किस के साथ सुनेंगी?
1: मैं चाहती हूँ मेरी फैमिली के मेंबर मेरे साथ साथ सुने।
0: बिल्कुल छवि जी, आप अपने पूरे परिवार के साथ सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत।

साथियों, अब वक्त की सुइयां कह रही हैं कि हम आपको अलविदा कह दें, पर यादों का ये सुरीला कारवा यूं ही चलता रहेगा। हेलो मेरी पसंद के आज के सफर को यहीं रोकते हैं, इस वादे के साथ कि अगली बार फिर होगी आपके पसंद के गानों और आपकी मीठी बातों से यही हसीन मुलाकात। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी आगरा। अपनी रेडियो दोस्त विशेषता शर्मा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी श्रोता सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद, प्रस्तुतकर्ता थे अनेंद्र सिंह। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर। श्रोता उपस्थित है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का गायन। आप प्रस्तुत कर रहे हैं राग मालकोस।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे उस्ताद वसीम अहमद खां का राग जयजयवंती में गाया ख्याल। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
2: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
1: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं

0: नहीं हो सका। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया। उधर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीत ली है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हरा दिया। उधर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की बाकीपुर विधानसभा सीट जीत ली है। ये सीट भाजपा का गढ़ रही है और 1995 से पार्टी कभी भी इस सीट से नहीं हारी थी। श्री किशोर ने भाजपा के नीरज कुमार को 19,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर रही। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक मतों से हराया। कर्नाटक में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बेंगलुरु के लोकभवन में एक सादे समारोह में 19 विधायकों को पद की शपथ दिलाई। अब राज्य मंत्रिमंडल में 33 सदस्य हो गए हैं। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 3 जून को 13 अन्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। कांग्रेस द्वारा घोषित एकमात्र महिला विधायक गायत्री शांतिगौड़ा ने आज शपथ नहीं ली। एक अन्य विधायक मनकला वैद्य की जगह अंतिम समय में एसएस मल्लिकार्जुन को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले 3 से 4 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। युवा साइकिलिंग खिलाड़ी हर्षिता जाखड़ ने स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में भाग लिया। हर्षिता इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उन्होंने प्रतियोगिता के दूसरे चरण की औपचारिक शुरुआत में विभिन्न देशों के 8 खिलाड़ियों के समूह का नेतृत्व किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. The Lok Sabha today passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. The bill aims to increase the number of judges of the apex court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. In May this year, President Draupadi Murmu had promulgated an ordinance in this regard. Union Minister of Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. He said the bill is an important step in that ongoing reform process within the judicial sector. The Lok Sabha was adjourned several times today amid protests by opposition parties over several issues. Earlier, when the House began its proceedings at 11 a.m., Speaker Om Birla congratulated the athletes for their outstanding performance at the 23rd Commonwealth Games at Glasgow. After that, Mr. Birla tried to take up the question hour, but the opposition members raised the issue of alleged police action during students' protest. Mr. Birla expressed concern over the deliberate disruptions by some opposition members. Minister of Statistics and Program Implementation Rao Inderjeet Singh introduced the Indian Statistical Institute Bill 2026. Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced the bankers, books,